0: वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख़र हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बरंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख़र कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों यकसा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफ दे होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती है, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलब ही और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे

أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخل عظيم

इसे सैयदुल इस्तगफार कहा जाता है, जिसने पूरे यकीन के साथ इसे सुबह के वक्त पढ़ लिया और उस दिन वो फौत हो गया तो वो जन्नत में चला गया, और जिसने शाम के वक्त इसे पूरे यकीन के साथ पढ़ा और उसी रात वो फौत हो गया तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। रिवायत है बुखारी की।

0: सख्त हाथ खोल कर खर्च करता है। एक कहावत ऐसे शख्स के बारे में कही जाती है जो अपने अहलोयाल की जरूरियात में तंगी करता है मगर नमूदो नुमाइश या गैर जरूरी चीजों पर बेदरेग पैसा बहा देता है। हमारे यहाँ भी इस तरह के कई जुमले और कहावतें राइज हैं जो इस सूरत हाल को जाहिर करती हैं। ऐसे कहते हैं ना, कपड़े की जेब खाली मगर बातें लंबी चौड़ी, या फिर घर में फाके बाहर दिखावे, यानी अहल खाना भूखे रहे मगर दुनिया के सामने शान शौकत दिखाए। दोस्तों, ये सब कहावतें हमें ये सिखाती हैं कि असल सखावत वो है जो अपने घर और जरूरतमंदों से शुरू हो, वरना जो इंसान अपने औलाद और अहल खाना पर बुखल करे मगर गैर जरूरी चीजों पर दिल खोल दे, उसकी फयाजी असल में तमाशा ही है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

जैसे साग पात, खीरा, ककड़ी, लहसुन और मसूर और प्याज वगैरह। मूसा ने उन्हें कहा, ना समझो, क्या तुम बेहतर चीज के बदले घटिया चीज तलब करना चाहते हो? यही बात है तो किसी शहर की तरफ निकलो, जो मांगते हो तुम्हें मिलेगा। और अंजाम कार उन पर जिल्लत व खारी और पस्ती व बदहाली मुसल्लत कर दी गई। वो अल्लाह ताला के गजब में घिर गए, जिसकी वजह यह थी कि वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करने लगे थे, और उसका सबब यह था कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते और हुदूद शरीयत से आगे निकल जाते थे। सामने कराम, यहाँ मसूर दाल की बात आई है, आदस कहते हैं अरबी में इसको, इसी तरह बसल प्याज को कहते हैं। तो इन लोगों की चाहत थी कि उन्हें इस तरह की जो है ना देहाती खाने मिल जाए, हालांकि मन सलवा ये जो इसकी जो गजा थी ये अल्लाह सुबहान तआला ने उनके लिए मुहैया फरमाई थी, और ये गजा उन्हें सहरा में इस हालत में मिल रही थी कि वो फिरौनियों के गुलामी और शिर्क कुफर के इताअत की जिल्लत से बिल्कुल आज़ाद थे। रूखी फीकी गजा जो आज़ादी के साथ नसीब हो रही है, गुलामी और जिल्लत के हलवे से हजार दर्जे बढ़कर है, लेकिन कोई बाइज्जत शख्स ही इस मर्तबे को समझ सकता हो। तो इसी वजह से जब इज्जत चली गई तो अब है जिल्लत। वही बात आ रही है कि यह हौलनाक हादसा के बनी इसराइल पर फिर जिल्लत व मस्करत मुसल्लत कर दी गई और वह अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक हो गए। तो सामने कराम, ये एक अहम कुरानी मोती है, बाइज्जत जिंदगी गुजारना। बाइज्जत जितनी भी गजा मिले, जितना भी रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से हो, मुकद्दर हो, बस उसी को, उसी पर किफ़ायत शायरी और कनात इख्तियार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना अगर कोई कनात इख्तियार नहीं करता तो उसके लिए जिल्लत और मस्कनत है, जैसा कि कौम मुसवी के हवाले से या इस आयत में कही गई, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ। सामिन किराम, फिर इसके नतीजे में ये हुआ, जब उन्होंने बाइज्जत ज़िंदगी अपनाने से इनकार कर दिया तो बनी इसराइल पर ज़िल्लत व मस्कनत मुसल्लत कर दी गई और वह अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हो गए। मज़ीद उन्होंने और भी क्या किया, उन्होंने जिस संग दिली, इनकार जहूद और जुल्म सितम के साथ हक के दाइयों और हादियों का इस्तकबाल किया है, उनके साथ जो मामला किया है, इसकी कोई मिसाल किसी उम्मत की तारीख में नहीं मिलती। यानी उन्होंने कितने ही अंबिया को कत्ल किया, बदतरीन हरकत जो कोई कौम हक के मुखलिस दाइयों के साथ कर सकती है, उन्होंने बदतरीन कुफर, हुदूद इलाही से इंतहाई इन्हराफ और अल्लाह ताला की शदीद तरीन नाफरमानी की। उनमें से हर मैदान में उनके बदतरीन सियाह कारनामे हैं, जिनकी कोई मिसाल किसी कौम की तारीख में नहीं मिलती। अब बनी इसराइल के इस रवैया में ही हमारे लिए भी बहुत बड़ा दर्स इबरत है। हमने भी अपनी आज़ादी की नेमत को ख़तरे में डाल दी है और इस बात पर ध्यान न दिया कि जो लज़ाइज़ दुनिया उन्होंने हासिल किए, उनके साथ ज़िल्लत के कितने घिनौने मफासिद चिपके हुए हैं। क़ुरान मजीद के इस मकाम से यह हकीकत वाज़ह होती है कि इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो तो वो खाने की लज़्ज़त दस्तरखान के तनवात के अंदर नहीं ढूँढता, बल्कि ज़मीर और इरादा की आज़ादी के अंदर ढूंढता है। ये चीज़ अगर उसको हासिल हो तो खुश्क रोटी भी उसके लिए काफ़ी है। वही सामने कराम, इस आयत में हमारे लिए ये इबरत भी है कि जो कौम भी अल्लाह ताला की आयात का इनकार करती है और अम्बिया इकराम के उस्वा हसना को नज़रअंदाज करके उन नफूस कुदसिया पर दस्तराजी करती है या अमलन उसका रवैया नाफरमानी और ज़्यादती का हो जाता है, वो कभी राहयाब नहीं हो सकती। तबाही व बर्बादी और रसवाई व खारी उसका मुकद्दर हो जाती है, जैसा कि आजकल हमारे साथ भी हो रहा है। तो हमें चाहिए कि भाई इस गड्ढे में गिरने से पहले हम अपने आप को खुद संवार लें और इसकी फिक्र करें। सामिन किराम, इस्लाम की दावत आम और आलमगीर है, तमाम फ़िरक़े और टोले खुद साख्ता हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं है। किसी शायर ने खूब कहा है, मनफात एक है उस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पंपने की यही बातें हैं। आज दुनिया भर में मुसलमान

0: जो है ना उन्हें मिलकर रही और वो जानवर बना दिए गए, क्योंकि वो इरादा व इख्तियार रखने वाले इंसान के मकाम से गिरकर हैवानात की दुनिया में शामिल हो गए थे। जानवर इरादा व इख्तियार नहीं रखता, जानवर पेट की ख्वाहिश और पुकार से ऊपर नहीं उठता। इन लोगों ने इरादा व इख्तियार की खसूसियत को खो दिया था, जिसके जरिए इंसान अहद इलाही के सिलसिले में साबित कदमी का मुजाहरा करता है और वो जानवर के पस्त मकाम पर जा गिरे थे। अब जरूरी नहीं है कि वो जिस्मानी एतबार से भी बंदर हो गए हों, अपनी रूह और अपने तर्ज फिक्र के एतबार से बंदर हो गए थे, ये भी कह सकते हैं। और ये हकीकत है कि इंसान के तर्ज फिक्र का उसके चेहरे, उसके जाहिर और उसके खद्दो खाल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इंसानों के बंदर बनाए जाने का ये वाकया तमाम मुखालिफिन हक के लिए जो इस दौर में थे या उससे मुतसिल अदवार में हुए इबरत का सामान बना, और अहले ईमान के लिए तो हर दौर में मौइज़त व नसीहत का हामिल वाकया था।
1: आइए फलाह अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: सम्मिलित नाम इंसान की असली खसूसियत ये है कि वो अपने नफ्स की कोई ख्वाहिश पूरी करते वक्त पहले ये देखता है कि इस ख्वाहिश को पूरा करना जायज़ भी है या नहीं, और अगर जायज़ है तो उसके लिए क्या शरई और अखलाकी हदूद व क़ुयूद हैं। इंसान में जब वाकई अखलाक व इंसानी शऊर हो, बरक्स उसके बंदर की किसी ख्वाहिश और उसके फेल के दरमियान अखलाकी हदूद व क़ुयूद की कोई रुकावट नहीं होती, जिस चीज़ को उसका नफ्स चाह बैठता है उसको वो फौरन कर गुजरता है। अगर यही हालत अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में किसी इंसान या किसी इंसानी गुरोह की हो जाए तो उसके दरमियान और बंदर के दरमियान कोई मानवीय फ़र्क नहीं रह जाता, सिर्फ एक ज़ाहरी फ़र्क थोड़ा सा रह जाता है जो सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक अकली और अखलाकी जवाल अपनी आखिरी हद को नहीं पहुँच जाता। जब ये जवाल आखिरी हद को पहुँच जाता है तो ये थोड़ा सा ज़ाहरी फ़र्क भी बिलाखिर मिट ही कर रहता है। तो यहाँ बात ये थी कि उनके अखलाक जो है ना जानवरों की तरह हो गए, वो अगर इंसानों की सूरत में थे मगर अब उनमें और हैवानों में कोई चीज़ मुमय्यज़ न रही थी। अब वो खैरुल बरिया बेहतरीन मखलूक की बजाय शर्रुल बरिया बदतरीन मखलूक अल आमा यानी अंधे अल्लज़ीन ला यालमून बेखबर अक्ल से आरी इंसान थे, अंजाम कार कौम की और यानी आखिरी हालत ये हुई कि वो बंदर और सूअर बना दिए गए, क्योंकि बास अमराज इस किस्म के होते हैं कि इंसान की सूरत मस्ख हो जाती है और वो बिल्कुल जानवरों के मुशाबे हो जाता है। अब ये अल्लाह ताला का इरादा है, अल्लाह ताला का जो है ना उनकी हिकमत है और उनके इल्म में है। वो बदामालियों की सज़ा जैसे और जिस तरह चाहे दे सकता है। एक मकाम पर इरशाद हुआ है, وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت شیطان کے بندے بنا دیا، یہی لوگ درجہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر ان لوگوں کا حال بتایا گیا جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے اور خواہشات نفس کے بندے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، نہیں نہیں بلکہ ان سے بھی یعنی بدتر۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ مُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس طرح جانا پرہیزگاروں کے لیے یہ سزا یا قوم بنی اسرائیل باعث نصیحت بنی تاکہ ویسی غلطی کا ارتکاب نہ کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرتے رہیں۔ سامعین کرام، ان آیات میں ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے کہ جو افراد یا جو قومیں اخلاقی حدود و قیود سے تجاوز کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہیں، اس کا قانون اٹل اور یقینی ہے۔ تو گویا یہاں قومیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو فسادی قوم اور ایک اصلاح پسند قوم۔ اگر فسادی قوم رہی تو یہاں جو ہے نا بڑی فکر کی بات ہے، بڑی دعوت کی محنت کرنی پڑے گی اور ان میں جو ہے نا اصلاح کی فکر کریں، اور اصلاح پسند

0: कुछ खराटे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि वो सांस रुकने की बीमारी की अलामत भी होते हैं और आज हम कुछ इसी सिलसिले में बात करेंगे। जरा सब्र आप रखिए कि आप सो रहे हैं लेकिन नींद के दौरान आपकी सांस चंद सेकंड के लिए रुक जाती है, कभी 10 सेकंड के लिए, कभी 20 सेकंड के लिए। बस अफराद में एक रात में कई बार ऐसा होता है, तो इससे हमारे दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है तो दिमाग जिस्म को जगा देता है मगर फिर हमें या आपको याद भी नहीं रहता। उसका नतीजा क्या होता है, बहुत ही मसाइल सामने आ जाते हैं। आप सोते तो हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, यानी जब आप उठते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते। अगर कोई शख्स कहता है कि पूरी रात सोता हूँ फिर भी थका हुआ होता हूँ, सुबह सर दर्द होता है, दिन में नींद आती है, याददाश्त कमज़ोर हो रही होती है, तो ये सब नींद की कमी नहीं है बल्कि नींद के दौरान सांस रुकने की अलामत हो सकती हैं। जब बार बार सांस रुकती है और दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और इसी तरह ब्लड शुगर का ख़तरा बढ़ जाता है, फालिस और दिल के दौरे का इम्कान भी ज़्यादा हो जाता है। ये सब खामोशी से होता है बग़ैर किसी दर्द के, यानी ख़ास तौर पर वो अफराद जिनका वज़न ज़्यादा है वो इसमें मुबतला हो सकते हैं, तो उन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो अफराद जो स्मोकिंग करते हैं और ऐसे अफराद जिनकी गर्दन जो है वो मोटी होती है, और मर्द हज़रात इसमें ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। 40 साल से अगर उम्र ज़्यादा है तब भी ये ख़तरा हो सकता है। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि हर खराटे लेने वाला शख्स मरीज नहीं है मगर हर ख़तरनाक खराटा संजीदा हो सकता है। तो लिसनर्स, अगर कोई बीमारी नींद छीन ले तो वो ज़िंदगी भर मुतासिर करती है, तो फिर खराटों को नज़रअंदाज ना कीजिए, ये जिस्म की तरफ से दी गई एक वार्निंग हो सकती है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: में, वरना फिर इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं कि सारा रकम तो सारी जिंदगी तो मैंने भेजता रहा मैं पैसे, और अब ये कुछ इसे नखट्टू ने कुछ किया भी नहीं और अब ये हिस्सा मांग रहा है, फिर ये लड़ाइयाँ होती हैं। उस लड़ाई से बचने के लिए आपको ये एक तरीका अख्तियार करना चाहिए पहले ही। अब ये है कि अगर आप भाई को मना लें और कहें कि देखें आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ सारी दुनिया जानती है कि ये सारी रकम जो है असल में मेरी है, अब्बा जी के नाम हम एहतरामन उनका बड़े भाई या बड़े घर के सरबराह हैं, सरबराह होने के नाते से उनके नाम पर लिखी गई लेकिन असल तो उनकी नहीं है ना, तो इसलिए आप अपने ये डिमांड ना करें, ये कर सकते हैं लेकिन कानूनी तौर पर चूँकि आपने अब्बा जी के नाम करा दी उनके नाम रजिस्टर हो गई और वो फिर अब उनका कानूनी तौर पे उसका हक बन जाएगा, वो उसको लेगा अगर लेना चाहे तो, लेकिन अगर वो आपकी बात मान जाता है कि नहीं असल सारी मैंने तो आपकी है मेरी दूसरे कोई मेहनत नहीं सिर्फ मैं इसमें से डिमांड नहीं करूँगा, लेकिन आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, नहीं करते, वो कहते जो मिल रहा है तो क्यों ना लूँ।
1: सुनिए ना मेरा बात आप भी फिर थोड़ा नहीं समझा, क्या समझिए रुकिए हम भी कह रहे हैं आपको, वो क्या करते हैं पहले देखिए वो ज्यादा पैसा कमा रहा था, हम लोग गरीब से नहीं कमा रहे थे ठीक है, अब्बा जी कर्ज में डूबे हुए थे ठीक है ना, वो तब ये वो निकल गया, वो उसका दुकान है या कतर में ही दुकान है मेजर में दुकान है, वो अच्छा पैसा खासा कमाया, वो बोला हमारा भाई लोग हक ले लेगा हमसे ठीक है, वो बंदा करके सरकारी से निकल गया ठीक है ना, वो बोला हम कुछ नहीं चाहिए मेरे को सरकारी से वो नहीं चाहिए उसको, सब बंदा वगैरह कर लिया, अभी 10-20 साल जब हो गया है ना वो बोलता है कि ना अभी हमको चाहिए जो भी है हमारा हक चाहिए सब मिलता है, जैसे हम लोग पांच भाई साथ में रह गए, हम लोग पांच भाई एक साथ कमाए ठीक है ना, अब वो पहले अलग हो गया, बोला हम कितने जाकर बंदा सरकारी से सब कर लिया हो, ये वैसा बात है,
0: ये वही बात है, लेकिन मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसको, अभी मैं मौलाना के लिए छोड़ देता हूँ, वो इसके
1: तो हदीस क्या कह रहा है, हमको ये सुनना है हदीस क्या कह रहा है उसको, तो वो हदीस मसला उसके थोड़ा सुनाना है ठीक है, मैटर में ही है मतलब
0: जी भाई
1: दुकान है सही कंपनी जो है उसका कमी नहीं है पैसा सब भाई से आगे है ठीक है ना।
0: देखिए ना अगर किसी जायदाद जब तकसीम हो रही होती है ना तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, जो जायदाद में तो जो कानून है बस वो उसके मुताबिक उनका जो हिस्सा बनता है वो देना होता है, लेकिन अब आपने जो इसकी बुनियादी गलती थी वो पहले की थी वो आ गई, फिर उसके बाद दूसरी आ गया, भाई ने पहले कहा नहीं चाहिए फिर कहता चाहिए लेना है, तो अब ये इस तरह आपने मसला जो ना आपका और ज़्यादा उलझ गया है, तो अब इसको बेहतर तो यह कि अदालत इसका फैसला करे, लेकिन शेख साहब इंशाल्लाह इसका उन्हें इसको जवाब जरूर देंगे भाई अभी थोड़ी देर में।
1: हाँ ठीक है, इसका थोड़ा हदीस क्या तो हमको ये सुनना है, हदीस तो बोलते हैं देने के लिए तो उसको देना है, नहीं तो कानून से किधर से भी हम तो ऐसे सब भाई बात बोलते हैं जो है तो दे दो, हम बोलते हैं नहीं हम कमाए हम नहीं देंगे ऐसा बोलते हैं, तो हम बोले नहीं
0: जी हदीस में तो जाहिर है कि जब हदीस के मिल्कियत के बारे में होगा पहले चीज़ देखना होगा कि मिल्कियत किसकी है, वो जो वालिद साहब के दाने के बाद उनके नाम से जितनी चीज़ें रजिस्टर हुई थी वो सारी की सारी वालिद साहब की जायदाद शुमार होंगी, वो विरासत शुमार होंगी, वो तकसीम हो रही है, अगर सब इससे मुतफ़िक़ हैं हाँ जी वालिद साहब के ना है बिल्कुल उन्हीं क्या है, लेकिन अगर आप पुरानी कहानी निकालेंगे कि नहीं इसमें ज़्यादा हिस्सा फलाह ने दिया था या किसी ने कुछ भी नहीं दिया था किसी ने तो कम दिया था, तो वो एक दूसरा मसला टेढ़ा हो जाएगा, इसमें हदीस आपको हदीस तो किसी भी मसले में उस वक्त फैसला करेंगे कि जो क्लियर हो चीज़ ठीक है। अभिषेक साहब
1: बापा जिंदा है, बाप माँ भी है हम लोग भाई भी सब है समझे ना, हम भी कतारे में हम भी गाड़ी चलाते हैं, तो इसीलिए हम तो फोन नहीं किए थे कभी, हमको टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये हदीस की बात पूछने के लिए हम आज किया।
0: अच्छा अभी मीरास के तकसीम का मसला नहीं आया, तो अभी फिलहाल जो वालिदैन के उनकी मौजूदगी में वो कैसे डिमांड कर सकता है,
1: डिमांड अभी करता है अभी जैसे जगह का महंगा हो गया पैसा ज्यादा हो गया, पहले कमती पैसा था जैसे 5 लाख था, अभी 20 लाख उसका संपत्ति का नाम हो गया, तो बाप माँ भी उसको बाप माँ भी वही बोल रहा है हमको क्या मत हिसाब देगा, हज भी कमाए हम लोग अभी बाप माँ, हम बोले पर वो कमा के भी नहीं दिया, कमाए हम लोग पास भाई वो कमा के अलग में जमीन लिया घर बनाया मकान बनाया उसकी कंपनी भी है, फिर भी अभी आता है वो मांगता है ऐसा, हम बोलते हैं ऐसा तो बवा भी कहता है हमको क्या मेरे हिसाब होगा ऐसा का होगा और दे दो ऐसा का बोलता है, हम बोलते हैं जो
0: उसमें ये कीजिए कि अब्बा जी से कह दीजिए कि अब्बा जी जो रकम मैं आपको भेजता रहा हूँ आपके पास सारा हिसाब किताब मौजूद है, आप मेरी रकम मुझे ने उसमें से इन आपकी आपके नाम पे नहीं है, मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखवाता रहा हूँ, वो मेरी रकम है आप मेरे हवाले कर दें।
1: यही बात है ना, बाप अभी वो बोलता है खाली क्या दिन पर अभी पहले

0: ऐसे में अगर अब्बा जी जोर देते हैं ना कि नहीं उसको भी हिस्सा दो, वो गलत, उनका मौकफ गलत होगा, अब्बा जी गलती कर रहे हैं, उनका हिस्सा बनता नहीं है, रकम आपकी है, जायदाद आपकी है, मेहनत आपकी है, पैसे आपके हैं, अब्बा जी के पास अमानत थे, अब्बा जी के सबसे बड़े हैं हमारे घर के, दूसरे उनके पास रखी हुई थी, अब वो कह रहे कि नहीं उसको भी दो, उसको भी दो, ना ये उनका फैसला गलत है, ये उनकी राय गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम इससे मना करता है, इस्लाम जुल्म का, ये जुल्म है ना आपके साथ, तो इस्लाम ऐसा कोई हुक्म नहीं देगा कि इसमें किसी के साथ भी जुल्म हो। हाँ, अगर उसका वालिद साहब के नाम कर दिया गया है और दुनिया से चले गए हैं, उसके बाद आप कोई रास्ता नहीं है, आप वालिद साहब हयात हैं, उनसे कहें कि मेरी अमानत आपके पास थी, वो मुझे वापस दे दीजिए, जो मेरे नाम पर कर दीजिए, उसके बाद फिर हम देखें, देना चाहेंगे भाई को देंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगी, मिल्कियत जब आपकी हो जाएगी तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, दें तो अच्छी बात है, अजर मिलेगा, नहीं देते हैं तो भी कोई मुआवजा नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं, हाँ इल्ला ये कि वो बहुत बीमार हो, कमज़ोर हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो, कुछ नहीं उसके पास, फिर मदद के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई होने के नाते, फिर उसकी मदद लाजमी होगी, लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं,
1: समझो ना, वो भाई तो फैमिली में, वो पहले किसी घर में दिया ही नहीं, फिर वो पहले आया 99 में आया, पहले कमा कमा सो रखा, हम लोग को नहीं दिया घर पर किना, इधर उधर
0: नहीं, वह भाई गलत कह रहा है, भाई का हक नहीं है भाई, इसमें नहीं बनता भाई का हक, भाई को
1: सरकारी से वो क्या सोचा, समझे ना, हमसे भाई लोग जो है ये गरीब भाई लोग अपना आपस में हमको हिस्सा ले लेगा, वो सरकारी से करके निकल गया, वो क्या बोला हमको पता कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए, अभी वही जाता है
0: नहीं, वो उनको ये हक नहीं बनता है उसका, ये उनका हक पहले था, पहले भी नहीं था तो अब भी नहीं था, जो पहले भी उनके जब पैसे आपके अब्बा जी के पास हैं और वो उसने कहा मैं नहीं लूँगा, दर के उसको नहीं लेने चाहिए थे, और जो डिमांड कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और अगर लेके डिमांड करके किसी तरीके से भी ले लेंगे तो फिर आग लेंगे, अल्लाह के रसूल की जो हदीस याद आती है ना, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है ना कि अगर कोई मुझे अपनी चर्म जुबानी से किसी तरीके से मुझे कायल कर लेता है और मैं किसी का हक दूसरे को दे देता हूँ तो वो अपने लिए आग का टुकड़ा ले रहा है, तो आग का टुकड़ा उसको भाई को नहीं लेना चाहिए, अल्लाह ताला बचाए उसे भी आग से। अभी शेख साहब से इनके बारे थोड़ी देर के बाद, बहुत शुक्रिया आपका भाई नसीब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके नसीब और बेहतर करे, बहुत शुक्रिया आपका, और चूँकि काफ़ी लंबी बात होगी इनसे और अगली कॉल अगर फौरी आ जाए तो हम ले लेते हैं, वरना फिर अगर थोड़ी सी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं ताकि हम बाद में किसी मुश्किल का शिकार ना हों। सामिन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते हमने जिस दुआ का आगाज़ किया था उसका पहला हिस्सा था, उसका पहला हिस्सा पेश किया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही, उसको थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं, मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम, अब ये दुआ हो जाएगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम, ए अल्लाह मैं तुझसे हर खैर की पूरी खैर की दुआ मांगता हूँ, हर खैर की दुआ मांगता हूँ या मांगती हूँ, वो जो मुझे फौरी मिल रही है या ताखिर से मिले, मैं उसे जानता हूँ या मैं उसे वाकिफ़ हूँ ना वाकिफ हूँ, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में हो मेरे इल्म में ना हो वो खैर भी चाहिए, और जो फौरी मिलने वाली है वो खैर भी चाहिए, जो बाद में मिलने वाली है मुझे, मैं उस खैर के भी तुझसे तलबगार हूँ, तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिही, हर मुकम्मल को खैर मांगता हूँ, आजिलिही व आजिली और मा आलिम तुमिन हो व मालम आलम, यहाँ पर रोकते हैं और उसके बाद फिर अगला हिस्सा इंशाल्लाह अगले हलके में ले आएंगे इंशाल्लाह ताला, और अब हम सवालात की तरफ आ जाते हैं। शेख साहब, इस पे दुआ के हवाले से कुछ हिसाब फरमाइएगा।
2: जज़ाकल्लाह खैर शेख मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहतरम, इतनी आप इजाज़त देंगे तो इतना याद करूँगा कि इसमें दर हकीकत दो दरसें हैं इसी मक्ता, दुआ की इसी मक्ता और इसी हिस्से में। एक शेख अपनी नादानी और कम इलमी को तस्लीम करना और अल्लाह के सामने उस पर इकरार करना, और शेख ये कि जो खैर मैं जानता भी नहीं हूँ उसके बारे में मुझे इल्म भी नहीं हो वो भी मैं आपसे चाहता हूँ, और वो दर हकीकत ज़्यादा तो वही है शेख, वमा उतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला। हाँ शेख मुहतरम,

0: हमारे सदर भाई, शेख साहब ने भी आपसे लुत्फ़ फरमा कर जवाब दिया। इसका बिल्कुल वाज़ह बात है, इन लोगों ने ये करके आपको, यानी जो जीता है उसको वादा दिया है, उसको वादा दिया है, और वादे पर वफा जो है वो फ़र्ज़ है, और वादा ख़िलाफ़ी खुदा ना खास्ता जो है ये मुनाफिकीन की एक सिफत है। ये लेकिन ये निफाक अमली है, निफाक इत्तेकादी नहीं है, एहतियात इसमें करनी चाहिए, जिसमें हो तो तौबा करना चाहिए, अल्लाह की तरफ लौट कर और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। आप लोगों का हक़ बनता है हमारे इस जहद पर, जो भी हो ये लोग हम नहीं जानते हैं उनको, अगर खुदा नास्ता नहीं दिया जानबूझ कर तो गुनहगार हो जाएंगे, और आपका हक़ इन लोगों पर बाकी रहेगा क़्यामत के दिन, कम अज़ कम अल्लाह ना कर ले, वहाँ तक अल्लाह कर ले कि आपको आपका हक़ मिल जाए। अगर आम तौर पर हम बात करते हैं हुकूक़ हुकूक़ुल आदमीन, मखलूक के जो हुकूक होते हैं दुनिया में, आदमी ने किसी इंसान ने ज़ाया कर दिया, उसको साहिब हक को नहीं दिया, उसका हक क़यामत में देना पड़ेगा उसको, लेकिन आमाल में से, अच्छाइयों में से अल्लाह तबारक व तआला उसे अच्छाइयाँ लेकर मज़लूम को देंगे जब तक वो राज़ी नहीं हो जाएंगे।
1: और अगले सवाल की तरफ आते हैं, वो है मोहम्मद सऊद साहब की तरफ से। दो बेटियों का जिक्र किया उन्होंने कि उनमें से एक बेटी ने पेपर वगैरह तैयार किया और जो कुछ अब्बा जी के नाम जायदाद वगैरह जो कुछ चीज़ें थी वो सारी उन्होंने अपने नाम पर लिखवा ली, और दो दफ़ा उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़बरदस्ती लिखवा ली। अब ज़बरदस्ती क्या कैफियत थी वो हम नहीं जानते, लेकिन ज़बरदस्ती उसने लिखवा ली। अब इस अमल के बारे में जो दूसरी बेटी वो कहती है कि मैं अब क्या झगड़ा करूँ, मैं अल्लाह ताला से हवाले करती हूँ, अल्लाह दे के मुझे, या आखिर जो भी होगा वो उसका फैसला कराती हूँ, आपकी क्या राय बनती है?
0: शेख मतलब आप इजाज़त देंगे मुझे, तो मैं अपने सऊद भाई से याद करूँगा कि शबक इस्लामी इस्लाम वेब वाले जो है शेख, ये ज़बरदस्ती के बारे में उन लोगों ने कहा कि अगर कत्ल या मारने की धमकी हो तो ये रमज़ान में शेख मोहतरम दिन में जिमा करने के बारे में उन लोगों ने एक फतवा में ये बता दिया है, या कोई और ऐसी चीज़ की धमकी हो शेख जिसको ये आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तो ये मुकरह है, ये मुकरह, इस पर इकराह किया गया और ज़बरदस्ती की गई है, इस पर तो गुनाह नहीं है शेख, मजबूर है, लेकिन वो जो कर चुकी है इसको यकीनन गुनहगार हो गई है, और उसके लिए ये माल जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस है कि किसी मुसलमान की चीज़ और माल जो है वो उस मुसलमान जो मालिक है उसकी दिली रजामंदी के बगैर किसी के लिए जायज़ हो ही नहीं सकता है, तो उसने दिली रजामंदी से तो नहीं यह काम किया है। और अगर ये हो शेख मुहतरम कि उसने मर्जी से किया हो या ये ज़बरदस्ती ना हो जैसे आप फरमा रहे थे, बस ऐसे ही नाम दिया है इन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती का, तो फिर तो ख़ुद वो गुनहगार है शेख मुहतरम, और ये बातिल है, ये बातिल हैं। ज़्यादा उलमा किराम शेख यही फरमाते हैं कि ये नाफिल नहीं होगा, बल्कि जैसे आपने भी फरमाया, ये दूसरी बहन, मज़लूम बहन जाएगी महकमा को, तो काजी जो है इसको बातिल करार देकर तरीका और तकसीम मीरात जो है उसको उसी तरीके से करेंगे जैसे बिल्कुल ये काम हो ही नहीं गया। अल्लाह
1: जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला हर ऐसे काम से बचाया कि जिसमें आखरत में पकड़ हो, चाहे अब्बा जी के हो, बेटी हो, कोई फ़र्द हो, कोई भी जानदार है, इंसान है या मुसलमान हम कह सकते हैं कि वो आखिरत की पकड़ बहुत शदीद है, अल्लाह ताला उससे बचाए, और दुनिया में थोड़ी बर्दाश्त भी कर भी ले तो खैर ही है, लेकिन जो आखिरत में जो सज़ा है वो अली इब्न शदीद।
0: हाँ शेख मोहतरम, और हमारे वालिदैन से ये इल्तिजा और हर्ज़ है उन लोगों से कि आप ज़रा एहतियात करना चाहिए आप लोगों को। हदीस में ये बात आई है कि तक़ुल्लाह वअदिलु बैन औलादिकुम या फ़ी औलादिकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह से डरना है, ये काम नाजायज़ है, औलाद की दरमियान बेइंसाफ़ी से काम नहीं लेना चाहिए किसी शरई वजह के बग़ैर शेख मोहतरम, क्योंकि शेख दुनिया और आखिरत में ये एक ख़राब चीज़ है और इसके आसार बुरे जो है उस पर मुतरतब होंगे। इन लोगों के दरमियान भी शेख अदावत, बुग़्ज़, कीना, हसद और झगड़ा और दुश्मनी, और आखिरत के लिए भी, क्योंकि गुनहगार होंगे ना ये शेख जिसने ये किया हो।
1: वालदैन की ज़िम्मेदारी है, और बल्कि आजकल के दौर में तो अजीब अजीब वाक़ देखते हैं इसी तरह की कार्रवाइयों में ना, वो ठीक है वो कर तो कुछ नहीं रहा, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाप हूँ तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उसको दे दो। भाई आप बाप अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेटे के माल में से आपको इख्तियार नहीं है कि आप कहें कि ये माल जो तुम्हारे तुमने कमाया है तुम्हारा है तो तुम्हारा, लेकिन उसको दे दो, ये आपका इख्तियार नहीं है अब्बा जी। تو
0: تو یہ فہم کے شکار ہو گئے لوگ، انت مالک علی ابی کو غلط سمجھ کر، یہ سمجھ کر کے

0: आम दिनों में हम इसका एहतमाम हो जाता है, लेकिन जब रमजान का महीना होता है उसमें जो नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं जैसा हनफी मसले के हिसाब से नहीं होती, वो मालिकी या शाफी मसले के हिसाब से इमाम साहब की जो दो रकात और एक रकात होती है, तो इसमें जो हनफी मसले के हिसाब से जो तीन रकात साथ में होती है और दुआ कुनूत पढ़ी जाती, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए, उनको अलग से आके अगर नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब है या अलग साथ में मिल के ज्वाइन करके पढ़ लेंगे दो और एक उसमें सवाब है, क्या कर सकते हैं?
1: इसमें मुख्तलिफ लोग इसमें शिद्दत करते हैं, हालांकि शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जो फ़र्द भी आपको वितर पढ़ा रहा है, वो जिस तरह भी पढ़ा रहा है, ये जो तरीके हैं ना, दो अलग और एक अलग, ये अलग रसूल ने बताए हुए हैं ना, तो अलग रसूल के आप कहते हैं कि नहीं, ये तो अलग हदीस तो है लेकिन वो फ़लाँ मसलक वाले करते हैं, हम नहीं करते, हमारे मसलक में नहीं है, तो भाई अल्लाह आपने हदीसों को मसलकों में क्यों बांट दिया है? दीन अल्लाह के रसूल ने दिया है, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, उसके बाद फिर ऐसे मसाइल में कि जो हमें जिनका जवाब कुरान और हदीस से नहीं मिलता हो, फिर हम रुजू करेंगे आइमा से, भई आप बताइए कि हमें इसमें क्या करना है। लेकिन अगर हम हर चल में इसी बात को तरजीह देंगे हमारे इमाम हमारा मसलक, तो फिर तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे कि अल्लाह के रसूल की बात को ठुकरा रहे हैं और कहते हैं कि नहीं इमाम साहब की वो फौकियत, क्योंकि हम तो उनके मुकल्लिद हैं इसलिए उनको फौकियत देंगे, अल्लाह के रसूल की हदीस को फौकियत नहीं देंगे, तो ये फिर आखिर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर हमारे एक जो मुझे वाकई भी याद आ जाते हैं लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, हम अभी जो शेख साहब के हवाले करता हूँ मैं, वो अभी थोड़ी देर में इसके बस एक सवाल के बाद अच्छा,
0: उसकी बात पूछना था, ये अभी जो शो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जुम्मा फ्राइडे के दिन ही होगा जो भी शो अपना जो शो चल रहा है
1: जी, ये हर जुमे को शेपहर 4 बजे शुरू होता है, 4 से 5 बजे तक होता है, हर जुमे होता है।
0: 4 से 5
1: जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम नवीद भाई। और शेख साहब अब अपने जवाब की तरफ।
2: हाँ शेख मोहतरम, वो हमारे नसीब भाई से अर्ज़ यही है कि देखिए जैसे शेख साहब ने भी आप लोगों से फरमाया, अगर भाई ने इस पैसों को दिया वाले साहब को और भेजा उसको हिबा और बख्शिश की नियत से और बतौर हिबा और बख्शिश, तो फिर तो वाले साहब ने पैसों को लेकर कब्ज़ किया हो तो फिर तो खलास बात ख़त्म हो गई, और अभी तक वाले साहब जिंदा है तो उसका हक है, उसकी चीज़ है, उसका माल है, शेख जो भी करना चाहते हैं किसी को उसके साथ, जैसा हर एक का अपना माल जो है उसने उसको इख्तियार हासिल, तो ये भी ऐसी बात है। और अगर अमानत के बतौर भेजा हो तो फिर बिल्कुल ये एतराज़ कर सकता था, अगर ये नहीं कह राज़ी नहीं होता था उस टाइम में शेख, जैसे नसीब भाई मेरे ख्याल में ये कह रहे थे कि उसने कहा कि चलो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, अभी इस सूरत में कि उस टाइम में तनाजुल करके कहा चलो मुश्किल नहीं, आप भाई लोग मेरे जो है इसको अपने आपस में तकसीम करके आप ले लें इसको, मैं नहीं लेता हूँ, अभी तराजो कर लिया है, तब भी शेख मोहतरम जमहूर उलमा किराम मालिकी शाफी और हम्बली मज़हब के उलमा किराम जैसे आपने दलील भी जिक्र किया और फरमाया, यही फरमाते हैं कि नहीं बात ख़त्म हो गई है और यह हराम है, क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस भी है शेख इसके बारे में, एक सहाबी को मुखातब करार देकर फरमाया कि एक दिरहम में भी आपका सदका जो है आपको मिल जाता है ना तो लेना नहीं, वो बहुत कीमती चीज़ होगी, शायद महंगी चीज़ होगी, आपको एक दरहम पर दोबारा वो जिसको आपने दिया है सदका करके वो आपको दे रहा हूँ तो नहीं लेना है आप, और ये भी सदका है ना शेख मुहतरम, तो इसलिए हमारे भाई को ये चाहिए कि ये ना कर ले, ये इससे इज्तनाब कर ले और ख़ुददारी कर ले। वह शेख मुहतरम जैसे आपने फरमाया इसमें हमारे मुल्कों में ज़रा एक खुद हम कुछ गलती करके इस चीज़ में वाकई होते हैं शेख, पैसे तो इस्लाम में और माल उसी का होता है जिसने कमाया हो ना शेख मोहतरम, तो ये एक तो यह है कि अपनी मर्ज़ी से आप किसी और को देंगे, वो तो किसी और आदमी को भी आप देख सकते हो जो आपका रिश्तेदार भी नहीं हो, सदका तो इसलिए हम देते हैं ना शेख मोहतरम, ये जायज़ है, और या किसी को आप शरीक करेंगे अपने साथ ये भी जायज़ है, हदीस में यह बात भी आई है, तो शुरू से बात क्लियर हो तो बेहतर होता है, मैं कमा रहा हूँ और मेरी चीज़ मेरी है, आप लोगों की जो चीज़ है और कमाई है आप लोगों की होगी।
1: हाँ नहीं, उसमें थोड़ा सा है, थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वालदैन वहाँ हैं, ज़रूरतमंद हैं, आप कमा रहे हैं, आप कुछ रकम उनको दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, उनका हक अदा कीजिए ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाते फिरे, इसमें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको दें, लेकिन ये नहीं कि सारा दे दें।
2: हाँ बिल्कुल शेख मोहतरम, तो यही बात हो गई हमारे नसीब है, अगर आपके भाई ने बख्शिश दिया हो अपने वाल साहब को तो बात ख़त्म हो गई, उसने लिया इस चीज़ को कब्ज़ कर लिया, अपने तसरफ़ किया उसमें, मिल्कियत में दाखिल कर ली उसने, और या ये कि उस टाइम में इसने भाइयों को देकर कहा हो कि खलास मेरी तरफ से ये बख्शिश और एक हवा और अतिया जो भी हो, तब भी उसको

0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
1: Well, आज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंड योर बॉडी की. पानी एक ऐसी चीज है जो हम रोज यूज करते हैं पर सीरियसली कम ही लेते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम भूख को तुरंत पहचान लेते हैं पर प्यास को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बॉडी क्वाइटली एडजस्ट कर लेती है. पर डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता. कभी कभी डिहाइड्रेशन का सिग्नल होता है लो एनर्जी, हेडेक, ड्राई लिप्स, पुअर कॉन्सेंट्रेशन और बिना वजह का थकान. हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए पानी सिर्फ थर्स्ट क्वेंचर नहीं बॉडी का फ्यूल होता है. पानी डाइजेशन को स्मूथ रखता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. और एक और इम्पोर्टेंट बात, हाइड्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन मूड से भी होता है. जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है. अक्सर हम सोचते हैं चाय पी ली, कॉफी पी ली, काफी है. पर सच ये है कि चाय और कॉफी हाइड्रेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होता. कभी कभी वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है. वेल, हाइड्रेशन का बेस्ट तरीका ये है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए. सिर्फ तब नहीं जब प्यास लगे, बल्कि इसे रेगुलर हैबिट बना ले. प्यास लगना ऑलरेडी एक लेट सिग्नल होता है कि बॉडी थोड़ा पीछे रह गई है. और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर वक्त बॉटल लेके साथ घूमे. बस अवेयरनेस चाहिए कि हाँ, हर आधे घंटे में मुझे कम से कम 4 सिप पानी के पीने ही पीने हैं. सो अपना स्केड्यूल सेट कर लीजिए. सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, मील्स के बीच थोड़ा सा सिप, वर्कआउट या गर्मी के दिनों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और रात में सोने से पहले भी एक ग्लास फुल पानी. साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाइड्रेशन को, पानी पीने को एक पनिशमेंट ना बनाइए, उसे रूटीन बनाइए. नींबू पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, ये सब काउंट करते हैं. जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना तो एनर्जी नेचुरली बेटर होती है, स्किन फ्रेश लगती है और फोकस भी इम्प्रूव होता है. तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम जब आप लो फील करें पहले अपने आप से पूछिए, मैंने आज कितना पानी पिया है. हो सकता है सोल्यूशन आपके सामने ही हो, क्योंकि जब आप पानी का ख्याल रखते हो आप अपनी बॉडी से ये कह रहे होते हैं मैं तुम्हारी जरूरत को समझता हूँ. और जब बॉडी को समझ लिया जाए ना तो सेहत और सुकून दोनों साथ आ जाता है. इसलिए याद रखिए, हाइड्रेशन सिर्फ हैबिट नहीं, सेल्फ केयर का साइलेंट फॉर्म है. एंड योर हेल्थ मैटर.
0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं टॉपिक पर, उसका नाम है परसिस्टेंस। देखा जाए तो जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है, कभी कई ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, धूप होती है, कभी आंधी भी आती है, कभी हम बिल्कुल थककर बैठ भी जाते हैं और कभी फिर वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसे लम्हों में जो चीज इंसान को गिरकर फिर खड़ा कर देती है वो सिर्फ उसका टैलेंट या हौसला या लक नहीं होता, वो होता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है हर मुश्किल के बावजूद कोशिश जारी रखना। जब सब लोग गिव अप कर देते हैं तब परसिस्टेंस इंसान से कहती है बस एक कदम और बस अपनी मंजिल तक। दोस्तों अगर परसिस्टेंस के मतलब को मैं समझाऊं तो मैं कह सकती हूं कि परसिस्टेंस का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, चाहे रास्ते में नाकामी हो, रुकावट हो, तनकीद या देर ही क्यों ना हो। ये एक ऐसी सोच है जिसमें इंसान अपने मकसद से नजर नहीं हटाता। अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो कल फिर कोशिश करते हैं, अगर कल भी ना मिले तो परसों। परसिस्टेंस का मतलब जिद नहीं है बल्कि सब्र के साथ मेहनत है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि परसिस्टेंट इंसान फेल होने से डरता नहीं, वो फेलियर को एंड नहीं बल्कि लेसन मानता है। हर गलती से कुछ सीख कर वो अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाता है लेकिन रास्ता नहीं छोड़ता। आज की दुनिया को परसिस्टेंस की जरूरत है। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी के बीच परसिस्टेंस होती है। टैलेंट बहुत लोगों के पास है लेकिन सब तो कामयाब नहीं होते ना, तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग रुक कर फिर चल पड़ते हैं। परसिस्टेंस इंसान को मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है, खुद पर यकीन सिखाती है

होते हैं कामयाबी के, लेकिन थक कर पीछे हट जाते हैं। परसिस्टेंस वही कुव्वत है जो कहती है अभी मत रुकना, मंजिल पास है। सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम्स में बार बार फेल हो रहा है। अगर वो परसिस्टेंस छोड़ दे तो उसकी कहानी वही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो हर फेलियर के बाद अपनी गलतियां समझकर मेहनत करे तो एक दिन वो जरूर पास होता है और शायद टॉप भी कर लेता है। या फिर एक अच्छे जॉब सीकर को ही देख लीजिए। हर इंटरव्यू में रिजेक्शंस, ईमेल्स का जवाब नहीं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन जो इंसान परसिस्टेंस रहता है या परसिस्टेंट होता है वो अपना सीवी इम्प्रूव करता रहता है, स्किल्स सीखता है, अप्लाई करता है और एक दिन वो इंसान जॉब हासिल कर लेता है। थॉमस एडिसन का एग्जांपल मुझे याद आता है। किस तरह से उन्होंने जब बल्ब इन्वेंट किया, हजारों बार या हजारों मर्तबा नाकामयाब हुए। जब लोग कहते थे कि तुम फेल हो चुके हो, अब छोड़ दो मेहनत, तब उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये पता चला कि काम कैसे करना है। ये परसिस्टेंस ही थी जिसने दुनिया को आज रोशनी दी। हैरी पॉटर जो ऑथर, उनके नॉवल के वो अपने पब्लिकेशंस के लिए लगे हुए थे, उन्हें करोड़ों बार रिजेक्शंस मिले। आपको ये बात पता है? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। हैरी पॉटर के ऑथर को उनके नॉवल के पब्लिशिंग के लिए बार बार रिजेक्ट किया गया। वो सिंगल मदर थी, पैसों की कमी थी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अगर वो परसिस्टेंस छोड़ देती तो शायद आज दुनिया हैरी पॉटर के जादू से महरूम रह जाती। परसिस्टेंस दोस्तों सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि खुद पर यकीन भी होता है। जब कोई और आप पर यकीन ना करे, तब आप परसिस्टेंस के जरिए आप खुद पर यकीन रखते हैं और ये यकीन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और एक वक्त आता है जब मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाती। इम्पॉर्टेंटली, परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुंध मेहनत करते जाएं। कभी कभी डायरेक्शन बदलने भी पड़ते हैं, अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल, मकसद, वो जिंदा रहना चाहिए। जहां परसिस्टेंस नहीं होती वहां

अधूरेपन की आवाज है। जो लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं वो अपनी असली पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अक्सर कामयाबी दूर नहीं होती, हम ही थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं। तो बस आज जाते जाते आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये समझना बड़ा जरूरी है कि परसिस्टेंस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि रोज का छोटा फैसला है। आज फिर कोशिश करने का फैसला, आज फिर आगे बढ़ने की

0: ही जलती रहती है। अगर आप इस शमा को बुझने ना दें तो यकीन मान लीजिए कोई ना कोई मंजिल जरूर आप रोशन कर ही पाएंगे। आज अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लीजिए आप गलत जगह पर नहीं बल्कि ग्रो होने के करीब हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, परसिस्टेंस रखिए, क्योंकि जो रुकता नहीं वही पहुंच जाता है। चलिए मैं भी पहुंच गई टुवर्ड्स द एंड इस वादे के साथ कि एक और नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक नौजवान बल्लेबाज के बारे में और ये बल्लेबाज हैं समीर रिजवी। जी हाँ दोस्तों, समीर रिजवी को इंडियन क्रिकेट का एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट माना जा रहा है जो अपनी अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और फियरलेस अप्रोच की वजह से जल्द ही लाइमलाइट में आ गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ताल्लुक रखने वाले समीर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के जरिए सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की। हाँ दोस्तों, उनकी खास बात उनका अटैकिंग माइंडसेट है, जहां वो प्रेशर सिचुएशंस में भी बड़े शॉट्स खेलने से घबराते नहीं है। मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए समीर ने कई मैचेस में टीम को मुश्किल हालात से निकाला है, जैसे कि पिछले दो मैचेस दिल्ली के लिए मुसलसल मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स अपने नाम किए और उनकी स्ट्राइक रेट और कॉन्फिडेंस उन्हें मॉडर्न T20 क्रिकेट के लिए एक परफेक्ट फिट बनाता है। समीर का दिल्ली कैपिटल्स के साथ एसोसिएशन उनके करियर का एक अहम मोड़ है। IPL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलना किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए एक ख्वाब जैसा होता है और समीर ने इस मौके को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ रहकर उन्हें सीखने का भी बेहतरीन चांस मिल रहा है और अगर समीर इसी तरह परफॉर्म करते रहे दोस्तों तो वो फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं। उनका टैलेंट और कॉन्फिडेंस उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
1: फ्रॉड अवेयरनेस।
2: गाड़ी चला रहे हैं आप, एकदम से कॉल आती है आपके ब्लूटूथ पे।
3: Assalamualaikum. I'm calling from Cyber Crime Department. आपके QID में illegal activity है. आप digital arrest में हो. जिधर भी हो जल्दी से एक छोटा सा काम करो.
2: ऐसे calls आपको डरा देते हैं, थोड़ा धमका देते हैं. इनका modulation भी ऐसा रहता है जैसे मानो सही में किसी officer या CID ने ही call किया. ये लोग अलग अलग जबानों में भी बात कर सकते हैं. Assalamualaikum. मैं हूँ वेद और आप सुन रहे हैं Fraud Awareness. फेक पुलिस, फेक CBI, फेक CID, फेक कोर्ट नोटिसेस लोगों को डरा के पैसे वसूलते हैं, लोगों को डरा देते हैं, फिर बोलते हैं जल्दी से देखो तुम्हें एक OTP आएगा, अगर अपना केस यहाँ से रद्द करना है तो OTP बताओ, हम रद्द करेंगे. आपने OTP बताया और गेम खत्म हो गया. ऐसी कॉल्स कई दफा आपको ऑनलाइन एप्स में आती हैं जैसे WhatsApp एंड IMO, उनकी DP भी ऑफिशियल दिखेगी. बट याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता. पुलिस WhatsApp कॉल पे फाइन नहीं लेती. ऐसे सिचुएशन में आप काफी डर जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं और उसी का ये फायदा उठाते हैं. ऑफिशियल नोटिसेस हमेशा रिटर्न होता है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है. और अगर पेमेंट की डिमांड आ रही है तो समझ जाओ भाई ये तो स्कैम ही है. डराना स्कैमर का सबसे बड़ा वेपन है और ना डरना आपका.
1: सतर्क रहे, सावधान रहे. फ्रॉड अवेयरनेस
0: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: देखिए आज जो है जो रिव्यू ऑफ द वीक है आज का, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कभी, ये मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है आपको। बहुत सारे वो कहते हैं ना ईमेल के एंड में वार्म रिगार्ड्स, तो आज का जो एपिसोड है रिव्यू ऑफ द वीक का बड़ा ही ग्लैमरस है। ये बहुत महंगा किस्म का रिव्यू है जो आपको इंशाल्लाह सुनने मजा आएगा। एंड ऑल्सो अगर आपने इस मूवी से बिल्कुल भी आपको कोई रब्ता नहीं है, इस फ्रेंचाइज से कोई आपका रब्ता नहीं हुआ है आज तक, तो इस बार मैं आपको आई विल मेक श्योर दैट आप इसका पहला पार्ट तो जरूर देखें। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, कह नहीं सकता, गारंटी तो नहीं, पर

0: runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back.
1: अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून किया है, आज जैसे मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही महंगी पिक्चर की बात करेंगे हम। महंगी इन द सेंस कि मूवी में हर चीज आपको महंगी लगेगी। ये मूवी रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, इट्स अवेलेबल कतर में भी रिलीज हुई है, सबसे अच्छी बात तो यही है। इसका नाम है द डेविल्स वेयर प्राडा 2, नाम क्या टू लगा हुआ है तो समझ गए आपकी पहली पिक्चर कभी तो आई होगी। तो जी हाँ, सही जवाब 7 करोड़ भाई। डेविल्स वेयर प्राडा का ये सेकंड पार्ट है। ओरिजिनल मूवी को आए हुए जमाना हो गया भाई, 20 साल टू बी प्रोसाइज।

0: मेरिल स्ट्रीप, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था भाई साहब, भाई मैं लड़का हूँ लेकिन मैंने जब मूवी देखी है मैंने कहा यार अगर कोई लड़की इस मूवी को देखेगी शी विल बी ब्लोन अवे, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है ना। आई सजेस्ट ऑल द फीमेल्स आउट देयर, जितनी भी ख्वातीन सुन रही हैं, आपको तो इसका पहला पार्ट देखना ही देखना चाहिए, दूसरा पार्ट आप रिव्यू के बाद डिसाइड कर लीजिएगा। अब 20 साल बाद ये सीक्वल फाइनली आ चुका है और लोग इसे देखकर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि जब ट्रेलर आया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा अरे वो बनाया हो किसी ने, वो फैन फेवरेट ट्रेलर बनाते रहते हैं ना, तो वही किसी ने बना दिया होगा, ऐसा हो तो नहीं सकता कि डेविल्स में प्रोडक्ट 2 क्यों बनाएंगे। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कई मरतब होता है कि पिक्चर की आपको उम्मीद होती है सेकेंड पार्ट आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन आ गए भाई। ये रिव्यू जो है बहुत डिटेल्ड में होगा, मैं एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा, इसका स्टोरी, एक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, विजुअल, फैशन, म्यूजिक, थीम्स, सब कुछ ओरिजिनल से कंपेयर किया जाएगा। मेरी गलती नहीं है भाई, दूसरी पिक्चर है तो पहले से कंपेयर मैं करूंगा ही करूंगा, तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सब कुछ कवर की जाएगी, मगर पहली मूवी से सीधा सीधा कंपेरिजन होगा। मैं इसे नई मूवी की तरह लेना चाहता भी नहीं हूँ और मैं लूंगा भी थोड़ा सा, ओके। सो मीनवाइल आई कंटिन्यू एंड डिसाइड कि मुझे किस बारे में बात करनी है। आप जरा सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ जाइए, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज गेट इन टच विद अस। एंड इसी के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं 666-22107, 666-22107 पर। तो ये जब आप देखेंगे तो पहला तो बेसिक है, मैं आपको बता दूं, मूवी जो रिलीज हुई इस बार 1 मई को रिलीज हुई, 1 मई 2026 को थिएटर्स में आई डेविल्स वेयर प्राडा 2। इसके डायरेक्टर हैं डेविड फ्रैंकलिन, जो ओरिजिनल मूवी को भी डायरेक्टर डायरेक्शन कर चुके हैं। राइटर हैं एलिन ब्रॉश मिकेना, बड़ी जबरदस्त नाम इनका। इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है इसका पूरा, और ये है एक एक, एक किताब आई थी बहुत टाइम पहले, रिवेंज वेयर्स प्राडा, तो वो लॉरेन वेस्टबर्जर, मैं इनका नाम भी नहीं पढ़ पाता, मैंने लिखा हुआ है जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू। तो बुक है, किताब है रेवेंज वेयर्स प्राडा, तो उसको डेविल्स वेयर प्राडा करते हैं, उसी पे ये बेस्ड है। इसका जो लगभग रन टाइम है वो यूजुअल, आजकल तो बॉलीवुड भी 2 घंटे की बनाने लगा है, तो ये लगभग लगभग 2 घंटे का है, PG-13 रेटिंग के साथ है। सो कास्ट में वापस आ चुकी हैं द वेरी ब्यूटिफुल, एलिगेंट, फॉर एवर ब्यूटी, एवर ग्रीन मेरिल स्ट्रिप। मैं भाई बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन।
1: हेलो,
2: वेल लुक व्हाट टीजे मैक्स ड्रैग्ड इन।
1: सॉरी, हु इज दिस? डू यू नो हर? डू आई नो हर?
3: आई एम एंडी सैक्स, एंड्रिया।
2: शी वाज वन ऑफ द एमिलीज।
0: रिसेंटली मैंने बोला है कई मरतबा कई एक्टर्स, भाई बुढ़ापा हो ना अगर जिंदगी रहे तो वही ऐसे दिखे बंदा, क्या खूबसूरत लग रही है वो इस उम्र में भी, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। 20 साल का टाइमलाइन तो खा गई, वो लग ही नहीं रही कि 20 साल बीच में चला गया है। And she is beautiful and she is amazing. So Meryl Streep is back, Miranda Priestly के रोल में, एंड साथ में Anna Hathaway, कहने की बात ही नहीं, सबका क्रश रह चुके हैं वो Anna Hathaway, और साथ में Emily Blunt. So Anna Hathaway is back with her role, Andy Schatz, and Emily Blunt अपने रोल में है जिसका नाम है Emily Charlton. So ये दोनों अपने ही अपने किरदार में है, और एक Stanley है, Stanley ने प्ले किया है Tushy Nijel नाम का रोल, पता नहीं इतने खतरनाक तो नाम है इसके, जब मैं देख भी रहा था मैंने कहा भाई ये तो बहुत बोलने मुश्किल आएगी। बट कुछ नए एक्टर्स भी हैं इस मूवी में, जैसे कि जस्टिन है इसमें, सिमोन एशली है, लूसी ल्यू है, कैनेथ है, और बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी जबरदस्त स्टार्ट ले चुकी है भाई। हाइप का पैसा होता है, मानिए बात को, पहली मूवी ने क्या किया, पहली मूवी ने एक इमारत को मजबूती दे दिया, उसके ऊपर माले बनाए जाएं आप बनाए जाएं, लेकिन माले बनाने का भी तरीका होता है, ज़्यादा बनाए तो बिल्डिंग लड़खड़ा जाती है, सिर्फ बेस ही रह जाता है। लेकिन इस मूवी के साथ स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ, पहले वीकेंड में 77 मिलियन डॉलर्स अमेरिकी डॉलर की बात करो तो कमा लिया, एंड 233 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। तो लोग इसको देखने के लिए थिएटर तो जा ही रहे। दो वजहें हैं, एक है नॉस्टैल्जिया जो उन्हें हिट कर रहा है जिन्होंने 20 साल पहले की मूवी देखी है डेविल्स वेयर प्राडा, और दूसरा है फैशन। मैं दोनों की वजह से गया था एंड मेरिल स्ट्रिप की वजह से गया था। आई वॉन्टेड टू जस्ट वॉच द मूवी एंड गेट डन विद इट, बिकॉज वो रह जाता, होता ना एक फोमो जो आज के जनरेशन वाले यूज़ करते हैं, फोमो, फीलिंग ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, ऐसे कुछ है फोमो, पता नहीं ऐसे कुछ है, मतलब फोमो कहते हैं उसको, मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर देना, ठीक है। तो वो एक चक्कर है जिस वजह से लोग थिएटर की तरफ जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं, और मैंने भी मूवी देखी। अब स्पॉइलर फ्री प्लॉट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।

0: am I having a hallucination?
1: Hi, Emily.
2: You also know her?
0: We were at Runway at the same time, Miranda.
2: Really?
3: स्टोरी 20 साल के बाद सेट है, तो वो हो चुका है जो 20 साल पहले हुआ. अच्छी बात ये है कि मूवी का जो पूरी स्टोरी है, प्लॉट को 20 साल बाद सेट किया है. अब एंडी जो है, जो पहले बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, अब एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट है, लेकिन उसको ले ऑफ किया जाता है. कहते हैं चलो भैया अब आपका हो गया काम, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में डिजिटल एआई की वजह से बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, तो उसकी जॉब को खतरा हुआ, उसको ले ऑफ कर दिया गया. वो फिर से रनवे मैगजीन के पास वापस चली जाती है कि नौकरी दे दो, जहां पे वो 20 साल पहले काम करती थी, यानी डेविल्स वेयर प्राडा पार्ट वन में जहां पर थी. लेकिन इस बार फीचर्स एडिटर का रोल उसे मिलता है रनवे मैगजीन की. खुद भी हालत बड़ी खस्ता दिखाई गई है कि मैगजीन की हालत खराब हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड में वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है. प्रिंट मीडिया का जमाना एकदम खत्म हो रहा है, मूवी में दिखाया गया है कॉरपोरेट बाय आउट्स हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं और फास्ट फैशन इश्यूज हैं. कपड़े देख रहे हैं आप आजकल, क्या फैस्ट आपको लगता है कि आज मैं कुछ ट्रेंडी पहन रहा हूँ, कल को वही पुराना हो जाता है फॉरन. यू कांट कीप अ पेस विद फैशन, और उस फास्ट फैशन को बहुत अच्छे से मूवी में दर्शा गया. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ये ऐसा टॉपिक है कि मूवीज अक्सर इस पर टैप इन नहीं करती है, मगर दिस वॉज द बेस्ट मूवी टू डू दैट बिकॉज डेविल्स वेयर प्राडा इज बेस्ड ऑन इट. सो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि फास्ट फैशन पेस दुनिया को भी इसमें कवर किया. इसके अलावा मिरांडा का जो रोल है, जो मेरिल स्ट्रिप ने प्ले किया है, वो अभी भी बॉस है, लेकिन थोड़ी सी वल्नरेबल हो चुकी है. पहले क्या था, उन्हें अकड़ थी, चलती थी तो पूरी बिल्डिंग काम जाती थी, अभी वो थोड़ी वल्नरेबिलिटी उनके चेहरे पर नजर आ रही है. और एमिली जो है अब डियोर में काम कर रही है, सो फैंसी, और उसका अपना खुद का वेरी प्राइवेट बिलियनेयर बॉयफ्रेंड है, जो रिवेंज प्लॉट

का किकर, पूरी की पूरी स्टोरी में टीम वर्क, धोखा, पावर स्ट्रगल, मैगजीन को बेचने की कोशिशें, फैशन वर्ल्ड के अंदर कॉरपोरेट की ग्रीड, वो लालसा, और लेगेसी मीडिया को सेव करने का एक एंगल इसमें दिखाया गया है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फिल्म बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही स्टाइलिश है. बहुत सारे फैशन मॉन्टाजेस में नजर आ जाएंगे आपको. न्यूयॉर्क है, इटली के सीन्स हैं, अलग अलग जगहों के सीन दिखाए गए. और ओरिजिनल पसंद करते थे अगर आप, इफ यू हैव वॉच डेविल्स वेयर प्राडा, जो मैं कह रहा हूँ अगेन, अगर मुझे खवातीन सुन रही है तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, डेविल्स वेयर प्राडा जरूर जरूर देखिए. तो ओरिजिनल अगर आपने पसंद किए तो ये जो नॉस्टैल्जिया इस मूवी में हिट किया गया है वो परफेक्ट परफेक्ट है. इसमें बहुत सारे कॉल बैक्स हैं, डायलॉग्स हैं जो पहली मूवी के थे, तो मैं आई विल नॉट स्पॉइल देम, तो वो आप जरूर देखिएगा. अब जरा डिटेल में जाते हैं.

0: स्पॉइलर वार्निंग है ना, बच के रहिएगा, मैं बताने वाला बहुत सारी बातें, सो यू माइट एज वेल, अगर आपको देखनी है तो, पर अगर आपको टिके रहना है और देख के भी जाना है तो ऐसी कोई सस्पेंसफुल मूवी नहीं है, मगर मेरा काम तो डिटेल में जाना तो मैं जाऊंगा, तो सुन लीजिए प्लीज। तो मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, वरना पूरी स्टोरी स्पॉइल हो सकती है, पर स्पॉइलर्स के साथ भी मूवी आपको देखने में मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो फिल्म शुरू होती है एंडी की करंट जिंदगी से, एंडी यानी एनी हैथवे, एंड वो जो है वो एक न्यूज़पेपर में काम कर रही है, ले ऑफ हो चुका है, डिजिटल मीडिया आ गया है, एआई कंटेंट ने सब कुछ क्या कहते हैं उसको छींचा लेदर कर दिया है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफी बदलाव दिखाया गया है, एक सपोर्टिव लड़का जो उसके साथ था पीटर, जिसका रोल जस्टिन ने किया है, लेकिन वो सब प्लॉट थोड़ा सा फोर्स लगता है, ऐसा लगता है कि खामखा मतलब जरूरत नहीं थी वो सपोर्टिव बॉयफ्रेंड के रोल की, लेकिन दिखा दिया गया, वो थोड़ा सा मामला ऐसा है कि मुझे लगा रही है क्यों दिखाया। फिर मिरांडा कॉल करती है, मिरांडा कहती है एंडी को, कैंडी रनवे में फीचर्स एडिटर का रोल है, करोगी क्या, आओगी क्या डिजाइनेशन पे, और रोल के लिए भुला लेती है। अब क्योंकि मैगजीन को बचाना है, जरूरत है, रनवे पे लेऑफ्स हो रहे हैं, तो अभी जरूरत है कि कॉर्पोरेट टेकओवर के खतरे से बचा जाए। एमिली जो है ऑन द अदर हैंड, व्हिच इज प्लेड बाय एमिली ब्लंट, एमिली ने अब नौकरी करना शुरू कर दी है डियोर में, हाई पोजिशन पे, लेकिन उसका जो बिलियनियर पार्टनर है वो रिवेंज लेना चाहता है मिरांडा से, वो चाहता है कि मिरांडा को बर्बाद कर दे यानी मेरिल स्ट्रिप को, क्योंकि पहले उसने उसको इंसल्ट की थी, बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी उसकी। तो जो एमिली है विच इज प्लेड बाय एमिली ब्लंट, अब वो डियोर में काम करती है और काफी हायर पोजीशन में काम करती है, उसका एक बिलियनियर बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है बेंजी, और वो जो है वो बदला लेना चाहता है, बेसिकली रिवेंज भी इसमें डाल दिया गया है और वो मिरांडा से बदला लेना चाहता है, मतलब मेरिल स्ट्रिप क्या कोई बोल सकता है क्या, लेकिन ये बंदा चाहता है उन्हें बर्बाद करना। उसे याद आता है कि मैरिलिन ने यानी मिरांडा ने कई एक जमाने में उसकी बेइज्जती करी थी, और बेंजी चाहता है कि वो रनवे को बाय करे, और यही प्लानिंग वो करता है ताकि मिरांडा को निकाल दे, और प्लानिंग करता है कि किसी तरीके से मिरांडा को निकाल दे। आई नो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा ही सॉफ्ट बॉल फेंक दिया है, बिल्कुल एक क्या कहते हैं वो डेली सोप्स वाली कहानी है, लेकिन वो प्लॉट जो है वो बड़ा जबरदस्त है, एंडी और मिरांडा मिलकर ये सब हैंडल करती है, नाइजल और एमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, और स्टोरी में एक ऑल्टरनेट बायर उन्हें मिलता है जो गुड बिलियनियर टाइप है, जो मैगजीन को सेव करना चाहता है, उसकी लेगेसी को संभालना चाहता है, बड़ा फिक्रमंद दिखाया है उसको, और मिलान फैशन वीक के सीन्स हैं जहां भाई साहब एक आम आदमी की नज़र पड़ती नहीं है मिलान फैशन वीक पे, क्योंकि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, बट मूवी ने उसे इतना अच्छे से दर्शाया, बिकॉज आई वेंट बैक एंड चेक के दिखता कैसा है भाई ये फैशन वीक, एंड जैसा दिखता है वैसा ही मूवी पे पर्दे को उतारा गया है, जो कि बहुत ग्लैमरस है।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं, पर डोंट वरी मैं हूं ना, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग। अब एंड में सब कुछ रिजॉल्व होता है कि नहीं, इमोशनल मोमेंट्स कैसे आते हैं, ये मैं मूवी पे छोड़ता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। मिरांडा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, पहले जब वो गुस्सैल रहती थी, बिल्कुल नाक पे रहता था उनका गुस्सा, तो वो चीज़ें हटा दी गई हैं। एंडी जो है ऑन द अदर हैंड शी इज़ मच मोर मेच्योर, और दोस्ती और टीम वर्क जो मैसेज है वो ये मूवी बखूबी देती है। पूरी फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, एक नहीं है, सो आई विल नॉट स्पॉइल देम, बहुत सारे ट्विस्ट हैं इसमें, एक्सपोजे है, पावर डायनेमिक्स चेंज कैसे होता है, डिजिटल दुनिया और ट्रेडिशनल फैशन जर्नलिज्म किस चिड़िया का नाम है। अब जरा एक्टिंग की बात कर लें, क्योंकि प्लॉट तो बहुत लंबा मैंने आपको बता दिया, देखो स्पॉइलर वार्निंग देके भी मैंने स्पॉइल नहीं किया है, सो यू कैन स्टिल गो एंड वॉच इट। मीनवाइल सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, यहाँ पे आपको जरूर जाना है। अभी फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि है इस मूवी की एक्टिंग। मेरिल स्ट्रिप एस मिरांडा प्रेस्ली, वाह, शेफ्स किस, मतलब कमाल कर दिया यार, कमाल, शी इज सो नेचुरल ऑन स्क्रीन। कुछ कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं और पूरी स्क्रीन को खा जाते हैं, फिर उनके इर्द गिर्द कोई बड़ा एक्टर भी हो नजर नहीं आता, एंड मेरिल स्ट्रिप के साथ यही सीन है। लाइक एन है तो जब भी स्क्रीन पे आती है तो ऑफकोर्स एक ग्लैमर आता है, मगर जब मेरिल स्ट्रिप स्क्रीन पर है फिर भाई किसी की मजाल नहीं है। क्या परफॉर्मेंस थी, वो अब भी काफी आईसी एंड पावरफुल दिखाई गई है, लेकिन इस बार थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी उनके चेहरे पे है, और वो जो आनी चाहिए कि भाई बिलियनर भी है, पैसे वाली भी है, लेकिन थोड़ी सी वल्नरेबल भी है, वो थोड़ी सी बेचैन है, परेशान है, वो भी चेहरे पे बहुत परफेक्टली दिखाया गया है। जैसे कि मैगजीन को बेचने के लिए उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनके डायलॉग्स एकदम शार्प है, डरी भी है वो, घबराई भी है, लेकिन अपना ऑरा खत्म नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना आज की तारीख में ऑरा फार्मिंग, तो वो बरकरार है, मजबूर है, लेकिन सार्केज्म पूरा है भाई, और स्क्रीन पे वो कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एन हैथवे एज एंडी, सॉलिड जॉब किया भाई इन्होंने भी। इनको तो मतलब ऐसा है ना कि मुझे तो पता है पिक्चर में क्या करना है, 20 साल पहले किया तो था, तो अब वो मच्योर और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, और अपनी ओल्ड चार्म जो है वो उन्होंने बरकरार रखी जो 20 साल पहले की थी। उनके इमोशनल सीन्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली जब वो ले ऑफ डील करती हैं, उनकी कंपनी उन्हें निकाल देती है और फिर वो रनवे ज्वाइन करती हैं। जो बीच का जो हार और जीत का जो बीच का वक्फा है वो बड़ा कमाल का है जो उन्होंने कवर किया है। एमिली ब्लंट एज एमिली चार्ल्टन, मज़ेदार है। उनका पहला जो कैरेक्टर था 20 साल पहले वो भी बड़ा चटपटा सा था, और इस बार भी काफी सेसी और फनी, थोड़ी इन्वॉल्व नजर आ रही है। पिछली मूवी मेरी शिकायत सिर्फ ये थी कि मूवी एक नंबर है, लेकिन एमिली ब्लंट को थोड़ा सा और इन्वॉल्व करना चाहिए था, और इस बार मूवी ने किया है। जो रिवेंज का सब प्लॉट है वो भी काफी एनर्जेटिक है। स्टैनली जो है एज नाइजल परफेक्ट हैं, काफी काम है, काफी इंटेलिजेंट है, फैशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जैसे नजर आएंगे आपको, देखते लगता ना कि ये बंदा जो है ये फैशन के बारे में जानता होगा। सो ही प्लेड दैट कैरेक्टर रियली वेल। जो न्यू कास्ट में है जस्टिन एज बेंजी, एंड कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा बोरिंग फोर्स लगते हैं, आई वुड से इतना भी ज्यादा नहीं, पर हाँ केमिस्ट्री उनकी बनी नहीं है एंडी के साथ, मतलब एना हैथवे के साथ उनकी केमिस्ट्री इज नॉट दैट गुड, लग ही नहीं रहे, वो थोड़े से ऐसा लगता है ऑफ टॉपिक बात हो रही है, वैसा वाला सीन है। और सिमोन एशली और लूसी जो हैं सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे काफ़ी नज़र आते हैं, और कैनेथ मिरांडा के जो हस्बैंड बने हैं इज़ फाइन, ही इज़ ओके। ओवरऑल जो ऑनसॉम्बल कास्ट है उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, ओरिजिनल वाली फील आएगी, पर कहीं ना कहीं लगेगा अरे थोड़ा सा इनको बाहर निकाल दो, इन्हें बाहर निकाल दो स्क्रीन पे, इन तीनों को रहने दो, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर कॉन्स्टेंट थिंग फॉर द स्क्रीन। ये कॉन्स्टेंट कमेंट्री आपको चलती रहेगी आपके दिमाग में। अच्छा, अब जरा डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। स्टोरी तो है ही, बट हाउ डू यू ड्राइव समथिंग जो फैशन से जुड़ी हुई है, उसको कितना ही खींच लोगे, मगर खींचा नहीं है भाई साहब, बिरयानी बनाई है लज्जतदार। डेविड फ्रैंकल जो कि इसके डायरेक्टर हैं, ओरिजिनल उन्होंने जो मूवी बनाई थी ये वही है, तो बिल्कुल वैसा ही ग्लॉसी फास्ट पेस्ड फील देती है मूवी। ऐसा लगा खट खट खट, दो घंटे कम निकल के पता नहीं लगा, दो घंटे की तो है भी नहीं, उससे भी थोड़ी सी कम की। लेकिन कुछ कुछ क्रिटिक्स जो कह रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा कि स्क्रीन प्ले थोड़ा सा रिपीटेटिव है, बहुत कॉल बैक्स हैं ओरिजिनल मूवी के जो कभी कभी फोर्स लगते हैं। होता है ना कि कई मरतबा मूवीज बनाई जाती हैं, सीक्वल्स होती हैं, और वो पिछली मूवी क्योंकि हिट हुई थी तो उसके डायलॉग्स उसके रेफरेंसेस बहुत दे देते हैं, उस वजह से मामला ख़राब हो जाता है। आई विल गिव एन एग्जांपल, बॉलीवुड में क्या होने लगा है, बॉलीवुड जब मूवीज बना रहा है उसमें वो एक गलती बार बार करे जा रहा है, बॉलीवुड मीम्स को यूज़ कर रहा है, और वो मीम्स के कॉल बैक को मूवी के अंदर डाल रहा है, जो उसको लग रहा है कि बहुत फनी है पर है नहीं। इसे निपटाने में भी काफी अच्छा काम किया है, जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक दिया गया, एंड आई एब्सोल्युटली अडोर्ड द म्यूजिक दैट दे यूज्ड इन द मूवी, बहुत बहुत ब्रिलियंट। बैकग्राउंड स्कोर जैसे मैंने कहा, उसके अलावा साउंड डिजाइन क्लियरली सुनाई दे रहा है, अमूमन आजकल मूवीज में फुसफुसाने का काम बहुत होता है तो वो नहीं है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा थीम्स और मैसेजेस को अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो फिल्म बहुत टाइमली है। आई एक्सप्लेन में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये प्रिंट मीडिया के डिक्लाइन को शो कर रही है, तो अगर आप प्रिंट मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े तो आप रिलेट करके बुरा भी फील कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और जर्नलिज्म को एआई और कॉर्पोरेट से बचाने की जो कोशिश है, आई थिंक दिस विल मेक यू दैट फील। हालांकि थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, पर इट इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट, तो आपका काम चल जाएगा। इसमें कॉर्पोरेट ग्रीड जो आजकल कंपनीज करती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ गेमिंग की दुनिया में भी ऐसा ही है कि वो पैसे बनाने के चक्कर में कुछ भी बना रहे हैं, उनको प्लेयर्स की नहीं पड़ी है। वैसे ही कई मरतबा होता है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज एक दूसरे को खरीद रही होती हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले की मार्केट क्या है, तो उससे क्या होता है क्रिएटिव फ्रीडम मर जाती है। आप कुछ करना चाहते हैं मगर उसके लिए कंपनी तैयार नहीं, क्योंकि उसका बजट जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो उसको एक परचूनी की दुकान बना देना चाहती है। तो वो जो ग्रीड है, कॉर्पोरेट ग्रीड, वो दिखाया गया है, और अच्छी अच्छी लेगेसी जो ख़त्म हो जाती हैं वो समझाई गई है। वुमेन एम्पावरमेंट अगेन, जैसे मैंने कहा कि ख़वातीन ज़रूर देखने जाएं, जो मिरांडा मेरिल स्ट्रिप और एन हैथवे की जो एक्टिंग है दोनों की जोड़ी है, इट्स ब्रिलियंट, काफ़ी इंस्पायरिंग है। वो जो दोस्ती है, वो जो टीम वर्क है. लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि ये थीम्स थोड़े से सरफेस लेवल पे हैं, प्रोपोस्टरस लगते हैं, गुड बिलियनर सेवियर, फेमिनिज्म, ये सब कुछ आपको मिलेगा. लेकिन इनकी बातों मत जाइएगा, ये सब कुछ है. आई एम नॉट डिनाइंग फेमिनिज्म भी है इसमें, सरफेस लेवल पे कहानी भी है, गुड बिलियनर सेवियर वाली कहानी भी है, मगर फिर भी यार वो जो पावर डायनेमिक्स है काफी अच्छा है.
2: I am the new features editor at Runway.
3: No, you are not.
2: Yeah, we are all so thrilled.
3: You know what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you?
0: एक चीज की कमी है, एक चीज, बट लगाना भूल गया. बट इसमें जो वो सटायर है ना, जिसे हम हिंदी में कटाक्ष कहते हैं, वो कम है. ज्ञान ज्यादा होगी. तो ओरिजिनल से कंपैरिजन अगर मैं करूं तो ओरिजिनल 2006 की फिल्म थी, बहुत शार्प थी, बहुत फनी थी. किसी ने सोचा भी नहीं था कि मूवी ये मार्केट में

एज तो नहीं, जैसे ओरिजिनल मूवी में एक एज था, मिरांडा अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, स्टोरी ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है, खुद को मीडिया इश्यूज पे ज्यादा फोकस कर दिया राधा दंद कैरेक्टर्स इटसेल्फ। कैरेक्टर उन्होंने सोच लिया होगा डायरेक्टर साहब ने कि कैरेक्टर तो सबको पता ही है, क्यों ना मैं कहानी में कुछ कर दूं, तो वैसे कुछ किया उन्होंने। सो फैशन सेम लेवल का है लेकिन विट थोड़ी कम है, समझ रहे हैं? वो जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमर होता है वो नहीं है, तो उसके बिना चल जाएगा वैसे आपको, बट यू विल मिस इट इफ यू हैव सीन द फर्स्ट पार्ट। फिर भी इंजॉयबल है, फिर भी फैंस को मजा आएगा, फिर भी कंपेयर करके भी वो खुश रहेंगे। तो उसकी जो खासियत है, जो स्ट्रेंथ है, वो बता दूं आपको, एक नंबर स्टार केमिस्ट्री है इसके अंदर, जो ओरिजिनल कास्ट है, एमिली ब्लंट एंड हैरिसन मिरर स्ट्रिप।

0: स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस का जो जो प्रूफ है वो ये मूवी देती है. एक हिट करा दो आप, दूसरी अपने आप चल जाएगी. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये. इमोशनल मोमेंट्स हैं इसमें, पर जैसे मैंने कहा कि जो उसकी खामियां हैं उसमें जबरदस्ती का रोमांटिक एंगल कोई जरूरत नहीं थी सब प्लॉट की. पहली मूवी में जो था वो अच्छा था, वो समझ में आया. इस मूवी में चल जाता, मगर वो काफी प्रीची डायलॉग्स हैं. क्या मैं ये ना करूं, क्या मैं वो ना करूं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया. प्लॉट होल्स उसके वही हैं और ओरिजिनल से थोड़ी सी कम शार्पनेस है. होता ना कि दाढ़ी तो अच्छी लग रही लेकिन दाढ़ी ढंग से बनवाई नहीं, इफ दैट मेक सेंस. तो वैसा वाला सीन है. टेक्निकली मूवी बहुत अच्छी, एडिटिंग बहुत टाइट है, रन टाइम परफेक्ट है. 2 घंटे से ज्यादा की उम्मीद कर रहा था मैं, लेकिन शुक्र है उससे नीचे. साउंड और VFX मिनिमल है एंड यही सबसे अच्छी बात है. बहुत बढ़िया किया. फैशन सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको मूवी की, फैशन जितना भी दिखाया गया वो CGI नहीं है भाई, ये असलियत में किया गया है. इसीलिए ये मूवी थिएटर लायक है, बड़ी स्क्रीन पे देखने लायक है, क्योंकि CGI इन्होंने नहीं किया यूज फैशन में. एंड थैंक यू टू द डायरेक्टर डेविड भाई साहब, कती घना कसूती बनाई है आपने पिक्चर, घनी कसूती है. देखो एंड में आपको वर्डिक्ट की तलाश रहती कि मैं क्या करूँ, ये देखूँ या ना देखूँ, मैंने पहले देखी थी. तो मेरा पहला सजेशन ये सभी को, तमाम ख्वातीन को भी, पहली मूवी जरूर देखें, डेविल्स वेयर प्राडा 2006 में आई थी. प्लीज़ गो एंड वॉच. मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि वो जिस टॉपिक पे है मूवी, इट इज़ ब्रिलियंट है. वो उस टाइम की टाइमलेस मूवी. उसके बाद आप इधर आइएगा, फिर आप एक ओरिजिनल फैन बन के मूवी देखेंगे जिसमें फैशन है, ड्रामा है, हल्की कॉमेडी है एंड बड़ी शार्प कॉमेडी है. तो रेटिंग मैं इसको क्या दूँ, लेट मी डिसाइड. 8 दे देते हैं, है ना, 8 दे देते हैं. 10 में से 2 नंबर में काटता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगी कि कमी है तो है भाई, आई एम सो सॉरी. ये मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है और उसके बाद मुझे थोड़े से 2 नंबर काटने पड़े हैं, मुझे खुद को बुरा लग रहा है. तो अगर आप मेरी रेटिंग्स बजाना चाहें तो बहुत बढ़िया है. क्रिटिक्स रेटिंग में जाएंगे तो रॉटन टोमेटोज पे 78% है, ऑडियंस ने इसे 87-88% दिया, जो कि काफ़ी हाई स्कोर है. अगेन मेरी तरह ही 2-3% का समझ लीजिए, जैसे गैप मैंने बताया वैसे इन्होंने दिखा दिया है. परफेक्ट नहीं है लेकिन फन है, रीवॉचेबल है, जो आज के लिए पिक्चर नहीं होती. तो अगर आप सीरियस सिनेमा चाहते हैं तो इतना सीरियस सिनेमा नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट कंप्लीट है. अपने ग्रुप के साथ जाइएगा. ये मूवी कैसी है, यहाँ पे कपल्स ना जाएं. सजेशन ये दूंगा, यहाँ पे क्या है कि जो ख्वातीन अपनी सहेलियों के साथ जाएं और मर्द हजरात इसको TV पर आने के बाद देख लें. आपके लिए ये इतनी नहीं है, अगर आपका फैशन सेंस है तो जाएं, मगर ख्वातीन अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ ये मूवी जरूर जरूर बैठ के देखें. आप अभी देखें, बाद में देखें, बट डू वॉच इट, बिकॉज ये मूवी आपको एक एक अलग जोन में ले जाएगी, विच यू विल एब्सोल्युटली लव. बिकॉज मुझे इसमें जो खामियां लगी वो हो सकता है कि मेरे लिए ही खामियां हो, क्योंकि मैंने पहली मूवी से कुछ ज़्यादा ही चाहत दिखा ली थी. तो कुछ जो थीम्स ये मूवी बात कर रही है बहुत ही सिंपल है एंड मुझे बड़ी अच्छी लगी. बेसिकली जो उसकी एक इनर लेयर है वो कहती है कि पहली मूवी सर्वाइवल थी भाई, लड़ रहे थे कमाने के लिए, जीने के लिए, फेमस होने के लिए, और दूसरी मूवी है कंट्रोल और आइडेंटिटी के लिए. मतलब अब आपके पास पैसा आ गया, अब स्ट्रगल आगे का, अब कैसे बचोगे बाबू. ये मूवी वैसी है. इसमें कई सारी जो थीम्स है उसमें से पावर और पैशन की लड़ाई है, जो हर इंडस्ट्री में होती है. आपके पास पावर है लेकिन सामने वाले के पास पैशन है, क्या आप उसके मुंह पे पैसा दे सकते हैं उसे जितना वो मांग रहा है, ताकि आपकी पावर बरकरार रहे और उसका पैशन. वेल कॉम्प्लिकेटेड राइट, लेकिन ये उसी चीज के बारे में बात करते हैं कि सक्सेस जो है, जो कामयाबी हो बिना पर्सनल लाइफ के अधूरी है. ये मूवी यही कह रही है बार बार. ठीक है, यू कैन क्राई इन अ BMW बट यू स्टिल नीड समबडी लाइक वेरी क्लोज वन टू यू, जिसके साथ आप खर्चा कर सकें, वरना कोई फायदा नहीं है पैसे का. हाँ, आपको पैसा उन चीज़ों से हटा देगा जहाँ पे आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, मगर खर्च करने के लिए तो पर्सनल लाइफ चाहिए भाई, वरना मज़ा ही नहीं है. ओल्ड और न्यू का जो कोई कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा, जितना करना था मैंने कर दिया, डिसाइड आप कर लीजिए. और एक जो आखिरी सवाल है इस मूवी का, जो सबसे पूछ रहा है ऑन द फेस, वो यही है भाई, कौन डिसाइड करेगा कि फैशन क्या है. मेरे लिए फैशन अलग है, किसी और के लिए फैशन कुछ और है, और तीसरे के लिए फैशन कुछ और हो सकता है. तो मूवी से जब बाहर निकलेंगे तो ये सवाल पूछिएगा कि आपके लिए फैशन क्या है, व्हाट डू यू कंसिडर टू बी फैशनेबल, है ना. हम लोग देखते हैं कि किसी ने अतरंगी कपड़े पहन लिए तो क्या फैशन है, ये क्या फैशन है, दोनों तरीके के रिएक्शन होते हैं. बट क्या वही फैशन है या फैशन की कोई और भी परिभाषा, कोई डेफिनेशन है. तो काफ़ी कोल्ड एंड कैलकुलेटेड और पावरफुल मूवी बन सकती है अगर आप इन चीज़ों को तराशें देखें, बिकॉज लग्जरी ऑन द अदर हैंड डज नॉट इक्वेट टू फैशन. मूवी भी आप सही कह रही है कि भाई जहाँ लग्जरी, इसका मतलब ये नहीं कि यही फैशन है, ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए माशाल्लाह हमारे पठान भाई कुर्ते में कितने बढ़िया लगते हैं। अब हर कोई दूसरा थोड़ी कुर्ते में बढ़िया लग जाता है, ठीक है कुर्ता पहन लेते हैं लोग ईद पे, मगर ये बात भी तो सच है कि हर किसी पे कुर्ता नहीं अच्छा लगता, जिस तरह से हर किसी पे टी शर्ट अच्छी नहीं लगती या हर किसी पे लेदर जैकेट अच्छी नहीं लगती। इट्स जस्ट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फैशन को इसलिए एक डेफिनेशन में बांधना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए फैशन इंडस्ट्री के बारे में जो नॉलेज है इस मूवी में दी गई है, मैं उसके लिए इन्हें पूरे 10 के 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इन इन टॉपिक्स को कोई टैप इन नहीं करता है। हम अक्सर देखते हैं जब फैशन के बारे में बात होती है तो हम उन ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं जो हमने जिए। एक जमाने में बेल बॉटम पहनते थे भाई, तेरे भाई के पास थे, फिर वो चौड़े कॉलर आए थे, फिर बड़ी बड़ी आस्तीनों वाली शर्ट्स आई थी, है ना। दीज वर ट्रेंड्स, ये फैशन का अभी भी हिस्सा है। आप अभी भी पहन के निकलिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आप पे अच्छा लगेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फैशन वो नहीं है जो आपको हमेशा दिखाया जाता है कि भाई रनवे पे चलने वाले ही फैशनेबल हैं, ऐसा नहीं है। एक आम आदमी का फैशन अलग हो सकता है, उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। इट डज नॉट मीन कि आपने बोला कि तुम्हारा फैशन सेंस नहीं है तो वो फैशन सेंस कैसे सुनो, लेट मी रिफ्रेज दिस। कोई आपको बोलता है कि आपका फैशन सेंस नहीं है, हो सकता है कि उसे आपका फैशन नहीं पता है ना। अब जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, बाकियों की बात क्यों करूँ। मैं सूट बूट पहन के नहीं निकल सकता, मुझ पर नहीं सूट करता है, आई नो दैट। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसे कैरी करने का, तो आई विल नॉट डू दैट। अब मैं ये कह दूं कि कोई और सूट वूट पहने हुए तो उसका फैशन सेंस नहीं है, तो गलत है ना, बिकॉज वो मुझ पर नहीं जच रहा है बट सामने वाले पे जच रहा है, तो वो उसका फैशन सेंस है। बट अगर मैं एक लॉकेट डाल लूंगा और बैंडाना कैरी करूंगा तो हो सकता है मुझ पर ज्यादा अच्छा लगे, और हो सकता है ये मेरा लुक किसी और पे अच्छा ना लगे, तो मेरा उसका फैशन अलग है। तो एक डेफिनेटिव परिभाषा फैशन की नहीं है एंड ये मूवी बात करती है। सो डेविल्स वेयर प्राडा इज जस्ट अमेजिंग, राइट टाइम पे आइए। 1 मई को रिलीज हो चुकी है, अभी भी थिएटर्स में है, आप थिएटर्स में देखना चाहें थिएटर्स में देखिए, या फिर आप बाहर जाके देखना चाहें तो बाहर देख सकते हैं। मूवी के अंदर जितने जितने प्लॉट्स इसमें लिए गए हैं उनमें से, जैसे मैंने कहा, मेरी शिकायत सिर्फ एक ही प्लॉट की है और वो सब प्लॉट से है जहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती के रोमांस को दिखाने की कोशिश करी है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मूवी जा ही रही है एक कहानी की तरफ तो किसी चौथे पांचवे की जरूरत थी नहीं। पर वह है कि इनको क्या कहते हैं, कहानी के ऊपर सवार होके जाना था, पहली मूवी को एक ओट देनी थी, तो उस चक्कर में इन्होंने ये किया है, विच आई अंडरस्टैंड। पर आई एम जस्ट एन मूवी नर्ड, मुझे मूवीज के बारे में बात करना बहुत पसंद है, तो शायद हो सकता है मेरी ही प्रॉब्लम है, पर आप इस मूवी को जरूर थिएटर में देखें। एंड इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट ये कि 666-22-107 ये जो व्हाट्सएप का नंबर है इस पर भी ज़रूर बताइएगा, एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 खतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज़ हमसे जुड़ें एंड लेट अस नो कि व्हाट डू यू फील अबाउट द मूवी एंड क्या आप चाहते हैं कि सीरीज़ के भी रिव्यू किए जाएँ। जो सीरीज़ आ चुकी हैं हो सकता है आपको ना पता हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उन सीरीज़ का भी रिव्यू किया जाए जो शायद लोगों ने देखी नहीं है और वो ज़माने से OTT प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा। एंड मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बताइएगा, बिकॉज मेरे लिए क्लियर थॉट हो जाएगा। सो व्हाट्सएप 666-22-107 है, ये आप मुझे सुबह के शो में बता दीजिएगा, संडे को मैं पढ़ लूँगा इंशाल्लाह ताला, या सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, यहाँ पे आप मुझे भी ढूंढ लीजिएगा एंड वहाँ पे भी हम रब्ता कायम कर सकते हैं। बट फॉर नाउ रिव्यू ऑफ द वीक, डेविल्स वेयर प्राडा 2, डेविल्स वेयर प्राडा 2, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ, हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए। जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं।

0: वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अब। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
1: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवेंस और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराह करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें, राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रियर लाइटिंग का काम करना, रियर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 meters हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 meters है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 meters हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवेंस या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवेंस का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवेंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है, ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो, जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं, तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 9 AM. News at 9 AM from Urdu Radio FM 107.
4: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला मुफसल नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने कनाडा की नई गवर्नर जनरल को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद का तहनियती पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कल वाशिंगटन में अमरीका के नायब सदर से मुलाकात की है। रियासत कतर ने बरादर मुल्क मुतहदा अरब इमारात पर ईरान की जानिब से किए गए हमलों की शदीद मुज़म्मत की है। और अमरीकी सदर ने कल रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया है, जो आज 9 मई बरोज हफ्ते से नाफिजुल अमल होगी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समाप्त कीजिए मुफस्सल नशरिया।

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कैनाडा की नई गवर्नर जनरल लुइस आर्पर को उनकी तकर्री पर मुबारकबाद का तहनियती पैगाम इरसाल किया है। साहिब सुमू अमीर ने अपने पैगाम में लुइस आर्पर के लिए नई जिम्मेदारियों की अंजामदही में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि रियासत कतर और कैनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मजीद तरक्की और खुशहाली की उम्मीद भी जाहिर की। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी लुइस आर्पर को कैनेडा की नई गवर्नर जनरल मुकर्रर होने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कल वाशिंगटन में अमरीका के नायब सदर जे डी वैनिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रियासत कतर और अमरीका के दरमियान करीबी स्ट्रेटजिक तआवुन और मुख्तलिफ शोबों में उसे मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी कम करने के लिए जारी सालसी कोशिशों पर भी गुफ्तगू की, जिनका मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीक जारी सालसी कोशिशों में संजीदगी से शामिल हों ताकि पूरा मंजराए और मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान की बुनियादी वजूहात का हल निकाला जा सके और एक ऐसे जामे मुआहदे तक पहुँचा जा सके जो खित्ते में देर पामन के क्याम का बाइस बने। रियासत कतर की अक़वामे मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब शेख अली अहमद बिन सैफ अल सानी ने कल न्यूयॉर्क में कायम मुस्तकिल मिशन के हेडक्वार्टर में अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी उमूर और हंगामी इमदाद के राबता कार के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से रियासत कतर और अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राबता इंसानी उमूर के दरमियान अहम शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की शुरा काउंसिल ने मॉन्टीनेग्रो के शहर बुधवा में मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी असम्बली बराए बहराए रूम PAM के 20वें जनरल इजलास में शिरकत की। कतरी वफ्द की क्यादत अब्दुल्ला बिन नासिर बिन तुर्किया सोबई ने की, जबकि वफ्द में शुरा काउंसिल के अराकीन और सेक्रेटरी जनरल्स भी शामिल थे। इजलास में खित्ते और आलमी सतह के अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई, जिनमें हिजरत, मुसल्ला तनाजात में बच्चों की सूरत हाल और माहौलियाती पायदारी शामिल थे। कतर ने हिजरत के मसले को इंसानी और तरक्याती चैलेंज करार देते हुए कहा कि इसके हल के लिए बैनुल अक्वामी तआवुन, इंसानी वकार का एहतराम, गैर कानूनी हिजरत की वजूहात के खात्मे, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात और तालीम और सेहत जैसे शोबों में मदद ज़रूरी है। बच्चों से मुतालिक तनाजात पर कतर ने जंग से मुतासरा बच्चों के तहफ़ बहाली, खानदानों से दोबारा मिलाप और तालीम और तरक्की के लिए आलमी कोशिशों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस हवाले से कतर के मुख्तलिफ इदारों जैसे एजुकेशन अबव ऑल और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट के किरदार का भी जिक्र किया गया। माहौलियाती मौजू पर कतर ने साफ तवानाई, पायदार तरक्की, कम इखराज टेक्नोलॉजी और आबी तहफ़ जैसे इकदाम को अपनी कौमी हिकमत अमली कतर नेशनल विजन 2030 का हिस्सा करार दिया और तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती माली मदद और टेक्नोलॉजी मुंतकली की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी इजलास के मौके पर पार्लिमानी स्पीकर्स के पहले सरबराही इजलास में भी शिरकत की गई, जहां पार्लिमानी सफारतकारी, बैनुल अक्वामी मुकालमे और जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म के मशीर और वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र बैनुल अक्वामी तआवुन और सफारती रवाबित मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इटली के शहर मेलान में मुनक्किद इजलास, जिसका उन्वान था इस्तेहकाम के लिए पुलसाजी, तकसीम के दौर में यूरोपीय यूनियन और खलीजी तआवुन कौंसिल का तआवुन, इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी तनाजात और जोग्राफियाई सियासी बहरान आलमी निज़ाम और फैसला साजी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाज़ आलमी ताकतें अपने मुफादात के लिए ऐसे सियासी बयानी और तरीके अपनाती हैं जो मजीद पेचीदगी और अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर अल अंसारी ने वाज़े किया कि फ़ौजी और सियासी दबाव मुस्तकिल हल नहीं होता, बल्कि तनाजात के हल के लिए सफारतकारी और सालसी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उनके मुताबिक सफारतकारी की अहमियत पर सवाल उठाना दरअसल उसकी ज़रूरत बढ़ने की अलामत है। उन्होंने मुमालिक को खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुकालमे और तआवुन को तरजीह दी जाए, क्योंकि हालिया आलमी बहरानों ने यूरोप, अमरीका और मशरक़ वस्ती के ताल्लुकात, तवानाई के तहफ़ुज़, मईशत और सप्लाई चेन्स को भी मुतासर किया है।
اختتام پر انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں سلامتی اور استحکام کسی ایک ملک کے بس میں نہیں بلکہ اس کے لیے اجتماعی عالمی تعاون اور مشترکہ ویژن ناگزیر ہو چکا ہے۔ ریاست قطر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرون استعمال کیے گئے، جبکہ ان حملوں کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ قطر نے ان حملوں کو متحدہ عرب امارات کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ کل وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قطر متحدہ

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Welcome to Pitch Perfect Show.
1: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम.
2: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे.
1: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
2: ऑन पिच परफेक्ट,
1: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट.
2: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
1: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: आप सुन रहे हैं कतर 2026.

हूँ आपकी अमिता और आप सभी का कतर 2026 के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में बहुत बहुत इस्तकबाल है. वैसे आप देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं द एवोल्यूशन ऑफ अ नेशन है कि नहीं, ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं. वेल कतर 2026 में अब हम डीप डाइविंग करने वाले हैं कि भाई ये जो अब कतर का दिल धड़क रहा है ये किस फील के साथ धड़क रहा है. हाँ, वैसे ये तो हम जानते ही है कि हमारा जो कतर है वो आज के जमाने में एक ग्लोबल स्टेज बन चुका है. फिर चाहे हाई फैशन आइल्स ऑफ अल हाजम की बात करें या फिर स्पिरिचुअल एकोज एट द म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, हम कवर करेंगे हर वो चीज जो इस पेनिनसुला को स्पेशल बनाती है. बट बिफोर वी स्टार्ट द डिटेल्स, भाई एक लंबी गहरी सांस ले लो क्योंकि हमको हर एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करना है. एक ऐसा देश जो कभी पर्ल डाइवर्स और बेडुइन पोएट्स की कहानियां यूं ही सुनाता था, उसी में बसता था, आज वो कतर कल्चर और मॉडर्निटी का ग्लोबल हब बन चुका है. तो स्टे विद मी क्योंकि आज का सफर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और हमारे कतर में क्या क्या खास होने वाला है इसके बारे में आपसे बातें होंगी. चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ी एलिगेंस और क्लास के साथ. राइट नाउ As you're driving through the city, शायद आप हमारे वेस्ट बे की स्काईलाइन देख रहे हो, लुसेल की तरफ चले गए हो, या फिर वक्रा से आ रहे हो, या पर्ल साइड जा रहे हो. But let's transport our minds to Al Markia. और क्यों? चलिए बताते हैं. हम बात कर रहे हैं Al Hazm Mall की. ये एक ऐसा मॉल है जिसे सिर्फ मॉल ही कंसिडर नहीं किया जा सकता. It's an architectural love letter to Italy. हाँ, और ये हमारे दोहा के दिल में बना हुआ है. इमेजिन कीजिए आप वहां एंटर करते हैं एंड सडनली जो टेम्परेचर है वो एकदम जुप करके ड्रॉप होता है. जो ट्रैफिक का नॉइज है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और आपके आस पास एक मैसिव हैंडक्राफ्ट टस्कन मार्बल पिलर्स होते हैं, है कि नहीं. अल हाजम का मतलब होता है द हाई ग्राउंड और वहां की वाइब सच में बहुत हाई क्लास है. अगर आपने नोटिस किया हो वहां जो ऑलिव ट्रीज है They are hundreds of years old. आपको यकीन होगा इस बात का? नहीं है तो मान लो. ये और ये सारे के सारे जो पेड़ हैं, इन्हें लाया गया है right from the way Italy से and Spain से. वहाँ की walkways पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी branded fashion week में पहुँचे हैं या फिर किसी brand बहुत ही बड़े fashion brand के galleria में यूं ही घूम रहे हैं. और इसी मैजेस्टिक सेटिंग में राइट नाउ एक मैजिक अनफोल्ड होने वाला है.

And what is that? It's an 8th edition of the Zenith exhibition. तो बात करते हैं जीनत की. जीनत का मतलब होता है adornment और beauty. And believe me, ये exhibition अपने नाम के साथ पूरा justice करता है. This isn't your typical shopping trip. ये एक lifestyle gallery है. जब आप exhibition hall में enter करोगे, तो पहली चीज जो आपको एकदम हिट करेगी, that will be a sheer variety of abayas. हम अक्सर सोचते हैं ना, abaya is just a traditional garment. नहीं नहीं, but Zenith में you see ऐसे जैसे कि कैनवस होते हैं ना आर्ट के, बिल्कुल उस तरह से आपका नजरिया बदल जाएगा. लोकल कतरी डिजाइनर्स और रीजनल पावर हाउसेस ने यहाँ अपने डिजाइंस डिस्प्ले किए हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिकेट हैंड एम्ब्रॉयडरी, डेलिकेट फ्रेंच लेस एंड फैब्रिक्स जो इतने लाइट हैं जैसे कि हवा. कुछ डिजाइनर्स ने तो बहुत ही जो फेमस ज्वेलरी ब्रांड्स के क्रिस्टल्स होते हैं और सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया है. एंड दिस गिव्स 2026 फ्यूचरिस्टिक एज. हाँ, काफी फैसिनेटिंग है कि आप एक ट्रेडिशनल ब्यूटिफुल ड्रेस को एक अलग अंदाज में देखते हैं. वो कहते हैं ना कि अबायास आर ऑल्सो इवॉल्विंग. हर एक पीस एक कहानी सुनाता है. A story of a modern Katri woman, जो कि एक proudly अपने roots से जुड़ी हुई है, but at the same time एक global fashion icon भी है. वैसे जनाब, कहा जाता है कि it's the pinnacle of luxury. और अगर आपको fashion की थोड़ी भी समझ होगी ना, तो आप इन designs की detailing देखकर हैरान रह जाएंगे. लेकिन Zenith सिर्फ देखने के लिए नहीं है. इट्स अ ट्रीट फॉर ऑल योर सेंसेस. जैसे ही आप एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल की तरफ मूव करते हैं, ये जो हवा है ना, वो बदल जाती है. दोहा की हवा में वैसे ही हमको ऊद और मस्क की एक मिट्टी वाली मीठी मीठी महक फील होती है. हम उसे हवा में सूंघ पाते हैं. द फ्रेग्रेंस इज सो ब्यूटिफुल. एंड जब हम Zenith की बात करते हैं, तो इसका लेवल पूरी तरह से बदल जाता है. यहाँ रीजनल परफ्यूमर्स ने अपने नीश कलेक्शंस लॉन्च किए हैं. एंड हम बात कर रहे हैं अतर की, जो कि एक सदियों पुरानी एक ऐसी खुशबू है जिसे अलग अलग तरीके से ब्लेंड किया जाता है, इसे मिक्स किया जाता है. और फिर अगर हम बात करें वो रोज का ब्यूटीफुल सा फ्लेवर, वो फ्रेग्रेंस, उसे वुडी नोट्स के साथ सैंडलवुड में मिला दिया जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बेहतरीन खुशबू बन के निकलेगी. वैसे इमेजिनेशन की बात जब होती है ना, तो हम यही कहते हैं कि सोचे सोचे सोचे कि एक डिजाइनर आपको एक क्रिस्टल बॉटल दिखा रहा है, ठीक है, एंड देन वो स्प्रे भी कर रहा है, एंड सडनली आप एक रोज गार्डन में पहुंच जा रहे हैं. हाँ, या फिर आप एक खूबसूरत जंगलों के सफर में पहुंच जा रहे हैं, बिकॉज वो जो लेवल ऑफ फ्रेग्रेंस है, वो जो खुशबू है, वो आपको उस जगह का एहसास दिला दे रही है. तो Zenith में पहली चीज अबायास की खूबसूरती, और फिर खुशबू का वो कहते हैं ना एक अलग ही लेवल, वो एक अलग ही दुनिया हमको महसूस होगी. वेल, Zenith में एक्सेसरीज का सेक्शन भी उतना ही ग्रैंड है. वेल, हैंडक्राफ्टेड लेदर बैग्स है, वी स्पोक ज्वेलरी है, और वो ट्रेडिशनल हैंड पीसेस जो आजकल फिर से ट्रेंड में आ रहे हैं. इट्स वेयर हेरिटेज मीट्स 21st सेंचुरी ग्लैमर. हाँ जनाब, यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ. हम आज तो इन मॉडर्न रनवेज और एग्जीबिशंस को इंजॉय करते हैं और बड़े खुश होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कतर का फैशन का सफर कहाँ से शुरू हुआ? मॉडर्न हाई फैशन से सदियों पहले. हाँ जनाब, कतरी विमेन जो कि पहले से ही टेक्सटाइल आर्ट की मास्टर्स थी. हम बात कर रहे हैं अल साडू की. अल साडू एक ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक है जो बेडुइन विमेन यूज करती थी, और वो कहते हैं ना कि वो कैमल के बाल और गोट के बाल, एंड इनसे बनाए जाते थे वो मजबूत और सुंदर पैटर्न्स. हाँ, और वैसे जो टेंट्स वगैरह भी बनते थे, उसकी अपहोल्स्ट्री के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था. और क्या आपको पता है कि अल साडू को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का खिताब मिला है बाय यूनेस्को. कैन यू इमेजिन? वेल, 2026 में जब हम

खास संगम हो रहा है. तो कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है, बने रहना यही FM 107 पर कतर 2026 सुनते हुए अपनी अमिता के साथ. अलहाजम की उस हाई फैशन और लग्जरी वाली दुनिया से निकलकर अब हम मूव कर रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ कतर का जो ये शोर है, ये जो आवाजें हैं, ये हट कर एकदम शांत हो जाती है और एक गहरा सुकून हम सबको मिलता है. यस, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी कार की विंडोज को थोड़ा नीचे कीजिए और कॉर्निश की उस ठंडी हवा को महसूस कीजिए. हाँ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिल्डिंग की जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों से बनी है. एंड वी गोना टॉक अबाउट द म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट. आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कॉर्निश से गुजरते हैं हमारी नजर उस ग्रैंड सैंड कलर्ड स्ट्रक्चर पर रुक ही जाती है, क्योंकि ये अपने एक ओन आइलैंड में बनी है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई पुराना गार्जियन पूरे शहर पर नजर रख रहा है. वेल, आज MIA म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में बात करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली डे होस्ट किया जाने वाला है. यस, 9 मई को, जिसका थीम है हज. ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी जो हर जनरेशन को कनेक्ट करेगी. MIA में आज का दिन बच्चों और फैमिलीज के लिए बहुत स्पेशल होगा. इमेजिन कीजिए कि म्यूजियम के ग्रैंड एट्रियम में बच्चों के लिए इंटरैक्टिव स्टेशंस लगाए गए हैं. यहाँ बच्चों को हज के रिचुअल्स, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज एक बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव तरीके से समझाया जा रहा है. बच्चे वहाँ काबा के मिनी मॉडल्स देख रहे हैं, कैलीग्राफी सीख रहे हैं और उन मैप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सदियों पहले पिलग्रिम्स यूज करते थे. ये काफी हार्ट वार्मिंग है और ये देखना बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों को इतनी खूबसूरती से ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए देखेंगे, प्लस वो वहाँ बैठकर उन्हें समझाएंगे कि पेशेंस और डिवोशन क्यों जिंदगी में जरूरी है, तो ये भी एक बड़ा ही खास मोमेंट होगा. क्योंकि आज की दुनिया में अगर हम बात करें, जो डिजिटल दुनिया है जहाँ हम हर चीज स्वाइप करके सीखते हैं, MIA हमें एक चांस दे रहा है कि एक टच फील करें, अपनी एक्सपीरियंस ले उस हिस्ट्री को जिसका हम हिस्सा हैं. ये देखकर लगता है कि जो हमारा कतर है, भाई देखो, बिल्डिंग्स में ग्रो नहीं हो रहा है बल्कि अपने कल्चरल रूट्स को भी ना मजीद मजबूत कर रहा है. इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू स्पेंड अ फैमिली टाइम. थोड़ा सुकून, थोड़ा सा नॉलेज और ढेर सारा फैमिली टाइम जो ये मिलेगा ना, ये क्वालिटी टाइम जो मिलेगा, ये कहीं और नहीं हमें मिल पाएगा. सो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी स्पेशल. वैसे जनाब, जब हज की बात हो और हिस्ट्री को हम अगर उसमें मर्ज ना करें तो ऐसा लगेगा कि कुछ छूट गया है. तो थोड़े पीछे मुड़कर अगर हम देखें तो आज हम अपने कतर के जो फ्लाइट्स को पकड़ के हम कुछ ही घंटों में जब मक्का पहुंच जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वक्त का हमें पता नहीं चला, बस हमें जहाँ जाना था हम उस जगह पर अपनी मन मर्जी के हिसाब से आ गए, है कि नहीं? लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि सेंचुरीज अगो, सदियों पहले, उफ, ये एक टेस्ट होता था सर्वाइवल और फेथ का. क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करें कि आपको महीनों चलकर इस जगह पर पहुंचना है जिसके दीदार का आपको ख्वाब रहता है कि नहीं? तो दर्ब अल जुबैदा, इनका नाम सुना है आपने? ये एक ऐसा लेजेंडरी पिलग्रिमेज रूट था जो इराक से शुरू होकर सऊदी अरेबिया तक जाता था और जो हमारे कतरी पिलग्रिम्स होते थे वो हमेशा इस ट्रेल को ज्वाइन करते थे और जरूर इस पर जाते थे. वेल, इस रास्ते का नाम क्वीन जुबैदा के नाम पर रखा गया था और उन्होंने पिलग्रिम्स के लिए रास्ते में कुएं और रेस्ट हाउसेस बनवाए थे. वाह, बहुत ही नेकी का काम किया था. इमेजिन कीजिए कि बेडविन पिलग्रिम्स जो उस टाइम पे जाते थे तपती धूप में रेगिस्तान से होते हुए, ये रेत जब गर्म होती है तो पैरों में भी बड़ी तेज और तीखी लगती है और हाथों में सिर्फ एक पुराना सा कंपास होता था उनके पास, है ना? आप इमेजिन करें इस सिनेरियो को और तब ये पिलग्रिम्स जाया करते थे मक्का. तो उस सफर के बारे में सोचिए कि वो कितना मुश्किल सफर रहा होगा, वो महीनों तक सफर करना और उसके बाद

पुराने नेविगेशन टूल्स को देखते हुए समझते बूझते वहां पहुंचना. एक्चुअली इट्स वेरी वेरी ब्रिलियंट ऑल्सो. MIA में बच्चों को ये सीखते देख करना सच में ऐसा लगेगा जैसे कि हिस्ट्री उसी सर्कल में वापस आ गई है जिस सर्कल में सिर्फ हम सुना करते थे, या फिर हमारे एंसेस्टर्स उस सर्कल का हिस्सा रहे, है कि नहीं? अब बात करते हैं उस मास्टरपीस की, द MIA बिल्डिंग इटसेल्फ. इसकी कहानी उतनी ही स्पिरिचुअल है जितना इसका कंटेंट. यस, इसे डिजाइन किया था लेजेंडरी आर्किटेक्ट IM Pei ने. Do you know कि IM Pei was 91 years old जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया था. उन्होंने 6 महीने ट्रैवलिंग की, अलग अलग जगहों पे गए, इस्लामिक आर्किटेक्चर्स को समझा, स्पेन गए, इंडिया गए, टुनेशिया गए, और उसके बाद कायरो गए, और फिर कायरो के एक मॉस्क के एक फाउंटेन से इंस्पिरेशन मिली उनको, और फिर जाकर उन्होंने आइडिया लगाया कि कैसे MIA की बिल्डिंग को बनाया जाए. तो भाई साहब ने कतर के आमिर से रिक्वेस्ट की कि MIA को एक सेपरेट आइलैंड पर बनाया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी दूसरी बिल्डिंग इसकी साइलेंस और ग्रैंडियर को डिस्टर्ब ना करे. और सबसे अमेजिंग बात, अगर आप इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देखोगे ना, तो एक खास एंगल में जाकर ऐसा महसूस होगा कि देयर्स अ वेल्ड वुमन. हाँ जी, एंड दोज टू स्लिट्स जो उसके टॉप पर है वो उसकी आंखें हैं. एंड सच में बहुत बहुत ही खूबसूरत नजारा लगता है. हाँ जी, वेल, हर एक लाइमस्टोन ब्लॉक जो फ्रांस से मंगवाया गया था, वो सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है. सुबह गोल्डन, दोपहर को सफेद हो जाता है, और सनसेट के वक्त एकदम सॉफ्ट पिंक हो जाता है. तो जनाब, MIA सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इट्स अ ब्रिज. और ये ब्रिज जो है ना 2026 का, जो कि मॉडर्न कतर का है, वो हमें हमारी सदियों पुरानी लेगेसी से जोड़ रहा है. अगर आपने फैमिली डे मिस कर दिया ना, तो भी मैं कहूंगी कि जस्ट गो देयर फॉर द व्यू, और आप अपने अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त वहां गुजार सकते हैं. म्यूजियम के टेरेस पर थोड़ा सा होकर जब आप वेस्ट बे की चमकती लाइट्स को देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होता है कि कतर की असली खूबसूरती इस बैलेंस में ही है. एक तरफ फ्यूचर की रफ्तार है, तो दूसरी तरफ MIA का ये टाइमलेस सुकून है. तो जनाब, डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि अब आगे बढ़ने वाले हम, और अब हम बात करने वाले हैं कटारा कल्चरल विलेज की, जहां पर स्पीड और नॉस्टैल्जिया एक साथ नजर आने वाला है. तो कहीं नहीं जाना है आपने, बने रहना है FM 107 पर, दिल से देसी. तो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स चेंज द गियर. हाँ जी, अगर आप दोहा की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये जो तेजी है ना, इसे बरकरार रखिए. आपने नोटिस किया होगा कि जब स्पीड की बात होती है तो यहाँ एक अलग ही क्रेज हो जाता है. तो हम कहाँ जा रहे हैं? कटारा कल्चरल विलेज, द प्लेस वेयर हेरिटेज मीट्स द अनएक्सपेक्टेड. हाँ जी, वहाँ इस वक्त जो हो रहा है ना, इट्स लिटरली एवरी चाइल्ड्स ड्रीम. हाँ हाँ, और स्पेशली वो जो 90s वाले किड्स है ना, ये उनका ड्रीम है जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखों के सामने आ गया. एंड इट्स एन इमोशनल नॉस्टैल्जिक ट्रिप. कटारा के उन ब्यूटीफुल स्टोन पेव्ड एलीज के बीच में एक लाइफ साइज्ड सिटी बनाई गई है, हॉट व्हील्स सिटी, जहां पर एक से बढ़कर एक ये वो कारें हैं जिनको हम खिलौनों के दौर पर खेला करते थे. हाँ, लेकिन अब ये डिस्प्ले पर है. इन इमेजिन कीजिए कि ये आइकॉनिक ब्राइट ऑरेंज ट्रैक्स और वो वाइब्रेंट मॉडिफाइड कार्स, जब आप उन्हें कटारा की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और पीजन टावर्स के बैकड्रॉप में देखते हैं ना, तो वो कॉन्ट्रास्ट भाई देखने लायक होता है. और इट्स लाइक वो 90s का टाइम अब 2026 को मिल रहा है, एंड वो भी एक स्टाइलिश वे में. वाह यार, क्या कमाल की चीज है. और यहाँ एक बहुत गहरी बात है कि हम सब कटारा जाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि इतने सारे एग्जीबिशंस हो या इतनी सारी एक्टिविटीज हो, इवेंट्स हो, कटारा का नाम कटारा कैसे पड़ा? वैसे अगर हम हिस्ट्री की तरफ रुख करेंगे, तो हमारे पेनिनसुला का नाम कटारा था, लाइक CATARA, कटारा, ठीक है. लेकिन उसके बाद एंशिएंट मैप्स के चलते, एंड स्पेशली 150 AD, मतलब उस दौर की बात करें, तो इसका नाम चेंज करके कटारा किया गया. यस, कटारा.
इन द 18th सेंचुरी. सो जब आप वहाँ वो बड़े बड़े ये कार्स के एग्जिबिशंस और इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि हाय हम जिस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं ये कम से कम 2000 साल पुरानी जगह है और वर्ल्ड मैप में भी ये तब एग्जिस्ट किया करती थी. वाह क्या बात है. कतर का कार कल्चर सिर्फ एक हॉबी नहीं है जनाब, ये भी एक पैशन है एंड आई शुड से कि हर किसी के ना डीएनए में है. मतलब जिन्हें कार का शौक भी नहीं है ना वो भी अगर कतर में आते हैं तो कार के शौकीन हो जाते हैं. वेल कार्स की बात हो रही है तो क्लासिक कार्स अगर आपको देखनी है तो मैं कहूंगी कि शेख फैजल बिन काजिम म्यूजियम चले जाइए, वहां पे सदियों पुरानी ब्यूटीज प्रिजर्व करके रखी गई है. अगर आपको हाई एनर्जी चाहिए तो हम कहेंगे भाई लुसेल सर्किट एक लौती जगह है जहां आपको जाना ही चाहिए. और लुसेल सर्किट में मतलब अगर आप रुक गए तो F1 की वो गरज सुनाई देने वाली है. पर ये हॉट व्हील्स एक्टिवेशन मुझे उन पुराने कतर मोटर शोज की याद दिलाती है जो कि DECC में हुआ करते थे. और वही पैशन वही एनर्जी बस अब नए जनरेशन के लिए एक नया अवतार है. इट्स अबाउट द लव फॉर डिजाइन, लव फॉर इंजन्स एंड लव फॉर मूविंग फॉरवर्ड. तो बिल्कुल बिल्कुल मिस ना करें Qatar 2026. एंड फाइनली अब जिन्हें बिल्कुल एकदम सरप्राइजिंग मोमेंट्स चाहिए ना तो मैं कहूंगी कि सीधा एस्पायर जोन के करीब चले जाइए बिकॉज आपको मौका मिलेगा देखने का फोंटाना सर्कस. हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास एक्रोबेट्स की, एरियल फीट्स की, जो कि मतलब आप कहोगे हो क्या रहा है, एक ऐसी म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन की जो आपका दिल जीत लेगी. Fontana is actually the first traveling water circus in the Middle East. और imagine कीजिए वो बड़े बड़े टेंट है जहाँ स्टेज ही पानी बना हुआ है. मतलब सोचिए जब वो एक्रोबैट्स लाइक हवा में एकदम उड़ते हुए एकदम नीचे पानी में गिरेंगे, फिर वो लाइट्स और म्यूजिक के साथ जो सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस होगी, उफ क्या एनर्जी होगी, मतलब एकदम इलेक्ट्रिसिटी जैसी फीलिंग आएगी. है कि नहीं. पर अगर हम हिस्ट्री देखें तो कतर में एंटरटेनमेंट बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है. एंड आई रिमेम्बर दोस डेज जो कि जब बिगेस्ट शो का मतलब होता था सूक वाकिफ के कॉर्नर्स में एक स्मॉल ट्रेडिशनल ट्रूप्स का परफॉर्मेंस होगा ईद के दौरान, हम सब वहां गैदर होंगे और अर्धा परफॉर्मेंस देखेंगे. और फिर 2026 को देख लो, मतलब अब हम कितने बड़े बड़े इवेंट्स और कितने बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि एक्टिविटीज को और परफॉर्मेंसेस को हैपनिंग्स को होस्ट कर रहे हैं. वेल फोंटाना की बात करें सो इट्स अ सिंबल कि कैसे कतर ने अपने जो कहते हैं ना कि फैमिली टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाने के लिए ऐसे कमाल कमाल के शोज में इन्वेस्ट किया है. वेल हमने ट्रेडिशनल स्टोरीज से शुरू किया और आज हम वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस को होस्ट कर रहे हैं. तो जनाब अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज टिकट्स एडवांस में बुक कर लीजिए क्योंकि ये इवनिंग शोज का टाइम और वो सनसेट का आवर, आई शुड से कि सारे टिकट्स ना ऐसे फुर्ती में गायब हो जाते हैं. हाँ तो प्लीज टाइम से पहले ही टिकट्स को बुक कर लीजिए. एंड ये जो एंटायर फोंटाना सर्कस है पूरा महीने रहने वाला है 31 मई तक. सो सी योर कन्वीनियंस एंड गो अकॉर्डिंगली. और अब जबकि बातें हो गई हैं जो मेन इवेंट्स की, मैं कहूंगी कि हमारा जो कतर है ना वो इन इवेंट्स के अलावा भी ऐसी ऐसी चीजों में बिजी चल रहा है जहां पर आप जाकर फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं. हाँ तो कहाँ जाके एंजॉय करना है आइए आपको बता दे. अगर आपको लग रहा है कि इन इवेंट्स में समहाउ आप नहीं जा पा रहे लेकिन फिर भी आपको कहीं तफरी मारने जाना है, फिर भी आपका दिल कर रहा है कि मैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अकेले जाकर कतर के मोमेंट्स को एंजॉय कर सकूं, कतर की वाइब को ले सकूं, दनाइल से कि आप जा सकते हैं कताइफन आइलैंड नॉर्थ. हाँ वहां पर मेरल वाटर पार्क है और ना ये कोई एवी वाटर पार्क नहीं है, दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटर स्लाइड टावर इन द वर्ल्ड. यकीन आया आपको नहीं ना. सो जस्ट गो एंड एंजॉय एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू कतर्स ऑयल एंड गैस हिस्ट्री. और सच में मतलब वो जो एनर्जी होगी ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर वहाँ की जो स्लाइड्स है ना भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है. मैं तो नहीं जा सकती लेकिन हाँ आपको इंजॉय करते हुए जरूर देख सकती हूँ. एंड देन अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए डेफिनेटली यू कैन विजिट नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर जो कि डेजर्ट रोज है भाई. और उसके बारे में तो मतलब जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है. न जाने मैं कितने बार वहां जा चुकी हूँ और अपने दोस्तों को और जो भी मेरे फैमिली फ्रेंड्स आते हैं इंडिया से आते हैं कहीं से भी आते हैं, आई जस्ट टेक देम देयर. सो एक तो आर्किटेक्चर लवर्स के लिए ये एक बहुत प्यारी जगह है और इसे डिजाइन किया था जेन नॉवल ने.
एंड डेफिनेटली इंस्पिरेशन डेजर्ट रोज क्रिस्टल को देखकर बनाया गया है. एंड डेफिनेटली इट्स अ फैमिली फन प्लेस. इंटरैक्टिव गैलरीज है बच्चों के लिए, वर्चुअली हंट है, और यू नो पर्ल डाइवर्स कैसे जिया करते थे उनके बारे में बताया गया है. प्लस पिपलोटी रिस्ट है, ये लाइट इंस्टॉलेशन है, और मतलब बेसिकली इसका थीम है कि इट फील्स लाइक कि आप ना अपने सपनों में चल रहे, यू वॉकिंग थ्रू अ ड्रीम. और मैं खुद वहां गई हुई हूँ, मुझे बहुत मजा आया है. सो यू कैन नॉट मिस दैट. एंड देन अगर आपको थोड़ा जाना है वाइल्ड लाइफ के बारे में, थोड़ा देखना है, तो ये वाइल्ड लाइफ बहुत क्यूट है. यू कैन गो टू अलखोर द पांडा हाउस. एंड ये पहला मिडल ईस्टर्न कंट्री का ना पांडा हाउस है जहाँ पर जायंट पांडास को होस्ट किया गया है. हाँ जी, तो वहाँ पर सुहेल और थुरैया है, और बड़े प्यारे से ये दो पांडास हैं जिनको देखकर ना आपको बहुत प्यार आएगा. और इस जगह आपको क्यों जाना चाहिए, मतलब डेफिनेटली सुहेल और थुरैया से मिलने. एंड एट द सेम टाइम ये काफी अडोरेबल, एजुकेशनल और ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जू भी बगल में मिलेगा. सो डेफिनेटली एक अच्छा फील होगा, एक अच्छी राइड हो जाएगी, और अपनों के साथ, बच्चों के साथ आपको ना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. एंड देन अगर आपको फिर से लग रहा है कि इंडोर्स में जाना है और बिल्कुल धूम धड़ाका करना है ना, देन यू कैन स्ट्रेटली गो टू कतर के पहले इंडोर थीम पार्क में, जो कि मुशर्रम में लोकेटेड है. एंड आई शुड टेल यू कि इसका जो नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया गया है, बिकॉज इट हैज द टॉलेस्ट इंडोर रोलर कोस्टर. यस, इट्स क्वेस्ट दोहा. एंड जनाब ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब अगर आप एकदम गर्मी से एस्केप करना चाहते हैं ना, एंड देन हाई टेक फ्यूचरिस्टिक एंड राइड्स को और एवरी एज ग्रुप इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा थ्रिल लेना चाहते हैं, देन दिस प्लेस इज जस्ट फॉर यू. और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप बड़े स्पोर्टी हैं एंड आपको हिस्ट्री के बारे में भी जानना है, कुछ नई चीजों के बारे में भी जानना है, वो स्पोर्ट वाला फील चाहिए बेसिकली, देन आप जा सकते हैं 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जो कि कनेक्टेड है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम से. एंड मोस्ट इंटरेक्टिव स्पोर्ट्स म्यूजियम इन द वर्ल्ड है जनाब. मतलब एक तो इसका एक्टिवेशन जोन है बहुत ही कमाल का. किड्स एंड एडल्ट्स कैन टेस्ट देयर फिजिकल लिटरेसी. वो रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, एंड अपने फिटनेस लेवल्स को ना बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं. एंड दे कैन सी कि ये वर्ल्ड एथलीट से क्या हमारा मुकाबला हो सकता है. सो डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा एंड मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ेगा. और अगर आप फ्यूचर में एथलीट बनना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस दिस इज योर प्लेस. इसके अलावा और कहाँ जाया जा सकता है, यू कैन गो टू मुशर्रम डाउनटाउन. हाँ, क्योंकि कहा जाता है मुशर्रम डाउनटाउन इज द सस्टेनेबल हार्ट. क्योंकि पहली चीज तो वहाँ पे जो मुशर्रम ट्रैम चलती है बड़ी क्यूट सी होती है, मतलब एक तो वो फ्री होती है, बच्चे मतलब आई शुड से दे जस्ट लव इट. और ये वर्ल्ड की फर्स्ट सस्टेनेबल डाउनटाउन रीजनरेशन प्रोजेक्ट है. हाँ, तो आपको बताना चाहते हैं. इसी के साथ अगर आप मुशर्रम के म्यूजियम में जाते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन सी कि कैसे हिस्ट्री जो है हमारे कतर की, उसमें ये कतर, ये दोहा कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है. एंड वहाँ पर इतने खूबसूरत कैफेज हैं और कमाल कमाल की टेस्टी चीजें मिलती हैं कि मतलब उफ, मुंह में पानी आ जाता है. मतलब एक तो मुझे वहाँ की ट्रेंडी कॉफी, एंड एट द सेम टाइम जो चीज केक्स होते हैं ना, आई जस्ट लव देम. अगर आपने वहां जाके नहीं खाया तो यू रियली मिस्ड इट. जरूर जरूर जाए. वैसे गर्मी हल्की हल्की होना शुरू हो गई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कायकिंग करनी है, देन जो अल थकीरा के मैनग्रूव्स हैं, डेफिनेटली दैट्स आल्सो प्लेस जहां पर यू नो थोड़ा सा एडवेंचर ट्राई किया जा सकता है. यू कैन नॉट मिस दैट. और हाँ, वैसे हमेशा हम सुख वाकिफ की बात करते हैं, बट अगर हम सुख अल वक्रा की बात करें, तो ये भी एक हेरिटेज विलेज है. एंड सुख वक्रा अगर आप जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल बीच के नजदीक है. एंड इट फील्स लाइक वो ओल्ड फिशिंग विलेज में हमारी एंट्री हो रही है. हाँ, और यहाँ पर सी फूड बड़ा कमाल का मिलता है. प्लस बच्चों के खेलने के लिए पूरा खुला मैदान है, मतलब खुली जगह है, और समुंदर है, रेत है, और वो सैंड कैसल्स, मतलब हर कोने में बच्चे बना सकते हैं. आई सो लव दैट प्लेस. तो जनाब देख लीजिए कि अभी आपको कहाँ जाना है, कब जाना है और किन के साथ जाना है. लिस्ट मैंने बना दी है, अब आप प्लान खुद कर लो.
और इसी के साथ कतर 2026 का ये एपिसोड आई एम वेरी सर्टन आपको जरूर पसंद आया होगा. पसंद आया है तो अपने फीडबैक्स वगैरह भी दे दो. हमारे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6622107 6622107 पर, और साथ ही हमारा जो FM 107 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह सोशल मीडिया पे हम मौजूद हैं, उसे फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और अपने दिल की बातें भी आप वहां हमसे शेयर कर सकते हैं, और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, और अभी इसी के साथ मैं कहूंगी कि मुझे दे दो इजाजत क्योंकि अब वक्त हो गया मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस. ठीक है, तो जाते जाते क्या कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. इंजॉय कीजिए अपने रेस्ट ऑफ द डेज, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफली एंड बी काइंड टू एवरीबॉडी. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. FM 107 सुनते रहिए दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हाँ जी दोस्तों, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए 10 से लेकर 1 तक के कौन से बेस्ट गाने हैं जो आपकी प्लेलिस्ट में आज ऐड होने वाले हैं। 10 नंबर पे आप लिख लिए रोमियो का गाना, 9 नंबर पे लिख लिए अगेन रोमियो का गाना और 8 नंबर पे लिख लीजिए आप सलमान खान की मूवी का गाना। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, हर हफ्ते हम बेहतरीन से सॉन्ग के बारे में बात करते हैं और इस हफ्ते भी हम टॉप 10 से लेकर यानी कि नंबर 10 से लेकर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको अपनी प्लेलिस्ट में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल करना चाहिए, बेहतरीन से गाने कुछ ऐसे जो नंबर 8 पे थे, नंबर 9 पे थे, अब आ गए हैं नंबर 5 पे और नंबर 3 वाला गाना पहुंच गया है नंबर 8 पे। बहुत ज्यादा गाने जो है वो आ रहे हैं, लोगों के तरफ से पसंद किए जा रहे हैं, चाहे वो क्रिटिक्स हो चाहे वो हो सुनने वाले हमारे और आपके जैसे। रील पे कौन से गाने ट्रेंड कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस शो में जिसका नाम है टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक,
3: FM 107 टॉप 10।
2: तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 और नंबर 9 से। दोस्तों नंबर 10 पे है वो गाना जो एक समय पे नंबर 3 नंबर 4 पर पहुंच चुका था लेकिन अब नंबर 10 पे आ गया, क्योंकि नए गानों ने बिल्कुल पावर जो है अपनी दिखा दी और नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 पर आ गए धीरे धीरे करके। इसलिए नंबर 10 पे ओ रोमियो का ये ट्रैक विच इज आशिकों की कलोनी में, ये वाला वर्जन नहीं असल वर्जन सुनिए। यह है ओ रोमियो का ट्रैक आशिकों की कॉलोनी जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और ये दूसरा ट्रैक विशाल भारद्वाज का 2026 के रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी ओ रोमियो से है और मासी ये गाना और उसके अलावा लोगों के बीच जो टीनेजर्स हैं उनमें हाईलाइट ये बहुत ज्यादा गाना है। मधुबंती बागची और जावेद अली का गाया हुआ, लेजेंडरी गुलजार का लिखा हुआ लाजवाब गाना। उसकी एक लाइन है, इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया, क्या करे यार 500 कतरी रियाल का बट लेना पड़ा क्योंकि ये इश्क का इत्र था। कंपोजर हैं इसके विशाल भारद्वाज और गुलजार के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये गाना बहुत ही लाजवाब है। मैकदीप बोस ने इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट किया है जिसमें तबला है, घुंघरू है, ढोलक है, मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे कि मैंडोलिन, गिटार, बेस और मॉड्यूलर सिंथेसाइजर का इस्तेमाल करते हुए और ये 90s का जो रेट्रो मैजिक है वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसके अलावा अगर वीडियो की बात करें तो शाहिद और दिशा की जो केमिस्ट्री है इस गाने को और ट्रेंडी बना रही है और व्यूज लेकर आ रही है, इसलिए नंबर 10 पे अभी भी ये बना हुआ है कॉल्ड आशिकों की कॉलोनी। नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं, अगेन ये ओ रोमियो का ट्रैक है जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, लिरिसिस्ट हैं अगेन द लेजेंडरी गुलजार साहब, कंपोज किया है अगेन विशाल भारद्वाज ने। इंस्ट्रूमेंट का सही इस्तेमाल और कैसे गाने को ट्रेंड बनाया जाता है ये आप विशाल और अरिजीत से सीख सकते हैं।
4: मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है।
2: इश्क का फीवर भले ये स्लो सॉन्ग है बट इतना लाजवाब है, जो सुर है, जो ताल है, जो यू नो कह सकते हैं कि लाइन को कहां पर उठाना है कहां पर छोड़ देना है वो अरिजीत सिंह से अच्छा कौन कर सकता है यार। और ऐसा गाना जिसकी राइटिंग अच्छी है गुलजार साहब ने लिखी है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा टीनेजर पसंद करते हैं किसी गाने को तभी वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आता है, लेकिन बावजूद उसके ये गाना अगर ट्रेंड कर रहा है तो मैं बता दूं ये टीनेजर्स की वजह से नहीं, ये अरिजीत गुलजार और विशाल की वजह से ट्रेंड कर रहा है नंबर 9 पे। ओ रोमियो का ये ट्रैक एंजॉय करें इन दो गानों को FM 107 पे। वापस आएंगे तो नंबर 8 और नंबर 7 के बारे में हम बात करेंगे। दिल से देसी
3: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

0: FM 107 Top 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummeed hai ki aapne ye dono song yani ki number 9 aur number 10 ke song likh liye honge. Ab bari hai number 8 ke bare mein baat karne ka. तो दोस्तों नंबर 8 के बारे में हम बात कर लेते हैं. नंबर 8 का ये जो गाना है ये है चांद मेरा दिल. ये उस पर नहीं है ऑब्वियसली.
2: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल.
1: इसमें लक्ष्य है, अनन्या है, सचिन जिगर है, फहीम अब्दुल्ला है, अमिताभ भट्टाचार्य हैं. ये लाजवाब गाना 14th ऑफ अप्रैल को रिलीज हुआ और ये रोमांटिक गाना बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान पसंद किया जा रहा है. उसके अलावा जो इमोशन है, जो म्यूजिकल और लिरिकल हाईलाइट है वो बहुत ज्यादा पसंद किया है लेजेंड लोगों ने, या कहें कि हमारे ऐसे टीनेज लोग. मैं अपने आप को टीनेज ही बुलाता हूँ भाई, अभी क्यों बुढ़ा बुलाऊँ अपने आप को. कॉम्पोजिशन है सचिन जिगर की, रॉक हैवी और बेहतरीन साउंड बेस का इस्तेमाल कंटेम्प्रेरी लेयर्स के साथ. क्लासिक और सोलफुल वाइब जरूर आपको इसमें देखने को मिलेगी या एहसास करने को मिलेगी. उसके अलावा वोकल्स पे हैं फहीम अब्दुल्ला, नोन फ्रॉम सैयारा. अगर आपको याद हो सैयारा क्या लाजवाब गाना गाया था, मुझे लगता है टॉप 10 में उसको डाल देना चाहिए क्या. तो बहुत ही अच्छा ये गाना गाया है. और उसके अलावा फहीम अब्दुल्ला का साथ दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने, क्योंकि अमिताभ ने जो लिखा है वो बड़ा ही आग लेख दिया है. उसके अलावा ये गाना आपको आरव और चांदनी की वजह से बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, उम्मीद पूरी है. विजुअल भी और केमिस्ट्री भी दोनों की लाजवाब है. एंजॉय करें नंबर 8 पे ये गाना कॉल्ड चांद मेरा दिल. और अब बात कर लेते हैं चांद देख लेना.
3: तुम चांद देख लेना, तुम्हें हम नजर आएंगे.
1: ये जो गाना है चांद, ये 7 और 8 में आपको सुनने को मिलेगा. और बड़ी इत्तेफाक की बात हुई, नंबर 10 पे जो गाना है वो रोमियो का है, नंबर 9 पर भी रोमियो का है, नंबर 8 पे चांद मेरा दिल और नंबर 7 पे गाना है चांद देख लेना. क्या बात है, चांद मेरा दिल, तो यानी कि दिल को देखने की बात हो रही है. वेल, ये जो 7 नंबर पे गाना है ये है मातृभूमि मूवी का ट्रैक, जिसे निहाल तौरो और अंकुना मुखर्जी ने गाया. इस पर ज्यादा हम बात करें उससे पहले बता दें कि मातृभूमि मूवी का ये ट्रैक जो है ये न्यू कमर्स निहाल और अंकुना ने गाया है. सलमान इसके लिए बहुत ज्यादा बॉलीवुड में फेमस है कि वो नए लोगों को चांस देते हैं, और नए लोगों को चांस देने में बड़ा रिस्क होता है. लेकिन सलमान सलमान कैसे होंगे अगर वो रिस्क ना ले. तो निहाल को और अंकुना को ये मौका दिया और इन दोनों ने बिल्कुल इस मौके को ग्रैब किया और बेहतरीन गाना गाकर दिखाया और बताया कि कैसे निहाल और अंकुना मुखर्जी आने वाले वक्त में बॉलीवुड के सिंगर बेहतरीन स्टार बनने वाले हैं. चांद देख लेना के लिरिसिस्ट हैं समीर अंजान, कंपोजर हैं वन एंड ओनली हिमेश रेशमिया, इंस्ट्रूमेंट पे सितार बजाते हुए सुनील खट्टी हैं, और जितेंद्र जो हैं वो वायलिन बजा रहे हैं, लोकेश फ्लूट पे हैं और गिटार बजाया है दीपक सिन्हा ने. ब्यूटीफुल ये ट्रैक ट्रेंड कर रहा है. 2026 का ये गाना अभी तक, सलमान खान ने इसे रिलीज कराया था ईद के वक्त पे और नंबर 7 पे अभी तक बिल्कुल बरकरार है. एंजॉय करें इन दो गानों को और वापस आएंगे तो नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में हम करेंगे बात. सुनते रहो FM 107 दिल से देसी.
0: FM 107 Top 10 Number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, ये शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक आप सुन रहे हैं. और अब बात कर लेते हैं नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में. नंबर 6 पे है साद लामजड और नेहा कक्कड़ का गाया हुआ बेजफ ये गाना, जिसमें शहनाज गिल हैं, रजत नागपाल हैं, शरीफ बेनिस और अंशुल गर्ग का बिल्कुल सही साथ है. ये एक हाई एनर्जेटिक क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन है. इससे पहले भी साद लामजड ने जिस तरह के गाने दिए हैं वो काफी ट्रेंड किए, और खास तौर पे गल्फ में भी और बाकी मुल्कों में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था, क्योंकि साद को ये समझ में आ गया है कि मेरा गाना वहां ज्यादा अच्छी तरह से चल पाएगा जहां पर आप बॉलीवुड सिंगर से कोलैब कर लें. कोलैब करने में दो मुल्क जो है साथ में हो जाते हैं और गाना हिट बन जाता है. और साद लामजड ने ये जो खेल है इसे क्रैक जरूर कर लिया है. गुल्ली मता भी इससे पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था. और अगर हम बात करें वोकल पे, ऑब्वियसली हम मोरक्कन स्टार साद और नेहा कक्कड़ हैं. और हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो शरीफ बेनिस और रजत नागपाल हैं. इस गाने को एंजॉय करें, बहुत ही लाजवाब ये गाना. उम्मीद है कि नंबर 6 से नंबर 4 या 3 पर शायद आ जाए, लेकिन काफी लंबे वक्त से नंबर 6 पर. नंबर 5 पे है कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक कॉल्ड जब तलक. जब तलक ये मेरे ख्याल से जब आया था तो ये नंबर 10 पे था, फिर ये नंबर 8 पे आया और अभी नंबर 5 पे आ गया. तो 3 ही हफ्ते में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ ये गाना आपको सुनने को मिलेगा. उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने एक आइकॉनिक ट्रैक सुना होगा, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें. ये बीच पार्टी वाला जो गाना था ये आपको नॉस्टैल्जिक फील इसमें भी देगा, जब तलक में भी देगा. कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, अकाशा सिंह और मधुबंती बागची ने. और खास इस गाने को कंपोज किया है प्रीतम चक्रवर्ती ने, लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के. अमिताभ देखना बहुत लंबे वक्त तक यहां पर रुकने वाले हैं दोस्तों. इस गाने को एंजॉय करें. नंबर 5 पे है जब तलक और नंबर 6 पे है बेजफ जिसे गाया है साद और नेहा कक्कड़ ने. वापस आइए और फिर हम बात करते हैं नंबर 4 और नंबर 3 के बारे में ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: FM 107 Top 10 Number 6.

0: FM 107 Top 10.
1: हाँ जी हबीबी, तो नंबर चार और नंबर तीन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है. आप सुन रहे हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. और अभी तक अगर आपने ये गाने नहीं सुने हैं कि नंबर 10 से लेकर नंबर 5 तक कौन से हैं, तो नंबर 10 पे है आशिकों की कॉलोनी, नंबर 9 पे है रोमियो मूवी का ट्रैक इश्क का फीवर, 8 पे है चांद मेरा दिल, और 7 पे है चांद देख लेना. क्या बात है, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट हो गया. नंबर 6 पे है साद और नेहा का गाया हुआ बेजब, क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन इस गाने में. और नंबर 5 पे है वो गाना जो 2 हफ्ते पहले नंबर 10 पे आया था, कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक कॉल्ड जब तलक. और नंबर 4 पे है अब वो गाना जिसकी मूवी ने एक्चुअली हर तरफ काबू करके रखा था, थिएटर को, थिएटर में आने वाले लोगों को और थिएटर के बाहर के लोगों को जिन्होंने ये मूवी नहीं भी देखी थी, उनके जहन में ये गाना था या कहें उनके जहन में ये मूवी भी थी. दिस मूवी इज कॉल्ड धुरंधर द रिवेंज और इसका गाना है जाइए सजना. ये गाना अभी तक ट्रेंड कर रहा है पंजाबी सूफी ट्रेडिशनल एलिमेंट के साथ मॉडर्न सिनेमेटिक साउंडस्केप्स, और कंपोज किया है इस गाने को शाश्वत सचदेव ने. देखिए इस गाने को गाया है जैस्मीन ने और

जो वोकल है सतिंदर सरताज के इसमें, वो सोलफुल सूफी डेप्थ को सेलिब्रेट करना है. और सतिंदर का जो काम है ना वो बिल्कुल हटके है, जैस्मीन के काम से बिल्कुल हटके है. लेकिन इस गाने को नंबर एक पर होना चाहिए, मेरा दिल तो यही कहता है. बट और भी गाने हैं जो नंबर एक पर ट्रेंड करने हैं, बट दिस सॉन्ग जाइए सजना, ये एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसे कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने. और कंपोजिशन के लिए इसे ज्यादा प्रेज मिलना चाहिए मेरे हिसाब से. इसके लिरिसिस्ट सतिंदर सरताज और जैस्मीन ने लिखे हैं और गाया भी इन्हीं दोनों ने है. ये ट्रैक जैस्मीन का कंटेम्परेरी

ना जिसे दिलजीत दोसांझ ने गाया है और सिया ने गाया है, जिसके लिरिसिस्ट दिलजीत ने लिखे हैं, कंपोजर हैं डेविड। स्टेडियम साइज्ड एडीएम सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिक डांस प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल पंजाबी फोक, हर यू नो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर दिया है और रांझा को बना दिया है इतना बेहतरीन कि नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है। सिया और दिलजीत का गाया हुआ ये गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एंजॉय करें इन दो गानों को। FM 107 पे वापस आएंगे तो नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन से गाने। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 Top 10.
1: हाँ जी, एक बार फिर से इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे। वक्त आ गया है नंबर दो और नंबर एक के बारे में बात करने का, लेकिन नंबर दो पे वो गाना आ गया है जो नंबर एक पर पिछले हफ्ते था, बट नंबर दो पर खिसक गया है। ये गाना है नवतेज सिंह रेहाल का गाया हुआ, खान साहब, जैस्मीन, सुधीर यदुवंशी, रेबल और टोकन का आरी यारी यारी। ये छोड़ो, ये गाना आपके दिमाग में छप गया है, अब तो प्ले करना पड़ेगा। इसके लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स के बेहतरीन खिलाड़ी। उसके अलावा कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने। इंस्ट्रूमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, हैवी बेस, पंजाबी फोक का इस्तेमाल, और ये ट्रेंडिंग कर रहा है हाई ऑक्टेन गाना, हाई एनर्जेटिक गाना जिसपे झूमने में आप मजबूर हो जाएंगे। पार्टी एंथम वाइब, सुनिए इस गाने को। एफएम 107 दिल से देसी।
0: एफएम 107 टॉप 10 नंबर 2।

0: FM 107 Top 10.
1: वैसे अब तक तो आप जोश से भर चुके होंगे इस गाने को सुनने के बाद. अब सुनिए धुरंधर का एक और ऐसा गाना जो कि बहुत ही लाजवाब है. अगेन शाश्वत ने इतना जबरदस्त कंपोज किया है, खान साहब ने इतना जबरदस्त गाया है कि ये गाना बिल्कुल जबान से नहीं उतरता. धुरंधर द रिवेंज मूवी का ये ट्रैक कॉल्ड जान

0: अच्छा सच बताना, मेरी वाली आवाज भी इतनी खराब तो नहीं थी लेकिन ठीक है, मतलब चल जाएगी। देखो इस गाने को गाया है खान साहब और शाश्वत सचदेव ने, लिरिसिस्ट इसके ऑब्वियसली नुसरत फतेह अली खान, उनको तो हम हटा ही नहीं सकते, भले इसमें कुछ और आप इंक्लूड कर दें, कुछ लफ्ज अपनी मर्जी के इंक्लूड कर दें, लेकिन नुसरत साहब को कैसे भूल सकते हैं। नंबर एक पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है, जान से गुजरते हैं, फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज, कंपोज किया है शाश्वत ने और इस पे इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम बात करें मेहताब अली नियाजी ने जितार बहुत अच्छा बजाया है, हारमोनियम का टेक्सचर है, हिप हॉप बेस लेयरिंग है और ये सूफी जो गाना है जिसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर क्या स्ट्रॉन्ग लगा है। अब इसको सब ने पसंद किया है, जेंजी जो मुझे लगता है आज से 50 साल बाद भी इस गाने के लिरिक से कनेक्ट कर पाएगी ऑब्वियसली, उसके अलावा जो बहुत जमाने पहले नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन चुके, उनकी कव्वाली को सुन चुके हैं, वो भी इस गाने को बहुत पसंद करेंगे, आज के जमाने वाले भी पसंद कर रहे हैं, 90s के जमाने वाले भी पसंद कर रहे हैं, उसके अलावा कॉम्पोजिशन लाजवाब हुई है, तो कैसे मैं इस गाने को नंबर एक पर नहीं डालूंगा। तो नंबर एक पर ये ट्रेंड कर रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज है, पसंद किया जा रहा है, रील में इस्तेमाल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट पे हर जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्रिटिक्स कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस गाने को। तो ऑब्वियसली नंबर एक पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है, एंजॉय करें धुरंधर द रिवेंज मूवी का, जान से गुजरते हैं। और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक के, जहां पर हम नए गानों के बारे में बात करेंगे। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10 Number 1।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो हम में से अक्सर रोजाना इस्तेमाल करते हैं और वो हैं मल्टी विटामिंस। कतर में आप किसी भी फार्मेसी में जाएं या दुनिया के किसी भी हिस्से में तो आपको शेल्फ पर ऐसी बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टैबलेट्स जो कि मल्टी विटामिंस हैं वो नज़र आएंगी, जो दावा किया जाता है कि बेहतर सेहत, मजबूत मुदाफती निज़ाम यानी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर करने वाली, मज़ीद तवानाई फ्राहम करने वाली, हत्ता कि एंटी एजिंग के फवायद का वादा करती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मल्टी विटामिंस वाकई ही मौसर हैं या क्या ये सिर्फ हमें तसल्ली देने का एक जरिया है, क्योंकि सच हमें और आपको हैरान कर सकता है। उनकी मकबूलियत के बावजूद यानी मल्टी विटामिंस जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, उनकी मकबूलियत के बावजूद जो बड़ी हेल्थ की तंजीमें हैं जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूके का या बरतानिया का NHS जो निज़ाम है वो, और अमेरिका की अहम जो तबी तंजीमें हैं, हर किसी के लिए विटामिंस की जो मुख्तलिफ सिफारिशात हैं वो नहीं करती। तो इसमें हम जानेंगे कि साइंस क्या कहती है। सबसे अहम पॉइंट तो ये है विटामिंस कब हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं।

0: और कब ये बहुत ही गैर जरूरी हो जाते हैं और इसमें फिर हमें क्या करना चाहिए। आप हमारे साथ रहिए, आइए आज हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट के बारे में जो हम सोचते हैं तो क्या उसका तरीका जो है बदल सकता है या नहीं।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: जो हेल्थ की मुख्तलिफ तंजीमें हैं जैसे कि हमने जिक्र किया, WHO है, NHS है UK का और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, इसके अलावा कतर की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो दुनिया भर के जो माहरीन सेहत हैं वो मल्टी वाइटमिन्स के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बुनियादी तौर पर आबादी की सतह पर जो ग़िज़ा के मुख्तलिफ तरीक़े हैं उन पर फोकस करती है और उनकी जो तरजीहात हैं बहुत ही सादा भी हैं। उनका कहना यह है कि जो मुख्तलिफ अफराद हैं जब तक मुमकिन हो वो खाने से अपनी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो हासिल करें, सिर्फ और सिर्फ मखसूस हालात में सप्लीमेंट की वो सिफारिश करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में जबकि आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो सकती तो तब आप जो है वो सप्लीमेंट या मल्टी वाइटमिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये WHO का कहना है। इसके अलावा कुछ अफराद में ग़िज़ाइयत की कमी होती है तो तब ये ज़रूरी हो जाते हैं। इसी तरह से जो मखसूस हालात में जैसे कि कोई ख़ास एक जो इंग्रेडिएंट है वो आप में कम है तब भी वो सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, यानी हर फर्द के लिए नहीं है और ना ये है कि आप ख़ुद से ही उसे इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह NHS UK की जो रहनुमाई हमें मिलती है उनके मुताबिक अगर आप आम तौर पर हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं और बैलेंस डाइट ले रहे हैं यानी मुतवाजन ग़िज़ा खा रहे हैं तो फिर आपको मल्टी वाइटमिन्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो मखसूस सप्लीमेंट की सिफारिश भी करते हैं जैसे कि वाइटामिन डी। वाइटामिन डी ऐसे अफराद को या ऐसे इलाकों में रिकमेंड करते हैं जहां पर सूरज की रोशनी कम होती है। इसी तरह से जो ख़वातीन के लिए फॉलिक एसिड जो कि प्रेगनेंसी की प्रेपरेशन कर रही होती हैं या फिर से कोई मल्टी वाइटामिन का अपनी नॉर्मल लाइफ में उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से अमेरिकन जो मेडिकल एसोसिएशन हैं उनके मुताबिक और बेशुमार जिसके हज़ारों अफराद उनके साथ मुंसलिक हैं और बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही हैं, बहुत सारे जायज़े भी लिए गए हैं और उसमें जो कंक्लूजन जो नतीजा सामने आया तो कोई भी मजबूत सबूत नहीं है कि मल्टी वाइटमिन्स बड़ी बड़े जो पैमाने पर बड़ी बीमारियों को रोकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे कि दिल की बीमारियां हैं या कैंसर हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं मगर मल्टी वाइटमिन्स का रोल इसमें कहीं नहीं देखा जाता या नहीं कहीं देखा गया है। यहाँ कतर में यहाँ मेडिकल कॉरपोरेशन और वजारत सेहत आमा यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के ज़रिए जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं इन सब से बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखता है। अमूमन ये डॉक्टर्स नहीं कहते कि सिर्फ एहतियातन या प्रिवेंटिव मेजर्स पर आप मल्टी वाइटमिन्स ले लें, इसके बजाय वो इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि पहले अपनी जो भी कोई डेफिशिएंसीज हैं उसके लिए टेस्ट करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर मखसूस वाइटमिन्स तजवीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पूरे खत्ते में वाइटामिन डी की कमी आम है, इसलिए इसे अक्सर बराह रास्त इलाज किया जाता है, यानी वाइटामिन डी जो है वो दी जाती है। इन तमाम सिस्टम्स में जो एक पैगाम है, एक जो मैसेज है, जो मुस्तकिल है, वो ये है कि मल्टी वाइटामिन्स हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। अब सवाल ये है कि फिर

रख ले लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जूस है और वो है सिर्फ विटामिन सी। इसी तरह से अगर हम फिश का कहा जाता है कि ज़रूर इस्तेमाल करें, वो हमारे लिए बेहतर है, उसमें ओमेगा 3 जो है वो कसरत से पाया जाता है। मुख्तलिफ जो मछलियां हैं उनकी जो टाइप्स हैं उन पर भी हम बात करते हैं, मगर आज हमारा मकसद ये है कि हम जो मल्टी विटामिन्स या विटामिन्स जो कि ओमेगा 3 उसमें पाया जाता है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, या फिर हम अगर जो फिश है वो अपनी खुराक में शामिल करें। कुदरती तौर पर खुराक हमेशा मुकम्मल होती है, और फिर ये कि इसी को हम कहते हैं यानी जिस्म हमारा कितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, और वो यही है कि आप अपनी खुराक में शामिल कर लीजिए मछली जो है, और हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा अगर आप फिश अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जो मकदार है जो हमें चाहिए ओमेगा 3 की वो उससे पूरी हो जाती है। और आम तौर पर जो बेहतरीन ग़िज़ा है वो कुदरती खुराक ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स हैं उनसे कहीं बेहतर है कि हम जो अपनी खुराक में फ़िश का इस्तेमाल करें। रिसेंट तहकीकात जो की गई, पहले भी हमने शेयर किया कि बड़ी बड़ी स्टडीज़ जो पूरी दुनिया में हुई हैं और कतर में भी इस पर बहुत सारी रिसर्चेज की गई हैं, मल्टी विटामिन्स क्या हमारे लिए किस हद तक जो हैं वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही कॉमन सा मसला है जिसके विटामिन डी की कमी है और भी जैसे कि बहुत सारे मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, दिल की बीमारियां बहुत हैं, या जो कैंसर है वो भी आमतौर पर जो है वो पाया जाता है, और इन तमाम चीज़ों को देखा गया कि जो विटामिन्स हैं वो उस पर कोई ख़ास असरानंदाज नहीं होते या ख़ास तौर पर वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। तो चंद सवाल जो कि हम करते भी हैं और आमतौर पर पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे अफराद से पूछते नज़र आते हैं कि हम क्या करें। इंडोर जो लाइफस्टाइल है वो है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अफराद जो धूप से बचते हैं, बिल्कुल सही है, और गर्मी में धूप से बचा भी जाता है और फ़ायदेमंद भी होता है, मगर फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर फिर मल्टी विटामिन नहीं बल्कि वो ख़ास विटामिन जिसकी कमी होती है वो ही दिया जाता है, और ये फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। ये लिसनर्स और हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही एक आम सी बात है कि जो मल्टी विटामिन्स हैं वो हम ले सकते हैं, मगर ये कि क्या आपने सोचा है या कभी आप ये सोचिए कि क्या आपके घर में या आप खुद घर में क्या रोज़ाना विटामिन्स लेते हैं, और फिर ये कि ये भी कभी सोचा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक आदत बन चुकी है, या फिर हमें ये जो विटामिन्स हैं मल्टी विटामिन्स हैं तो कोई एक ख़ास जो विटामिन है जो आप या हम कोई भी ले रहा है तो क्या हमें फ़ायदा दे रहे हैं, या सिर्फ ये है कि आजकल जैसे कि हम फार्मेसी में जाते हैं या सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ बहुत ही खूबसूरत सी अट्रैक्टिव सी रंग बिरंगी बॉटल्स होती हैं और उनके साथ साथ मुख्तलिफ दावे भी होते हैं, लेकिन क्या ये असल हकीकत है या नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा जो है डिबेट जारी है। मगर ये कि एक्चुअली ये देखना है कि ये किस वक्त हेल्पफुल होते हैं, और ये कि क्या हम इनके अलावा कुछ और कर सकते हैं, और जो डेली सप्लीमेंट हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। बिल्कुल ये सोच जो है वो हमें बहुत ही दूर तक ले जाती है, और ये बहुत अहम भी है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करें, और फिर ये देखें कि उसके जो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम बेनिफिट्स की जो तरफ देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इग्नोर भी कर देते हैं, मगर एक सवाल ये है कि मल्टी विटामिन्स जो हैं क्या वो हमेशा ये है कि बेज़रर होते हैं या हार्मलेस होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन्स लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसी तरह से अगर आप आयरन जो है वो

0: एक्सेसिव ले रहे हैं तो उसमें जो एक्सेस आयरन है वो भी हमें नुकसान दे सकती है। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन अगर वो हाई डोजेस में लिए जाएं तो उससे भी नुकसान होता है। और इस तरह एक और अहम बात ये कि कुछ सप्लीमेंट जो हैं वो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए ये जो बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें ये बिल्कुल नेचुरल हैं, और अगर ये नेचुरल हैं और इसलिए ये बिल्कुल सेफ हैं, यानी कि वो समझते ये हैं कि हमारे लिए बिल्कुल हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं उससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें जो मेडिसिन है उसमें जो डोज है कि कितनी मकदार में आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस तरह ये भी बहुत अहम है कि हमें कब किस वक्त अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे छोड़ना है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और फिर ये कि अपने कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बैलेंस डाइट है उस पर हमें फोकस करना है, जो रियल फूड है उसे फोकस करना है, और ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट पर चले जाएं, या हम ये समझें ये जो पिल्स हैं या बहुत ही खूबसूरत सी जो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं या गमीज़ हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, हमें सेहतमंद रख सकती हैं। और ये भी नहीं है कि आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फटीग है, और सिर्फ गेस नहीं करना, आपको टेस्ट भी ज़रूर कराने हैं कि वाकई ही आपको ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें सबसे अहम बात ये कि आप विटामिन लें, मगर यह है कि उसकी जो डोज है उसे भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और जो मल्टी विटामिन हैं वो एक टूल हैं, मगर ये नहीं है कि वो एक जो मैजिक कर देती हैं, एक जादू जो हो जाता है और आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, इस तरह भी नहीं है। सबसे अहम बात ये है कि जैसे हम अपनी सेहत को देखते हैं तो उसमें ये है कि जो हमारी रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की हमारी आदत हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ एक खूबसूरत सी टेबलेट मल्टी विटामिन्स की। जी लिसनर्स, और ये बहुत ही अहम पैगाम है कि हमारी जो सेहत है या हमारी जो रोज़मर्रा की जो आदत हैं वो ही बेहतरीन होती हैं। और अगर आपकी आदत बेहतर हैं और आप ये समझते हैं कि हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है वो हेल्दी है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और ये कि बिल्कुल भी अपने आप को जो मसरूफ़ भी रखते हैं, यानी एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, तो वही हमारी आदतें हमारी सेहत को बेहतर बनाती हैं, ना कि मल्टी विटामिन्स। और लिसनर्स, इसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड तक फौजे शफीक और हमारे साथ रहे हमारे साउंड डिज़ाइनर मिस्टर शहबाज, उन्हें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर आज जो हमने बात की कि आपने मल्टी विटामिन्स को उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। अपनी डाइट को बेहतर बनाइए, आपकी सेहत बेहतर होती चली जाएगी। हेल्थ फॉर ऑल,
1: हेल्थ फॉर ऑल, डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सर्वर के साथ सुनिए जूनियर शेफ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जूनियर शेफ। भाई वो शो जहां आपका रेडियो बन जाता है किचन और आपकी इमेजिनेशन एक इंडक्शन और जहां कुकिंग होती है इजी एक्साइटिंग और फुल ऑफ फ्लेवर। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और अब हम करेंगे स्लाइसिंग टॉसिंग टेस्टिंग और टॉकिंग फूड सब कुछ आपके घर या गाड़ी की कंफर्ट के साथ। और भाई इस प्रोग्राम में आपका किचन बन जाता है आपका कंफर्ट जोन और वो भी एक आपके क्रिएटिव कॉर्नर के साथ। तो दोस्तों एक गुजारिश कि जब आप इस रेसिपी को बना लें तो इसकी तस्वीरें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर कीजिए। भाई हम आपकी क्रिएशन देखने के लिए एक्साइटेड हैं। नंबर हमारा आपको पता ही है 666221107। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में पसंद की जाती है चाहे बच्चे हो या बड़े और वो है भाई होम मेड चिकन पिज्जा। तो जनाब आज का प्रोग्राम सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि एक पूरा किचन एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आराम से हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे के भाई हमारे घर में पिज्जा कैसे बनाया जाता है। तो तमाम छोटे उस्ताद भी बड़े उस्ताद भी।

भी ख्वातीनों हजरात सबके सब शामिल हो जाए मेरे साथ। भाई वो पिज्जा होगा जो फ्रेश होगा, साफ होगा और हमारी अपनी पसंद के मुताबिक तैयार होगा। ये पिज्जा घर पे बनाने का ये फायदा है। आज हम मार्केट के फ्रोजन पिज्जा को भूलकर खुद अपने हाथों से एक जबरदस्त पिज्जा बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान हम कुकिंग को स्ट्रेस नहीं बल्कि एक सुकून भरी एक्टिविटी बनाएंगे, जहां हर स्टेप को समझने और एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। भाई किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, बल्कि ये वो जगह होती है जहां घर की खुशबू और मोहब्बत तैयार होती है। तो आज जब हम होममेड चिकन पिज्जा बनाने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छी आदत, एक अच्छा वक्त और एक फैमिली मोमेंट भी क्रिएट जरूर करेंगे। पिज्जा बनाने का मतलब है प्लानिंग, थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। किचन में गलतियां होती हैं और उन्हीं से सीखने को मिलता है। तो अगर आप पहली दफा पिज्जा बना रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए ही है जो सिंपल और आसान तरीके से घर का टेस्टी खाना बनाना चाहते हैं। अब वो पिज्जा भले ही ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या किसी कंट्री का मैप हो, डजंट मैटर एट ऑल। आज हम बनाएंगे भैया पिज्जा। तो आज के शो का फ्लो बहुत रिलैक्स है, ओके? हम जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे मैंने कहा, और किसी भी कॉम्पिटिशन का हम हिस्सा नहीं है इस वक्त, बल्कि हम एक फ्रेंडली किचन सेशन इंजॉय करने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। पिज्जा का मजा तब आता है जब हम हर प्रोसेस को वक्त देते हैं। भाई जो डो है हमारा, उसको उठाना, चिकन का मैरिनेट होना, ओवन का हीट पर आना, ये सारी चीजें अपना टाइम मांगती हैं, और इसीलिए आज हम हर स्टेप को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करके पिज्जा बनाने वाले हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार होने वाला है ये होममेड चिकन पिज्जा, जो अक्सर कहते हैं भाई मुझसे बेकिंग नहीं होती या ओवन समझ नहीं आता। तो आज हम इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे सिंपल और बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल घरेलू अंदाज में। ये समझ लीजिए मैं आपके किचन में हूँ, आप मेरे किचन में, हम एक साथ हैं। और ये होममेड चिकन पिज्जा का एक फायदा ये भी है कि हम अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल भी रख सकते हैं। हम जानते हैं कि कौन सा चीज यूज हो रहा है, कितना नमक जा रहा है और चिकन फ्रेश है या नहीं है। बाहर के पिज्जा में अक्सर ज्यादा ऑयल है, ज्यादा सॉल्ट है और वही अननोन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें वाकई पता नहीं होते, लेकिन घर का पिज्जा हमारी चॉइस होता है। तो अपना इतना कॉन्फिडेंट फील करिएगा कि नेक्स्ट वीकेंड आप खुद अपनी फैमिली के लिए ये पिज्जा बना सकें, या कमिंग वीकेंड ही सही। और जब फैमिली बोलेगी पिज्जा बहुत टेस्टी था, तो कुछ हो खुशी होगी आप ही कोई, है ना? और वो मार्केट के पिज्जा से कभी भी मेल नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें मोहब्बत भी भरी होगी। तो भैया प्रोग्राम का मकसद सिर्फ रेसिपी देना ही नहीं, बल्कि आपको किचन की दोस्ती सिखाना है। कुकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से और बेहतर होती चली जाती है। तो आज अगर पिज्जा परफेक्ट राउंड ना भी हो तो कोई बात नहीं, टेस्ट का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप किचन में कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना ही आपका खाना भी बेहतर होता जाएगा, है ना? तो जनाब शुरुआत पिज्जे से कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको कई और डिशेस में भी मदद करेगा अगर आप आज पहली बार पिज्जे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए एप्रन पहनिए, हल्का सा मुस्कुराइए और इस किचन की जर्नी का हिस्सा बनिए। अब जब हम मेंटली और इमोशनली किचन के लिए रेडी हो चुके हैं, तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे किचन सेफ्टी की। ये बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अच्छा खाना तभी बनता है जब किचन सेफ हो। भाई चाकू का सही यूज, गैस और ओवन का ख्याल और सफाई की बुनियादी रूल्स जो हैं, ये सारी चीजें हर कुक के लिए जरूरी होती हैं। पिज्जा बनाना मजे का सफर है, लेकिन सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी पॉजिटिव और रिलैक्स्ड एनर्जी के साथ चलिए अगले सफर पे चलते हैं, अगले भाग में चलते हैं प्रोग्राम के, और जानते हैं कि किचन सेफ्टी से हमारी क्या मुराद है। तो साहब किचन सेफ्टी से मुराद सिर्फ हादसों से बचना नहीं होता, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल कुकिंग हैबिट डेवलप करना होता है। जब हम होममेड चिकन पिज्जा बना रहे होते हैं, तो हम रॉ चिकन, शार्प नाइव्स, ओवन और गर्म ट्रेस के साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले रूल ये है कि किचन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी। चाकू हमेशा सूखे या ड्राई हाथ से पकड़ना, और कटिंग बोर्ड को स्लिप होने से बचाने के लिए

नीचे गीला कपड़ा रख सकते हैं। रॉ चिकन को हमेशा अलग बोर्ड पर काटना चाहिए ताकि बैक्टीरिया दूसरी चीजों पर ट्रांसफर ना हो। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओवन सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, खास तौर पर जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं। ओवन को प्री हीट करते वक्त कभी अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। गर्म ट्रेज को उठाते वक्त हमेशा थिक किचन ग्लव्स का यूज करें। बहुत से लोग ओवन ग्लव्स को इग्नोर कर देते हैं लेकिन एक छोटी सी लापरवाही सीरियस बर्न या जलने का सबब बन सकती है, हाथ जलने का सबब बन सकती है। भाई पिज्जा को ओवन में रखते वक्त या निकालते वक्त जो ओवन का डोर है उसको पूरी तरीके से खोलें ताकि स्टीम फेस पर ना आए। ये प्रोग्राम इसलिए स्लो पेस में चल रहा है ताकि आप एक चीज को याद रख लें कि सेफ्टी सबसे पहले कितनी जरूरी है। सफाई भी किचन सेफ्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम चिकन मैरिनेट करते हैं या वेजिटेबल कट करते हैं तो बीच बीच में काउंटर को साफ करते रहना चाहिए। भाई गीला काउंटर फिसलने का सबब बन सकता है चीजों का भी और गीला फर्श आपके फिसलने का। तो डिश क्लोथ को रेगुलरली धोकर यूज करें और हाथ बार बार धोना एक अच्छी आदत बना लें। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि कुकिंग के दौरान चीजें गिरती हैं या काउंटर गंदा होता है लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिज्जा बनाते वक्त हम किचन को मेस बनाकर एंड में सफाई करने के बजाय साथ साथ ऑर्गेनाइज रखें तो क्या ही खूब है। गैस स्टोव इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्लेम का साइज भी कंट्रोल में होना चाहिए। भाई बहुत तेज आग चिकन को जल्दी जला देती है और हाथ जलने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे पास हो तो चूल्हे के हैंडल्स को अंदर की तरफ रखना चाहिए और बच्चों को ये बताना समझाना चाहिए। ये सेफ्टी की छोटी छोटी टिप्स आज के शो का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि कुकिंग एंजॉयमेंट तभी पॉसिबल है जब किचन सेफ और कंफर्टेबल हो, ये बात जानना जरूरी है। भाई पिज्जा जब ओवन में हो तो हम रैंडम चीजों को मूव करने के बजाय एक जगह खड़े होकर भी आराम से काम कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे ब्लेंडर या मिक्सर यूज करते वक्त उनके वायर्स और प्लग्स ड्राई होने चाहिए। भाई गीले हाथ से स्विच ऑन या ऑफ करना खतरनाक होता है। अगर किचन में ज्यादा लोग काम कर रहे हो तो स्पेस का ख्याल रखें ताकि टकराने या गिरने का रिस्क ना हो। आज के शो में हम सिंपल तरीकों से कुकिंग सीख रहे हैं और सेफ्टी उनमें सबसे पहला स्टेप है। ये एक ऐसी आदत है जो सिर्फ पिज्जा ही नहीं बल्कि हर डिश के लिए काम आएगी। तो साहब किचन में काम करते वक्त सबसे अहम चीज सेफ्टी होती है। अक्सर लोग जल्दी या गफलत में छोटी छोटी चोटों का शिकार हो जाते हैं। चाकू है, चूल्हा है और गर्म बर्तन, सब ये आपकी तवज्जो मांगते हैं जैसे कि हमने बताया अभी। साफ सुथरा किचन न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि सेहत और सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, किचन काउंटर साफ करें और तमाम इंग्रेडिएंट्स एक जगह रख लें। इससे आप टाइम भी बचाते हैं और उलझन से भी दूर रहते हैं। तो जनाब चाकू किचन का सबसे अहम और नाजुक टूल होता है, ये भी हम जानते हैं। इसका गलत इस्तेमाल चोट का सबब बन सकता है। हमेशा मजबूत कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करें और चाकू को बेख्याली में काउंटर पर मत छोड़िए। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो हमें ज्यादा जिम्मेदारी का सामना होता है। आग और गर्मी दोनों से एहतियात जरूरी होती है। हमेशा आंच कंट्रोल में रखें। गर्म बर्तन उठाते वक्त कपड़ा या मिट्स का इस्तेमाल करें और बच्चों को किचन से दूर रखें। ये छोटी छोटी बातों पर अमल करके हम बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। किचन सेफ्टी का एक बहुत अहम रूल ये भी है कि रॉ और कुक्ड फूड को अलग अलग रखा जाए। इसलिए गोश्त काटने के बाद वही चाकू या बोर्ड बिना धोए दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो फैल सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। सफाई और एहतियात के साथ हम अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी महफूज खाना तैयार करते हैं। तो जब हम पुरसकून जहन के साथ किचन में काम करते हैं तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों जल्दी गुस्से में या थकन की हालत में खाना बनाना न सिर्फ खतरे से भरपूर होता है बल्कि जायके पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि खाना बनाते वक्त दिल और दिमाग दोनों पुरसकून हो। तो चलिए जी, जब अब हमने किचन सेफ्टी के तमाम जरूरी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं तो अब आप यकीनन ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। भाई महफूज किचन हमें ये आजादी देता है कि हम बेफिक्र होकर कुकिंग का लुत्फ उठा सकें।
चलिए जी अब

इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि अच्छी कुकिंग हमेशा अच्छी प्लानिंग से शुरू होती है। सबसे पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है पिज्जा डो। भाई ये क्या होता है, ये जो डो है, ये जो गुंदा हुआ इसका आटा है, वो आटा यीस्ट पानी थोड़ी सी चीनी नमक और ऑलिव ऑयल से बनता है। ये डो पिज्जा की फाउंडेशन होती है, इसलिए इसका सॉफ्ट और इलास्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर डो अच्छी तरह से रेडी हो तो पिज्जा का टेस्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। डो को रेस्ट देना, उसे उठने देना ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में है, इसका मतलब ये है जब वो फूल जाता है ना, पूरे तरीके से स्टेबल हो जाता है या बैठ जाता है या उड़ जाता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो ये वक्त हम वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि डो को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप डो को हाथों से फील करते हैं तब आप कुकिंग के प्रोसेस से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो चलिए जी, अब बात कर रहे हैं पिज्जा के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, यानी इंग्रेडिएंट्स की। होममेड चिकन पिज्जा में हर इंग्रेडिएंट अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी डो की, उसके बाद अब बात करते हैं चिकन की। चिकन हमेशा फ्रेश होना चाहिए, बोनलेस और छोटे क्यूब्स में कटा होना चाहिए। चिकन को हम हल्के मसालों के साथ मैरिनेट करते हैं ताकि उसका नेचुरल टेस्ट कवर ना हो। भाई नमक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है और थोड़ा सा ऑयल काफी होता है। भाई ये चिकन पिज्जा का हीरो होता है, इसलिए इसके टेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पिज्जा का मजा तब डबल होता है जब टॉपिंग का चिकन जूसी हो और ओवर कुक ना लगे। इस स्टेज पर हमें पेशेंस और बैलेंस दोनों का ख्याल रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिज्जा सॉस की, जो पिज्जा को एक पहचान देती है। पिज्जा सॉस टोमेटो बेस होती हैं, जिसमें थोड़ा सा गार्लिक, ऑरिगेनो, बेसिल्स और हल्की सी स्वीटनेस होती है। भाई ये भी आपको बताता चलूं कि पिज्जा सॉस और केचप में बड़ा फर्क होता है। केचप सिर्फ मीठा होता है जबकि पिज्जा सॉस एक बैलेंस्ड चीज होती है जिसमें खट्टा, मीठा और सेवरी टेस्ट मिलता है। अगर सॉस ज्यादा तेज हो तो पिज्जा हैवी लगता है और अगर बिल्कुल हल्की हो तो पिज्जा बोरिंग फील होता है। इसलिए सॉस का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। सॉस को हम स्पून से स्प्रेड करते हैं, प्रेशर नहीं देते ताकि डो जो है वो फट ना जाए, दब ना जाए और बेस जो है वो इवनली भी कवर रहे। तो वो स्पून को सीधा करके जब आप उसको स्प्रेड करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। भाई चीज पिज्जा की जान होती है और अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, ज्यादा चीज डालने से पिज्जा अच्छा नहीं होता। मोज़रेला चीज सबसे बेहतर होती है क्योंकि वो मेल्ट होके स्ट्रेच हो जाती है। अगर मोज़रेला के साथ थोड़ी सी चेदर मिला दें या मिला दी जाए तो टेस्ट और भी इम्प्रूव हो जाता है। चीज को हमेशा फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए ताकि वो ओवन में इवनली मेल्ट हो। चीज ना ज्यादा मोटी लेयर में हो और ना बहुत कम। जब चीज सही क्वांटिटी में हो तो पिज्जा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बैलेंस होता है। वहीं वेजिटेबल्स भी पिज्जा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं दोस्तों। शिमला मिर्च है, अनियन है, ऑलिव्स हैं और मशरूम अक्सर लोग यूज करते हैं। सब्जियों को पतला स्लाइस करना जरूरी है ताकि ओवन में जल्दी कुक हो जाए। अगर वेजिटेबल्स मोटी होंगी तो पिज्जा के साथ थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है तो वो टेस्ट बिगड़ जाता है, समझ लीजिए। तो वेजिटेबल्स सिर्फ कलर नहीं देती बल्कि टेस्ट और क्रंच भी ऐड करती हैं। लेकिन याद रखिए, पिज्जा सैलेड नहीं है, इसलिए सब्जियों की क्वांटिटी कंट्रोल में होनी चाहिए और हर चीज का बैलेंस ही पिज्जा को परफेक्ट बनाता है, याद रखिए। तो आइए अब बात करते हैं डो और ऑयल की। ऑलिव ऑयल पिज्जा डो को सॉफ्टनेस और फ्लेवर देता है। डो को रोल करते वक्त फोर्स नहीं लगाते, थोड़ा सा पेशेंस रखें और डो को हाथ से जेंटली स्प्रेड करें। ये भी याद रखें कि होममेड पिज्जा का शेप परफेक्ट राउंड ना भी हो तो कोई मसला नहीं। घर का पिज्जा हैंडमेड होता है और इसी की ये ब्यूटी होती है। जब हर इंग्रेडिएंट रेडी हो और समझ आ जाए तो कुकिंग का अगला हिस्सा आसान और टेंशन फ्री हो जाता है। तो दोस्तों, आप जब सारे इंग्रेडिएंट्स हम समझ चुके हैं, उनका रोल क्लियर हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है कुकिंग का। इंग्रेडिएंट्स को जान लेना जरूरी होता है क्योंकि बिना समझे कुकिंग सिर्फ एक अंदाजे पर चलती है तो वो गलत होता है। तो भाई आइए बढ़ते हैं अगले

डिपार्टमेंट की जानिब अगले स्टेप की जानिब, जहां पर हम साथ मिलकर पिज्जा असेंबल और कुक करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आसानी से, बिना किसी जल्दी या घबराहट के। तो दोस्तों, अब हम पिज्जा बनाना प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। डो को फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रहने देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए। किचन काउंटर पर हल्का सा ड्राई आटा छिड़क कर डो को रखते हैं। अब हम बेलन से या हाथ से धीरे धीरे डो को प्रेस करना शुरू करेंगे। ज्यादा जोर नहीं लगाना है, सिर्फ सेंटर से बाहर की तरफ शेप देना है, गोल, मटोल या जैसा भी आपको अच्छा लगे। डो को घुमाते हुए स्प्रेड करते हैं ताकि थिकनेस हर जगह बराबर हो, इवनली हो। अगर डो थोड़ा स्ट्रेच करे तो उसे रेस्ट देना बिल्कुल ठीक होता है। अब हम पिज्जा पैन या बेकिंग ट्रे तैयार करते हैं। ट्रे पर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाते हैं ताकि बेस स्टिक ना हो, ग्रीस करना है उसको। डो को आराम से ट्रे पर शिफ्ट कर दें, उंगलियों से कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं ताकि एज बन जाए। अब पिज्जा सॉस को बीच में रखकर चमचे से गोल गोल घुमाते हुए स्प्रेड कर दीजिए। भाई, सॉस को ज्यादा हैवी नहीं करना, बस एक थिन इवन लेयर होनी चाहिए। ये स्टेप टेस्ट का फाउंडेशन होता है, इसलिए यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके जी, सॉस के बाद हम चीज की पहली लेयर लगाते हैं। मोजरेला चीज को पिंच पिंच करके इवनली पूरी सरफेस पर फैला देते हैं। चीज का कॉर्नर्स तक बिल्कुल नहीं जलाना है, थोड़ा गैप रहने देते हैं ताकि एजेस क्रिस्प हो जाएं। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा ड्राइड ओरिगैनो या इटालियन हर्ब्स स्प्रिंकल कर सकते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक। ये छोटी सी क्वांटिटी पिज्जा के अरोमा को बहुत एनहेंस कर देती है। चीज का ये लेयर टॉपिंग का बेस बनेगा, इसलिए बैलेंस जरूरी है। ज्यादा चीज इस स्टेज पर डालना गलती हो सकती है। चलिए जी, अब मैरिनेटेड चिकन को इवनली स्प्रेड करने का टाइम है। चिकन के पीसेस को पिज्जा के ऊपर बराबरी से फैला देते हैं। ध्यान रखें कि चिकन एक जगह जमा ना हो, हर स्लाइस में चिकन का होना जरूरी है। ओके, तो अब वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, अनियंस है, इनके स्लाइसेस जो हमने बना के काटे थे बारीक बारीक। सब्जियों को थिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बेकिंग के दौरान ये सॉफ्ट हो जाएं। यही वो स्टेप है जहां पिज्जा को कलर, क्रंच और फ्रेशनेस मिलती है। तो यहां क्रिएटिविटी अलाउड होती है, लेकिन ओवरलोडिंग से बचना हमेशा बेहतर रहता है। तो भाई, अब पिज्जा पर फाइनल चीज लेयर आती है। ये लेयर टॉपिंग्स को होल्ड करने के लिए होती है और पिज्जा को गोल्डन लुक देती है। चीज को हल्के हाथ से ऊपर डालते हैं ताकि टॉपिंग्स नजर आती रहें। और इस वक्त हम चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर या चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड रखें। पिज्जा को ज्यादा बढ़ाना उसका बैलेंस खराब कर देता है। जब पिज्जा असेंबल हो जाए तो थोड़ी देर रुक कर चेक करते हैं कि कोई जगह खाली तो नहीं रह गई है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और ओवन को पहले से प्रीहीट किया गया हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पिज्जा को केयरफुली मिडिल रैक पर रखते हैं ताकि हीट बराबरी से मिले। ओवन का दरवाजा धीरे से बंद करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्र है। पिज्जा को बार बार ओपन करके देखना गलती होती है। ग्लास विंडो से पिज्जा का कलर ऑब्जर्व करते रहिए और इस वक्त चीज मेल्ट होना शुरू होती है और किचन में बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही होती है। तो ये वो मोमेंट होता है जब कुकिंग का मैजिक फील होता है और इस स्टेज पर कोई रश नहीं होना चाहिए। पिज्जा बहुत आराम आराम से बनाइए, उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। पिज्जा ओवन के अंदर धीरे धीरे कुक हो रहा होता है, बेस नीचे से सेट हो रही होती है और चीज बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर बेकिंग से ही बेस क्रिस्प और टॉपिंग्स जूसी रहती हैं। अगर ओवन बहुत तेज हो तो हीट थोड़ी कम भी की जा सकती है। भाई, हर ओवन थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए अपने ओवन का बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ पिज्जा के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर बेकिंग के लिए भी मददगार साबित होता है, ताकि आप जब भी कोई चीज बनाएं तो आपको पता रहे। ठीक है, तो पिज्जा के एजेस हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए होंगे इस टाइम पे। चीज अच्छी तरह मेल्ट होकर सरफेस कवर हो गई होगी, ये साइन होता है कि पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी है। ओवन ग्लव्स पहनकर पिज्जा को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस वक्त बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा। अगर

बेस प्रॉपर कुक्ड हो चुकी हो तो ही पिज्जा निकालना है। अंडर कुक्ड पिज्जा सॉफ्ट और सॉगी लगता है, इसलिए टाइम और टेम्परेचर का जो भी रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा पिज्जा वही होता है जो पेशेंस से बनाया जाए। तो दोस्तों अब पिज्जा को ओवन से बाहर निकालकर हीट रेजिस्टेंट सरफेस पर रख दें। पिज्जा को फौरन कट मत कीजिएगा, 2-3 मिनट रेस्ट देते हुए चीज थोड़ी सेटल हो जाती है। इससे स्लाइस क्लीन निकलती है, जो पिज्जा स्लाइस आपने काट के निकालनी है, और टॉपिंग्स वो स्लाइड होती नहीं है, इधर उधर गिरती नहीं है, जम जाती है, बैठ जाती है। तो इस वक्त पिज्जा का लुक बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। गोल्डन चीज, कलरफुल टॉपिंग्स और क्रिस्प एजेस पिज्जा को विजुअली बहुत अपीलिंग बना देता है। ये वो मोमेंट होता है जब कुक अपनी मेहनत का रिजल्ट देखकर खुश होता है। देखा, बनाया कभी पिज्जा? घर वालों को ऐसा कहना, भाई चला ना नहीं ज्यादा, भाई घर की बनाई हुई कोई भी चीज हो वो अच्छी ही होती है। तो दोस्तों आप पिज्जा को कटर से स्लाइसेस में डिवाइड कर लीजिए। कटर को सीधा रखकर स्मूथ प्रेशर के साथ कट लगाते हैं। पिज्जा स्लाइस उठाते वक्त चीज स्ट्रेच होना एक अच्छा साइन है। हर स्लाइस में चिकन और वेजिटेबल का बैलेंस नजर आता है और यही वो प्रॉपर असेंबली है और बेकिंग की निशानी भी है। इस वक्त किचन में एक्साइटमेंट तो है ही है, मगर ख्याल से जरा गरम गरम चीज पैर पे भी गिर सकती है खाते वक्त, तो जरा सा देख के आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई सारे लोग, घर वाले जितने भी हैं, वो आपको भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और कब मिलेगा, कब खाएं और कब इसको बताएं कि कैसा बना है। तो ये वो मूवमेंट होता है। पिज्जा को सर्विंग प्लेट पर शिफ्ट करते वक्त थोड़ा सा गर्म रहना जरूरी है, ज्यादा ठंडा पिज्जा टेस्ट लूज ही कर देता है, तो हम जानते हैं। तो भाई अब हम चाहें तो साइड में केचप या गार्लिक सॉस रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट पिज्जा का खुद का होता है। घर का पिज्जा ज्यादा हैवी नहीं होता और ये बात हमारे पेट को भी कंफर्टेबल रखती है। इसी वजह से होममेड पिज्जा बाहर के ग्रीसी पिज्जा से ज्यादा बेहतर होते हैं। और अब यही वो स्टेज है जहां पर हम एक सुकून की सांस ले सकते हैं। भाई देखिए, कुकिंग जर्नी को हमेशा अपनी अप्रिशिएट कीजिए, पहले खुद फिर ही दूसरे आपकी मेहनत को सराहेंगे। तो भाई अब टेस्ट एंड टॉक टाइम का वक्त आ गया जहां पिज्जा का पहला बाइट लिया जाए। पिज्जा को चखते वक्त हम सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि टेक्सचर भी फील करेंगे। बेस क्रिस्प है या नहीं, चिकन जूसी है या ड्राई, चीज क्रीमी है या रबरी, ये सब चीजें नोटिस की जाती हैं। हर बाइट एक नया एक्सपीरियंस होता है और होममेड पिज्जा का टेस्ट यूजुअली बैलेंस्ड होता है, क्योंकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो खुद सिलेक्ट किए होते हैं। यहीं पर हम रियलाइज करते हैं कि घर का खाना वाकई बहुत सेहतमंद होता है। टेस्ट के साथ साथ बातचीत भी होती है, सब लोग आपके पिज्जा को सराह रहे होंगे या कुछ खामियां भी निकाल रहे होंगे, तो बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे इम्प्रूवमेंट आता है। कुकिंग एक जर्नी है जहां हर एक्सपीरियंस कुछ सिखा कर जाता है, तो इस वक्त किचन में जितना भी हंसी मजाक हो वो आपको सेटिस्फेक्शन ही देगा। मार्केट के पिज्जा में ये फीलिंग्स नहीं होती भाई, घर वाले एक साथ बैठे हैं, घर का पिज्जा सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक फैमिली का मोमेंट क्रिएट होता है। कोई भी कुकिंग हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, तो ये एक वाकई में अपने आप में बड़ी ही सुकून देने वाली चीज़ है। भाई टेस्ट एंड टॉक का मतलब सिर्फ तारीफ सुनना ही नहीं, कभी कभी जितने भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बेस थोड़ा थिक रह गया हो या सॉस कम लगे तो उसे नोट कर लीजिए, ये नोट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट को और अच्छा बनाने के लिए आपके काम आएंगे। ठीक है जी, तो जब आप खुद बनाकर खाते हैं तो हर बाइट में सेटिस्फेक्शन मिलता ही है। बाहर का पिज्जा कंपेयर ही नहीं किया जा सकता घर के पिज्जा के मुकाबले में। चलिए जी, अब कुक इट अगेन चैलेंज आ गया है आप लोगों के लिए, और इसका मतलब ये है कि आज जो सीखा गया या सिखाया गया है उसे दोबारा प्रैक्टिस में लाएं। इस चैलेंज में कोई प्रेशर नहीं है, इसका मकसद कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगली दफा जब पिज्जा बनाएं तो थोड़ा अपना टच जरूर ऐड करें, मुख्तलिफ टच। ज्यादा शायद आप चिकन स्पाइसी कर सकते हो या वेजिटेबल बदल भी सकते हैं। भाई कुकिंग एक्सपेरिमेंटेशन से ही बेहतर होती है। जब आप दोबारा पिज्जा बनाते हैं तब पहले वाले नर्वसनेस आपको अब नहीं मिलेगी, तो यही इस चैलेंज का फायदा है ना। आप कंफर्ट जोन में जाकर काम कर सकते हैं। तो इस चैलेंज के दौरान फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, बच्चों को चीज डालने दी जा सकती है, या उनका जितना भी इसके अंदर इंटरफेरेंस है वो खोल दीजिए, करने दीजिए।

0: से स्प्रेड करने दीजिए उन लोगों को, तो इससे उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, है ना। तो पिज्जा बनाना एक फन एक्टिविटी बन जाती है, जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट और भी अच्छा लगता है। हर किसी की कंट्रीब्यूशन पिज्जा को स्पेशल बना देती है, और ये चैलेंज सिर्फ कुकिंग तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि फैमिली बॉन्डिंग का भी जरिया बन जाता है। तो जनाब, कुक इट अगेन चैलेंज के जरिए हम अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हैं। पहली दफा मिस्टेक्स होती हैं, दूसरी दफा बेहतर कंट्रोल होता है। ये प्रोसेस नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर ओवन टेम्परेचर पहले कंफ्यूज करता था, अब क्लियर हो जाएगा। अगर डो बेलना मुश्किल लगता था, अब आसान हो जाएगा। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स तब होते हैं जब हम रिपीट करते हैं। तो इस चैलेंज का मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस करना है। हर अटेम्प्ट के साथ पिज्जा और आप दोनों बेहतर होते चले जाएंगे। तो इस चैलेंज का एक और फायदा ये भी है कि हम रेडीमेड चीजों पर कम डिपेंड करते हैं। जब घर पर पिज्जा बनाना आता हो तो बाहर से ऑर्डर करना कम हो जाता है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और बजट के लिए भी। तो कुकिंग सेल्फ रेजिलियंस सिखाती है। जब आप खुद बना लेते हैं तो जीत आपकी ही होती है। तो आज के प्रोग्राम के एंड पर एक बात याद रखनी चाहिए कि होममेड चिकन पिज्जा सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक अच्छी आदत भी है। ये आदत सेहत, सुकून और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है। जब हम खुद खाना बनाते हैं तो हर बाइट में अपनी मेहनत और मोहब्बत होती है। तो इस शो का मकसद यही था कि कुकिंग को मुश्किल से आसान बनाया जाए। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस चैलेंज को आगे कैसे कैरी करना है या कैसे इसको फॉरवर्ड करना है। दोबारा बनाइए, इंजॉय करें और किचन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। तो साहब, शुक्रिया मेरे साथ इस कुकिंग के सफर पर जुड़ने के लिए। अगली दफा तक अपनी मॉर्निंग्स ब्राइट रखें और अपनी मील्स माइंडफुल रखें। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन टू आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Dosto, har insaan ki zindagi mein na mushkil waqt aata hai. Pareshani, gham, tension aur disappointment natural cheeze hain. Lekin jab negative soch rozmarra ki zindagi ka hissa ban jaye तो शायद हम जिंदगी भर का साथी बन जाता है। नेगेटिविटी सुनने में शायद उतनी खतरनाक ना भी लगे, लेकिन हाँ एक्चुअल में बड़ी खतरनाक है। नेगेटिविटी का मतलब है हर चीज का बुरा पहलू देखना, हमेशा वर्स्ट सोचना और उम्मीद को खत्म कर देना। देखिए, रिसर्च कहती है कि इंसानी दिमाग naturally नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, जिसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। लेकिन अगर इस सोच को कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल देती है। देखिए, जिंदगी हमारी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स और कई बार बहुत ज्यादा टॉर्मेंटिंग सिचुएशंस भी आ जाती हैं। नेगेटिविटी सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहती, कई बार वो धीरे धीरे हमारी हेल्थ, हमारे रिश्तों और हमारे काम को भी अफेक्ट करती है। जब इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है तो उसका दिमाग स्ट्रेस मोड में आ जाता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। देखिए, नेगेटिविटी के कुछ कॉमन नुकसान भी हैं। हमेशा नेगेटिव रहने से टेंशन और उदासी जो है बरकरार रहती है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक ज्यादा नेगेटिविटी से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देते हैं। वहीं नेगेटिव लोग अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे दूर भागते हैं। ऐसे में आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ बिगड़ने लगती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी नजर आती है। जब इंसान खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करे तो सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है और इस तरह नेगेटिविटी धीरे धीरे जिंदगी का सुकून और चैन छीन लेती है। अब सवाल उठता है कि भाई, नेगेटिविटी

पैदा होती है। सोशल मीडिया, इसे हम बिना ब्लेम दिए कैसे निकल सकते हैं आगे? देखो ये सोशल मीडिया भी ना इसको बढ़ा तो रहा है, क्योंकि हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगी जो है वो रील्स में देख रहे हैं और हमारी जिंदगी हमें एकदम जीरो लग रही है। कभी कभी ये आदत इस तरह से हमें बेचैन कर देती है कि हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते और सिर्फ बुरा ही बुरा सोचते चले जाते हैं।

0: रोकना, एक्सेप्ट करना, उस पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेगेटिविटी को खत्म करना एक दिन का काम भी नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों से शायद आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं. सबसे पहला कदम ये कि आप नोटिस करें कि आप क्या सोच रहे हैं. जब नेगेटिव ख्याल आए, खुद से पूछें, क्या ये सोच सच है या सिर्फ सोच है. ये टेक्निक नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने में मदद करती है. वहीं शुक्रगुजारी की आदत, रोज दो से तीन चीजों का शुक्र अदा करने से दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है. यहाँ रिसर्च भी यही कहती है कि ग्रैटिट्यूड फोकस को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है. वहीं नेगेटिव लोगों से दूर रहें, डिस्टेंस बनाएं. हर वक्त नेगेटिव खबरें, गॉसिप, शिकायत सुनना आपकी सोच को और ज्यादा तबाह कर देता है. पॉजिटिविटी के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव लोग और बेहतर कंटेंट रखें. खुद को पॉजिटिव रखना जरूरी है, उसके लिए अपना रूटीन बेहतर बनाइए. अब रूटीन कैसे बेहतर हो, उसकी शुरुआत तो भाई अच्छी नींद से होगी ना. अच्छी नींद, थोड़ी एक्सरसाइज और बैलेंस्ड खाना आपके मूड को बेहतर करता है. फिजिकल एक्टिविटी से दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं. जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर स्ट्रेस लेने के बजाय अपने रिएक्शन पर फोकस करें. साइकोलॉजी के मुताबिक हम हालात नहीं बल्कि अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं. सेल्फ टॉक इसे जो ना हल्के में ना लीजिएगा. सेल्फ टॉक का जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है. जब आप खुद को हार्श या नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं तो वो जैसे आपके दोस्त ही बन जाते हैं और फिर वो आपके एटीट्यूड में साफ नजर आते हैं. तो इन सारी चीजों से परहेज करना आज से ही बहुत जरूरी है. देखिए, जाते जाते बस यही कहूंगी कि नेगेटिविटी जो है वो जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जिंदगी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड की आदत, थोड़ी सी पॉजिटिव चॉइसेस, पॉजिटिव लोग आपकी सोच को बदल सकते हैं. जब हम नेगेटिविटी को चैलेंजेस की तरह देखें और हर दिन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने का फैसला करें तो जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है. याद रखिए, जिंदगी वैसी ही होती है जैसे हम उसे देखते हैं. अगर नजर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, तो सफर भी पॉजिटिव में हल्का और आरामदेह लगता है. अपने इस सफर को, आई मीन इस दुनियावी सफर को आरामदेह बनाइए, पॉजिटिव सोच इख्तियार कीजिए. चलिए जी, इसी के साथ मुझे तो दीजिए इजाजत, और मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद को दुआ में याद रखिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद आरजे श्रुति।
2: कभी सुबह घर से निकलते वक्त ऐसा हुआ है कि फोन वॉलेट की सब याद रहता है बट ब्रेकफास्ट रह जाता है और हम बोल देते हैं कोई बात नहीं लंच में कवर हो जाएगा। पर आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट के बारे में और ये सच है कि ब्रेकफास्ट हम जो स्किप करते हैं ये बॉडी के साथ अनफेयर हो जाता है। रात भर सोने के बाद बॉडी फास्टिंग मोड में जाती है, एनर्जी लेवल्स लो होते हैं और ब्रेन को फ्यूल की जरूरत होती है। ब्रेकफास्ट का काम होता है बॉडी को मैसेज देना, गुड मॉर्निंग, अब काम शुरू सकता है। जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चले जाती है, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं, फोकस कम हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक्सट्रीम भूख लगने लगती है। वेल इसका रिजल्ट क्या होता है? लंच के टाइम ओवरईटिंग या फिर जंक की क्रेविंग। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन ब्रेकफास्ट मिस होता है उस दिन पेशेंस थोड़ा कम होता है, छोटी बातें ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। वेल ये कोइंसिडेंस नहीं है, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है क्लियर थिंकिंग के लिए। ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, ये मूड सेट होता है, दिन भर का आपका मूड सेट करता है। और ब्रेकफास्ट का मतलब हैवी पराठा बटर ये सब नहीं होता, बड़ा सिंपल सा भी ब्रेकफास्ट आपको हो सकता है। जैसे आपने फ्रूट्स और नट्स ले लिए, दही फ्रूट्स ले लिए, एग्स खा लिए, पोहा, उपमा, ओट्स, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। एक प्लेट ब्रेकफास्ट आपका पूरा दिन भर का मूड सेट कर देता है। वेल इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप खा रहे हो। ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, एनर्जी लेवल स्टेबल रहते हैं और दिन भर फूड चॉइसेस भी बेटर होते हैं। तो जो लोग रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं, उनकी एनर्जी क्रैश कम होती है। और एक और अच्छी बात, ब्रेकफास्ट की जो हैबिट है वो बॉडी को रूटीन सिखाती है। बॉडी को पता होता है कि कब फ्यूल मिलने वाला है तो उसे ज्यादा एफिशिएंटली काम

0: करना है अगर आप बोलते हो टाइम ही नहीं मिला तो अपने ब्रेकफास्ट को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए कभी-कभी अगर आपने सिर्फ एक एप्पल खा लिया या ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खा लिया या हैंडफुल ऑफ नट्स खा लिए पानी पी लिया इतना भी काफी होता है फॉर अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट ज्यादा कुकिंग की जरूरत ही नहीं है घर पे बनाना रख लीजिए कोई फ्रूट रख लीजिए ब्रेड बटर एंड दैट्स इट यू आर गुड टू गो और अगर आपने उसमें एग ऐड कर लिया तो नथिंग लाइक इट ये बन जाता है आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट तो कल सुबह जब अलार्म बजे फोन चेक करने से पहले बॉडी को थोड़ा फ्यूल दीजिए क्योंकि जब आप सुबह अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो बॉडी पूरा दिन आपका साथ देती है एनर्जी के साथ फोकस के साथ अच्छे फ्लो के साथ इसलिए याद रखिए ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए अपनी हेल्थ को गुड मॉर्निंग कहना है तो वो ब्रेकफास्ट के साथ करिए क्योंकि तभी आपकी मॉर्निंग रियल में गुडी गुडी होंगी एंड ऑलवेज रिमेम्बर योर हेल्थ Matter.
1: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

leading legendary wicketkeeper batsman in test cricket and one day cricket. Modern cricket ki baat nahi kar raha hu, halanki bahut purani baat bhi nahi hai. Ji haan dosto, 1980s ki baat ho rahi hai aur Geoffrey Dujon ke bare mein baat kar raha hu. Geoffrey Dujon West Indies ke mashhoor wicketkeeper batsman the. जिन्होंने 1980 के दहाई में वो उस टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो गोल्डन एरा उसमें उस टीम में उस टीम की जो कामयाबी थी उसमें उन्होंने अहम किरदार अदा किया था. उनकी पैदाइश 28 अक्टूबर 1956 को जमैका में हुआ और आगे जाकर दुजो ने विकेट कीपिंग में महारत हासिल की और अपनी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग स्किल्स और रिलायबल बैटिंग की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते थे. उन्होंने 81 टेस्ट मैचेस और 169 वन डे इंटरनेशनल्स में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2700 से ज्यादा रन बनाए और कई अहम मौकों पर टीम को मुश्किल हालात से निकाला. ही वॉज अ लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन और कई ऐसे इनिंग्स आज भी लोग याद करते हैं. विकेट कीपर के तौर पर अगर बात करूँ तो उनका रिफ्लेक्स बहुत तेज था और उन्होंने कई मुश्किल कैचेज और स्टम्पिंग्स किए स्पेशली अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट. उस दौर में मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, फोर फुल सम पेस बॉलर्स, तेज तरीन फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट में जेफ्री डुजो ने काफ़ी सक्सेसफुली यू नो विकेट कीपिंग किया एंड दैट शोड द काइंड ऑफ क्लास ही हैड. अच्छा एक बात और कि दुजो उस टीम का हिस्सा थे जिसमें विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड और मैल्कम मार्शल जैसे लेजेंड शामिल थे. ये वो दौर था जब वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी इन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट एज वेल एज इन ओडीआई क्रिकेट. उनकी कंसिस्टेंसी और काम अप्रोच ने उन्हें टीम का एक लाजमी हिस्सा बनाया. 1991 में रिटायरमेंट के बाद भी उनका नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपर्स में शुमार होता. तो उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा सफर जहां हम सिर्फ गाइडेंस नहीं देते बल्कि थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा ज्ञान और कभी कभी अरे ये तो मेरी कहानी भी है वाला मोमेंट भी देते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि आपके मूड को भी रिफ्रेश कर देगी, जैसे एक फ्रेश कप ऑफ चाय या ग्लास ऑफ फ्रेश जूस, लेकिन बिना ज्यादा शुगर के, ताकि हेल्थ भी सेफ रहे और दिल भी खुश रहे। आप सुन रहे हैं FM 107 पर गाइडिंग लिटिल हार्ट्स विद सफा। साथियों पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के बच्चे और यंगस्टर्स की लाइफ देखकर ना ऐसा लगता है कि उनके पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल रिमोट कंट्रोल्स हैं, यानी कि स्कूल का रिमोट, घर का रिमोट, फ्रेंड्स का रिमोट और सबसे डेंजरस सोशल मीडिया का रिमोट। और प्रॉब्लम ये है कि हर रिमोट पर अलग ही वॉल्यूम होता है। भाई कभी दुनिया इतनी लाउड लगती है कि समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत, और कभी इतनी साइलेंट कि अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स का काम है इन सब रिमोट्स को थोड़ा कंट्रोल में लाना और म्यूट बटन की जगह विजडम बटन को लगाना। देखिए ये प्रोग्राम कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है जहां आपको लगे कि ओ नो ये फिर से हमें जो है वो मॉरल साइंस क्लासेस स्टार्ट करने आ गई हैं। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक फ्रेंडली, फन और रिलेटेबल जर्नी है जहां हम लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन्स को थोड़ा सा अलग से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी आपसे कहा गया कि भाई सीधे होकर बैठो और आपने रिएक्शन दिया हो मैं तो ऑलरेडी सीधा होकर बैठा हूँ, बस चेयर थोड़ी सी फनी है तभी

हैं ऐसे एंगल में लग रहा हूँ। बस वैसे ही हम भी गाइडेंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं गाइडिंग लिटिल हार्ट्स का मतलब सिर्फ छोटे दिल नहीं बल्कि वो दिल भी जो भी सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और कभी कभी ओवरथिंक भी करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं, आई एक्सेप्ट इट कि हम सब कभी ना कभी ओवरथिंक करते ही हैं। ये प्रोग्राम आपको एक ऐसी सेफ स्पेस देता है जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे वो हो कि भाई मैं इतना लेजी क्यों हूँ, या मैं हर वक्त लास्ट मिनट पर काम क्यों करता हूँ, या फिर वही फेमस बात कि भाई मैं कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मसला है कि कल आता कब है किसी को नहीं पता होता, और स्पॉइलर अलर्ट, कल कभी नहीं आता साथियों। बस जैसे आपके मोबाइल में अपडेट्स आते रहते हैं ना सॉफ्टवेयर के, वैसे ही मोटिवेशन का भी अपडेट आता रहना चाहिए। अब जरा सीरियस बात को भी थोड़ा लाइट कर लेते हैं। इस प्रोग्राम का कोर है वैल्यूज, लेकिन टेंशन नहीं लें, हम वैल्यूज को भी कोई हैवी लेक्चर नहीं बनाएंगे। सच बोलना हाँ कभी कभी मुश्किल होता है, स्पेशली जब अम्मा पूछे कि ये तुमने तोड़ा है या ये काम तुमने किया है, और आपका जवाब ये होता है कि नहीं नहीं ये तो खुद ही गिर गया, मैंने क्या किया। या फिर रिस्पेक्ट देना, स्पेशली तब जब आपका छोटा भाई या बहन आपकी फेवरेट चीज लेकर कहता है बस ये मैं 2 मिनट के लिए यूज करूंगा, और फिर 2 मिनट का मतलब होता है फॉरएवर, वो चीज आपको कभी वापस नहीं मिलती। देखिए इसी के साथ साथ पेशेंस रखना, यानी कि जब वाईफाई स्लो हो जाए और आपको वो 1 सेकंड का वेट करना भी ना, 1 सेकंड की जो बफरिंग होती है ना वो भी आपसे ना देखी जा रही हो, ये सब रियल सिचुएशंस हैं और यहाँ से सीख आती है। देखिए इस्लाम हमें एक ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ देता है साथियों, और गाइडिंग लिटिल हार्ट्स इसी बैलेंस को समझने और शेयर करने की कोशिश करता है। यहाँ हम इस्लाम को एक फ्रेंडली, मॉडरेट और कंपैशनेट वे में एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ गाइडेंस प्रेशर नहीं होती बल्कि एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर होता है साथियों। जैसे आप कह लें कि जैसे आपको कोई जेंटली कहे कि बेटा थोड़ा सबर कर जाओ, और थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। देखिए आज के टाइम में बच्चों और यंग जो जनरेशन है उनके पास चैलेंजेस की एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अगर मैं बताऊं तो ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं कि पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन, एग्जाम्स का स्ट्रेस, और कभी कभी ये फीलिंग कि मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। देखिए मामला ये है, ट्रुथ ये है कि हर किसी का अपना एक पेस होता है, किसी का फास्ट फॉरवर्ड मोड चल रहा होता है, किसी का स्लो बट स्टेडी, एंड गेस व्हाट, दोनों ही सही हैं। बस अपनी जर्नी को समझना जरूरी होता है। और भाई इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, बिना मिरर के सामने मैं बेस्ट हूँ वाला एटीट्यूड रखकर उसको बार बार 100 दफा रिपीट किए हुए, ऑल्दो वो भी कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी टिप्स हैं कि जिंदगी को इजी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अपने डिसीजंस को बेटर बनाया जाए ताकि आप हर बार वो जो उप्स वाले मोमेंट्स होते हैं ना उनसे बच सकें, और कैसे अपने इमोशंस को हैंडल किया जाए स्पेशली जब आपको लगे कि भाई दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है, लेकिन असल में मामला सिर्फ ये हो कि असल में आपका सिर्फ वाईफाई डाउन हो, कुछ और नहीं। अच्छा मजे की एक बात बताऊं साथियों, पेरेंट्स के रूल्स और बच्चों के ये जो हम कहते हैं ना लेकिन क्यों वाला सेंटेंस, इसके बीच ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है। हम बात करते हैं सोशल प्रेशर की, जब आप फील करते हैं ना कि सब लोग मुझसे बेटर हैं, लेकिन असल में हर किसी की अपनी स्ट्रगल हो रही होती है, एक अपना ही उनका दुनिया का हिसाब चल रहा होता है जो वो रैपिडली अपने स्टेटस पे नहीं लगाते। साथियों गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आपको सिखाता है कि अपनी आवाज को सुनना भी जरूरी है। हर किसी की लाइफ में लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं, लेकिन आखिर में डिसीजन आपको ही लेना होता है, आपका ही होता है डिसीजन। और अगर कभी आप गलती करते हैं तो टेंशन मत लें, देखिए समझने की कोशिश करें कि गलतियां वो छोटी छोटी प्लॉट ट्विस्ट हैं जो आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, वरना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है ना अगर हम गलतियां ना करते और कुछ सीखने को भी ना मिलता। और भाई हम में से तो कोई किसी बोरिंग स्टोरी का फैन नहीं है कि नहीं। तो साथियों इस जर्नी में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ अच्छा स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है बल्कि एक अच्छा लिसनर, अच्छा फ्रेंड और अच्छा ह्यूमन होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और ये सब क्वालिटीज एक दिन में नहीं आती साथियों, ये एक प्रोसेस है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे बिरयानी अगर जल्दी में बना दी जाए ना तो उसका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और आप अम्मी कहते हैं अम्मी आज वो मजा नहीं आया बिरयानी खाने में जैसे आप पहले बनाती थी, तो भाई इसमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मेहनत और फिर परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। तो भाई साथियों मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, जहाँ हम सिर्फ लेक्चर नहीं देते बल्कि थोड़ा हंसते भी हैं, थोड़ा

0: लिखते भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे को समझाते भी हैं। तो भाई चलिए इस सफर को शुरू करते हैं जहाँ हर छोटा दिल इम्पोर्टेंट है, हर सवाल वैलिड है और हर मुस्कुराहट एक स्टेप है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
0: अच्छा साथियों, बच्चे जो सबर प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिलिएंट बन जाते हैं। रेजिलिएंस का मतलब होता है, कैसे समझाया जाए, कि अगर आप गिर कर उठ जाएं, आप फेल हो लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहें, आप डिले से फ्रस्ट्रेट ना हो बल्कि उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़े। देखें, ऐसे बच्चे अपने इमोशंस को समझते हैं, दूसरों को भी समझते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं। वो सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचते बल्कि बाद में जो होगा उसके बारे में भी सोचते हैं। साथियों, आज के एपिसोड में हम सबर को सिर्फ एक वर्ड के तौर पर नहीं बल्कि एक जर्नी के तौर पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि इस्लाम हमें सबर के बारे में क्या सिखाता है, कैसे कुरान और हदीस की रोशनी में हमें गाइडेंस मिलती है इसके बारे में। हम थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से डिले ग्रेटिफिकेशन क्या होता है और क्यों वेट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। हम प्रैक्टिकल टूल्स भी सीखेंगे भाई, ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जब हमें गुस्सा आए तो, जब आप इम्पेशेंट फील करें तो, या जब आपको लगे कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रही हैं। तो भाई साथियों, आज के प्रोग्राम के एंड तक ना मैं चाहूंगी कि आप सबर को एक बर्डन के तौर पर ना देखें। सबर कोई बोरिंग या कोई मुश्किल चीज नहीं है साथियों, सबर एक रोशनी है, गाइडेंस है जो आपको सही रास्ता दिखाता है जब सब कुछ अनक्लियर लग रहा होता है। ये आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर बनाता है और आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो हर सिचुएशन में बैलेंस रहता है। तो चलिए अपने दिल को ओपन करते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं जहां हम सीखेंगे कि वेट करना भी एक स्ट्रेंथ होता है और सबर सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि एक सुपर पावर है। तो साथियों, अब हम अपने सफर के एक बहुत ही गहरे और रोशन हिस्से में दाखिल होने लगे जहां हम बात करते हैं इस्लाम की उस खूबसूरत तालीम की जो हर इंसान की जिंदगी को बैलेंस देती है, और वो है सबर यानी पेशेंस। इस्लाम में सबर को सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं समझा जाता बल्कि इसे ईमान का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया गया है। भाई कुरान करीम में बार बार मोमिनीन को याद दिलाया जाता है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब रास्ते बंद नजर आए, जब दिल थक जाए, तब सबर और नमाज के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगो। देखिए सूरह अल बकरा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, सबर और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो साथियों जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रीअश्योरेंस है जब आप वेट कर रहे होते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब आपको लगता है कि भाई कोई भी आपको नहीं समझ रहा, तब अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। भाई इससे ज्यादा पावरफुल सपोर्ट सिस्टम और क्या हो सकता है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं सबर की बात करूँ, सबर का मतलब सिर्फ चुप करके बैठ जाना नहीं होता और कुछ ना करना नहीं होता। अगर हम रिलीजियस वे में देखें ना, तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि सबर एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी आप रुकते हैं लेकिन अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं, आप वेट करते हैं लेकिन अपनी होप नहीं छोड़ते, आप डिले फेस करते हैं लेकिन अपनी फेथ और इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो इंसान को टूटने नहीं देती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। और ये बात हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबर की एक लाइव एग्जांपल थी साथियों। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था ना, तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कभी लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, कभी आप पर जुल्म हुआ, कभी आपको इमोशनल पेन फेस करना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने मिशन को छोड़ा नहीं। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सबर के साथ, हिकमत के साथ और अल्लाह पर कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहे। साथियों, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ मिशन तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर दिखाया। कैसे? भाई उनकी फैमिली में चैलेंजेस थे, इमोशनल लॉसेस थे और डेली स्ट्रगल्स थी। हर सिचुएशन में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स सब

0: को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना गिव अप किए। ये भी सबर है। जब आप गुस्से में अपने वर्ड्स कंट्रोल करते हैं, ये भी सबर है। यानी सबर कोई डिस्टेंट आइडिया नहीं है, ये आपकी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा है। और इस्लाम हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटी कोशिश, हर छोटा एक्ट ऑफ पेशेंस अल्लाह के नजदीक कीमती है। चाहे वो किसी छोटी सी बात पर कंट्रोल करना ही क्यों ना हो, या बड़े डिसीजंस में रुक कर सोचना हो, सबर हर लेवल पर रिवॉर्ड रखता है। जरा सोचिए, जब आप किसी गोल के पीछे जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और वो गोल फौरन अचीव नहीं होता, आपका रिएक्शन क्या होता है? आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर आप समझने की कोशिश करते हैं शायद ये डिले आपके लिए बेहतर हो। देखिए, इस्लाम हमें ये पर्सपेक्टिव देता है कि डिलेज कभी कभी पनिशमेंट नहीं होते, बल्कि प्रिपरेशन होते हैं। जब हम सबर प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेवलप कर रहे होते हैं, और वो है ट्रस्ट इन अल्लाह प्लान। हम ये समझना सीख लेते हैं कि भाई हर चीज हमारे टाइम के मुताबिक नहीं हो सकती। यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, बल्कि अल्लाह के परफेक्ट टाइमिंग के मुताबिक होती है। और अल्लाह का प्लान हमेशा हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा ही बेहतर होगा। भाई कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमें फौरन मिल जाए, लेकिन उस डिले के पीछे हिकमत होती है। शायद हम अभी रेडी नहीं हो, शायद हम अभी सीख रहे हों, शायद अल्लाह ताला हमें एक और बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। जब हम सबर करते हैं ना, तो हम अपने ईगो को छोटा कर देते हैं और अपने रब पर भरोसा बढ़ाते हैं। ये है असली ह्यूमिलिटी। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज भी तो है साथियों, जो सबर को एक गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करता है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान को सबर से बेहतर और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोई गिफ्ट नहीं दिया गया। सोचिए, सबर को गिफ्ट कहा गया है, यानी कि ये कोई बर्डन नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि अगर आप सबर को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपके पास एक ऐसा कंपास होता है जो हमेशा आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाता है। ये आपको गाइड करता है जब डिसीजंस मुश्किल हो जाते हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग रखता है जब इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, और ये आपको ग्राउंडेड रखता है जब दुनिया फास्ट और कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो ये आपको सुलझा कर रखता है। साथियों, सबर सिर्फ वेट करना नहीं बल्कि वाइजली वेट करना है। ये सिर्फ रुकना नहीं बल्कि ग्रो करते हुए रुकना है। ये सिर्फ टॉलरेट करना नहीं बल्कि ट्रस्ट के साथ फेस करना है। और जब आप इस सबर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट या बच्चा नहीं रहते, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हैं। आपके डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून आ जाता है जो दुनिया की किसी भी फास्ट चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो साथियों, सबर को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं, क्योंकि जिस दिल में सबर होता है, उस दिल में अल्लाह ताला का नूर भी मौजूद होता है।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
0: साथियों, अब हम अपने सफर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम बात करते हैं कि सबर को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं होता ना। असल चेंज तो तब आता है जब हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम उस समझ को अपनी रोजमर्रा की छोटे छोटे एक्शंस में लेकर आते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पेशेंस एक आइडिया से ज्यादा बनकर एक हैबिट बन जाता है। देखिए, आज की फास्ट दुनिया में पेशेंस सीखना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मसल को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना, तो शुरू में थोड़ा सा आपको वीक लगती है अपनी प्रोसेसिंग, लेकिन प्रैक्टिस से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबर भी ऐसे ही डिवेलप होता है, छोटी छोटी सिचुएशन से, छोटी छोटी चॉइसेस से, छोटी छोटी विंस से। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो हम ले सकते हैं वो ये है, स्टार्ट स्मॉल। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पेशेंस सिर्फ बड़े मोमेंट्स में चाहिए होता है, लेकिन असल में सबर हर रोज की छोटी छोटी चीजों में होता है। जब आप अपनी क्लास में अपनी टर्न का इंतजार करते हैं, जब आप किसी कन्वर्सेशन में दूसरों को कम्प्लीटली बोलने देते हैं, जब आप अपना होमवर्क जल्दी जल्दी खत्म करने के बजाय देहान से कम्प्लीट करते हैं, तो ये सब पेशेंस के छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं। और जब आप इन छोटी सिचुएशंस में सबर प्रैक्टिस करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड और आपका दिल ट्रेन हो जाता है कि मुश्किल मोमेंट्स में काम कैसे रहा जाए। भाई, दूसरा बहुत ही पावरफुल टूल है ब्रीथ एंड रिफ्लेक्ट। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना भी और किया भी है, काम करता है। भाई, जब कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जब लगता है कि भाई सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है, तो उस वक्त फौरन रिएक्ट करना सबसे आसान होता है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो रिएक्शन से पहले पॉज कर

एक डीप ब्रेथ लेना, अपने आप को थोड़ा सा काम करना और फिर सोचना, क्या मैं इस सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। ये छोटी सी हैबिट आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है। जब आप रुक कर सोचते हैं ना, तो आप इंपल्सिव डिसीजंस से बच जाते हैं। आप गुस्से में कुछ ऐसा नहीं करते जो बाद में जिसका आपको रिग्रेट होने लगे। आप सिचुएशंस को थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं और फिर बेटर डिसीजन लेते हैं। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप। तो भाई तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, रियलिस्टिक गोल सेट करना। साथियों देखिए भाई, अक्सर हम इम्पेशेंस इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन हर चीज का एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना। जैसे मैंने एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है जो कि हर कोई देता है कि एक दिन के अंदर तो प्लांट उग नहीं जाता ना, उसे वक्त चाहिए होता है। वैसे ही स्किल्स, फ्रेंडशिप्स, अचीवमेंट्स को वक्त चाहिए होता है। अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हैं जैसे स्विमिंग, ड्राइंग या कोई भी लैंग्वेज स्किल होती है, तो शुरू में वो इंतहाई मुश्किल होती है भाई, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती वो। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपको समझें तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जब आप ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ग्रोथ ग्रेजुअली होती है, तो आप अपने आप पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते, और जब प्रेशर कम होता है ना, सबर नेचुरली बढ़ता है भाई। अच्छा भाई, इसी के साथ अगर चौथे स्टेप के बारे में बात करें तो चौथा स्टेप हमारे पास है एफर्ट को रिवॉर्ड करना, सिर्फ रिजल्ट को नहीं एफर्ट को भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है साथियों। अक्सर हम खुद को सिर्फ तब अप्रिशिएट करते हैं जब हमारा रिजल्ट परफेक्ट आ जाता है, लेकिन हमारा दीन ऐसा नहीं बोलता। इस्लाम और लाइफ दोनों हमें ये सिखाते हैं कि एफर्ट इटसेल्फ इज वैल्यूएबल। अगर आपने किसी चीज में मेहनत की है, अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की है, अगर आपने गिव अप नहीं किया, तो ये सब ऑलरेडी एक अचीवमेंट है। लिटरली यू ऑलरेडी हैव द सुपर पावर। रिजल्ट फौरन आए या ना आए, आपका एफर्ट आपकी ग्रोथ को शो करता है साथियों। जब आप अपने आप को एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करते हैं ना कि मैं थका जरूर लेकिन रुका नहीं, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन को नहीं, पूरी पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं आप, और यही सबर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर भाई आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सपोर्ट लेना और शेयर करना। देखिए बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि भाई पेशेंस एक सोलो स्ट्रगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं ना, तो आपका बर्डन हल्का हो जाता है। कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देना भी ना दिल को काम कर देता है। और जब कोई आपको गाइड करता है ना, कोई आपको समझाता है, तो आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। शायद जो चीज आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम लग रही थी ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी जल्दी जल्दी में, वो किसी और नजर में मैनेजेबल होती है। सपोर्ट लेना कोई वीकनेस नहीं होता, नो, ये विजडम है, क्योंकि इंसान अकेला हर चीज परफेक्ट तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। और जब आप सीखते हैं कि अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, तो आप पेशेंस को और इजी बना देते हैं। साथियों आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत कॉमन हो गई है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें फौरन मिल जाए, फौरन रिप्लाई, फौरन रिजल्ट्स, फौरन सक्सेस, लेकिन लाइफ हमें ये सिखाती है कि जो चीज डिले से आती है ना, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है भाई। जब आप पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को शेप देते हैं, आप इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं, आप थॉटफुल बन जाते हैं, आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है और आपका दिल काम हो जाता है। देखिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट चूज करें ना। जैसे अगर आप अपना वक्त वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करें, या अगर आप इंस्टेंट एंगर के बजाय काम रिस्पॉन्स चूज करें, तो ये सब आपके फ्यूचर को बेटर बना सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, पेशेंस आपको ये सिखाता है कि हर चीज अपना एक वक्त होता है बेटा। देखिए आपको अपनी जर्नी पर और खुद पर ट्रस्ट करना होता है, आपको अपने एफर्ट्स पर यकीन रखना होता है, और आपको अल्लाह ताला के प्लान पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होता है। जब आप सबर सीख लेते हैं ना, तो आपको हर डिले एक दुश्मन नहीं लगता, आप यू डोंट जस्ट गेट एंग्री ओवर इट, बल्कि एक टीचर लगने लगता है। हर रुकावट एक लेसन बन जाती है, हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो भाई साथियों याद रखिए, पेशेंस कोई बोरिंग या कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये एक मैं कहूंगी पावरफुल टूल है जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली बैलेंस्ड और स्पिरिचुअली

0: कनेक्टेड बनाता है। देखिए अगर आप आज से छोटी छोटी सिचुएशंस पर सबर करना शुरू करेंगे ना, तो कल जब आप थोड़े माशाल्लाह से और बड़े होंगे, आप एक बहुत डिफरेंट इंसान होंगे। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ वेट नहीं करता बल्कि वाइजली वेट करता है। और याद रखिए, जो इंसान सबर सीख लेता है ना, वो जिंदगी को जीतना सीख सकता है, सक्सेसफुल होना सीख सकता है भाई।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
0: साथियों, अब हम अपने सफर के एक बहुत ही खूबसूरत और रोशन हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम पेशेंस को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक लाइट के तौर पर समझते हैं। एक ऐसी रोशनी जो जिंदगी के हर अंधेरे रास्ते में हमें गाइड करती है। जरा सोचिए, अगर आप रात के वक्त किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं और आपके आसपास टॉर्च ना हो, तो हर कदम कितना मुश्किल लगता है ना। हर चीज अनक्लियर होती है, हर शेडो से डर लग रहा होता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक रोशनी हो, एक छोटी सी लाइट, तो वो पूरा रास्ता आसान हो जाता है। देखिए, पेशेंस बिल्कुल इसी लाइट की तरह होता है। ये आपको ये बताता है कि कब रुकना है, कब चलना है, क्या चीज नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। तो भाई, आज की फास्ट पेस दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए होता है सबको, मैं मानती हूँ। हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स फौरन मिल जाएं, आंसर्स फौरन मिल जाएं और हर प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ अपने रिदम में चलती रहती है, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी ऐसी सिचुएशंस में ले आती है जहां हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और यहां पर पेशेंस हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट बन जाता है। साथियों, जिंदगी को अगर हम एक जर्नी की तरह देखें ना, तो हर इंसान एक सफर पर है। इस सफर में कभी हम खुश होते हैं, कभी कंफ्यूज्ड, कभी एक्साइटेड, कभी थके हुए। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स हमें शॉर्ट टर्म खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते। लेकिन पेशेंस वो चीज है जो इस जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। ये सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि पूरे सफर को वैल्यूएबल बनाता है। जब आप सबर सीख लेते हैं ना, तो आप सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस नहीं करते बल्कि हर स्टेप को समझने लगते हैं। आपको ये एहसास होता है कि हर डिले का अपना एक रीजन होता है, हर रुकावट का अपना लेसन होता है और हर मुश्किल का अपना हिडन ग्रोथ का चांस होता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता तब हम कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, तो शायद वो डिले हमें किसी बिगर प्रॉब्लम से बचा रहा होता है या हमें किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। पेशेंस हमें ये सिखाता है कि लाइफ को सिर्फ अपनी स्पीड से नहीं बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी देखना चाहिए। जब बच्चे पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। अगर किसी एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए, तो वो टूटते नहीं है बल्कि सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव करना है। अगर कोई किसी फ्रेंडशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते बल्कि कामली बात करते हैं, सिचुएशन का सलूशन ढूंढते हैं। यही एग्जैक्टली सबर उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये भी समझना जरूरी है साथियों कि पेशेंस सिर्फ वेटिंग का नाम नहीं है बल्कि मीनिंगफुल वेटिंग का नाम है। जब आप वेट कर रहे होते हैं ना, तो आप खाली नहीं होते, आप डिवेलप कर रहे होते हैं। आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप हो रहा होता है, आपका कैरेक्टर ग्रो कर रहा होता है, आपकी थिंकिंग मैच्योर हो रही होती है। पेशेंस हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, और वो है एम्पैथी। जब आप खुद वेट करते हैं, जब आप खुद स्ट्रगल करते हैं, जब आप खुद किसी डिले या डिफिकल्टी को फेस करते हैं ना, तो आप दूसरों के इमोशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये समझ आता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। शायद जो बंदा आपको रूड लग रहा है, वो किसी स्ट्रेस में हो। शायद जो दोस्त रिप्लाई नहीं कर रहा, वो किसी टेंशन में हो। शायद जो क्लास में क्वाइटली बैठा है, वो अपनी इंटरनल फाइट्स लीड कर रहा है। पेशेंस आपके अंदर एक सॉफ्टनेस पैदा करती है, एक कंपैशन, एक अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। और जब ये एम्पैथी डेवलप हो जाती है, तो आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। आप ज्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं, आप ज्यादा फॉरगिविंग हो जाते हैं, आप ज्यादा काम हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि उन्हें हैंडल करते हैं अच्छे तरीके से। ये है वो माइंडसेट जो एक पीसफुल पर्सनालिटी बनाता है। देखिए, पेशेंस आपको सिखाता है कि लाइफ को कंट्रोल करना जरूरी नहीं बल्कि लाइफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब आप कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट सीख लेते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। आप हर चीज को पैनिक के बजाय पेशेंस से देखते हैं। अगर हर चीज इंस्टेंटली मिल जाए ना साथियों, तो जरा सोचिए क्या हम उसकी वैल्यू समझ पाएंगे? शायद कभी नहीं। वेटिंग ही वो चीज है जो एप्रिसिएशन को जन्म देती है। जब आप किसी चीज के लिए वेट करते हैं ना, और फिर वो जब मिलती है, तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। और ये ही है लाइफ का बैलेंस्ड साइकिल। पेशेंस

0: ये भी सिखाता है कि हर चीज का एक वक्त होता है, ना पहले ना बाद में, बल्कि एग्जैक्टली उस वक्त जब हमारे लिए वो बेस्ट होती है। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारा दिल ज्यादा पीसफुल हो जाता है। पेशेंस एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है साथियों, ये लाउडली नहीं बोलती लेकिन साइलेंटली आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करती है। ये आपको ग्राउंडेड रखती है जब दुनिया फास्ट हो, ये आपको स्टेबल रखती है जब सिचुएशंस अनसर्टेन हो, ये आपको होपफुल रखती है जब सब कुछ अनक्लियर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, पेशेंस आपको अल्लाह ताला के प्लान पर ट्रस्ट करना सिखाता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर डिले के पीछे कोई हिकमत होती है, तो आप कंप्लेन करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं और शुक्र अदा करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो भाई साथियों, पेशेंस को अपनी लाइफ की लाइट बनाएं, एक ऐसी लाइट जो आपको हर सिचुएशन में गाइड करे, चाहे रास्ता क्लियर हो या ना हो। क्योंकि जो इंसान सबर के साथ चलता है ना, वो कभी भी डायरेक्शन नहीं खोता। याद रखिए, पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं बल्कि वेट को विजडम में बदलना है। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि सबर सिर्फ इंतजार करना नहीं होता बल्कि एक ऐसी स्किल होती है जो दिल को स्ट्रांग बनाती है, एक ऐसी खूबी है जो इंसान का किरदार रोशन करती है, और एक ऐसी रोशन ताकत है जो हमें मुश्किल वक्त में गिरने नहीं देती। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि सबर करने वालों के साथ अल्लाह ताला का खास इनाम होता है। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं बल्कि एक प्रॉमिस है। जब हम सबर सीखते हैं तो हम सिर्फ जिंदगी को हैंडल नहीं करते बल्कि उसे समझना भी सीखते हैं। हम इमोशनल तौर पर स्ट्रांग होते हैं, हम ज्यादा काम सोचने लगते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अल्लाह ताला के प्लान पर पूरा पूरा ट्रस्ट होता है। साथियों, सबर कोई एकदम से डेवलप होने वाली स्किल नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। जब आप वेट करते हुए गुस्सा नहीं होते, जब आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, जब आप हर काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो ये सब मिलकर आपके अंदर पेशेंस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है और ये फाउंडेशन आपकी पूरी जिंदगी को स्टेबल बनाती है। याद रखिए, हर एफर्ट का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता लेकिन हर एफर्ट का एक मीनिंगफुल रिजल्ट जरूर होता है। जब आप मेहनत करते हैं, चाहे रिजल्ट फौरन मिले या ना मिले, तो आप असल में अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे होते हैं और ये वो चीज है जो आपको बाद में लाइफ के हर चैलेंज में सपोर्ट करती है। पेशेंस आपकी लाइफ में एक रोशनी बन जाती है, एक ऐसी लाइट जो आपको सही डिसीजंस में मदद करती है, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाती है और आपको एक बैलेंस्ड इंसान बनाती है। और जब ये लाइट आपके अंदर आ जाती है ना, तो फिर आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो साथियों, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को और हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत। याद रखिए, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल क्या ही रखेगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: अगर कभी ऐसा महसूस हो कि आप थक चुके हैं और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह सुभान व तआला के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करें। हमारे पहले हाथ इस बात का सबूत हैं कि हम सब रब्बे कायनात के मोहताज हैं और हमारा रब तो दिलों का हाल जानता है और वो खामोशियों को भी सुन लेता है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम और रहमत का साया आप पर हमेशा कायम रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।

भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। अरे भाई यही तो सच्चा ईमान है। फिर कैसी शिफा? शिफा अन ला युगादिरु सकमा, ऐसी शिफा दे दे जो कोई बीमारी बाकी ना छोड़े। क्या खूबसूरत दुआ है मेरे दोस्तों। मुकम्मल शिफा, मुकम्मल सुकून, मुकम्मल राहत की बात आई है। जिस तरह बच्चों शिफा अल्लाह के हाथ में है, जब भी आप बीमार हो ये दुआ पढ़ो, दिल से अल्लाह को पुकारो, उम्मीद रखो। कौन सी दुआ पढ़नी है? اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما। तो ये दुआ दरअसल सामिन कराम आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की दुआएं की हैं, और ये हदीस बुखारी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीखा कि शिफा अल्लाह देते हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल ज़रूर बनता है, और वो ये कि अगर शिफा अल्लाह देते हैं तो क्या हमें दवा नहीं लेनी चाहिए? कॉमन सा एक सवाल है, यानी काफ़ी यानी मशहूर एक सवाल है कि शिफा अगर अल्लाह के हाथ में है तो हम दवा क्यों लें? इस्लाम हमें क्या बताता है, ये ज़रा आपको समझना है। इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है, एक तरफ भरोसा भी हो, कोशिश भी हो, इरादे भी हो। देखें, यानी आप अकल को भी काम में लगाएं, साथ साथ जो है ना अल्लाह पर भरोसा भी करें हर चीज़ में। साइंस में भी अगर हम कुछ यानी साइंस की बातें कर रहे हैं, तो कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, पहली बात तो ये है कि आपको अल्लाह पर भरोसा करना है कि अल्लाह ही ने ये सब कुछ बनाए हैं, और इसके पीछे जो है ना अल्लाह ही की हुकूमत है, उसी की हुक्मरानी है, उसी की ताकत है, उसी का कब्ज़ा है। लेकिन हाँ, हम जब छानबीन कर रहे हैं तो ये हम अपने अकल को यानी इधर जो है ना काफ़ी मुख्तलिफ स्टडीज़ वगैरह जो भी होती हैं, अल्लाह की इन नेमतों को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तवाज़ुन सिखाया है, हमें बताया है कि भाई इलाज भी करो, दवा भी लो, सेहत का ख्याल रखो। हाँ, लेकिन ये दुआ भी काफ़ी अहम है, आपने दुआ भी करनी है साथ साथ हर वक्त। इसी वजह से ज़िक्रुल्लाह की अहमियत आई है, हर वक्त जो है ना ज़बान को तरोताज़ा रखना ज़िक्रुल्लाह से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, इन अल्लाह लम युन्ज़िल दाअन इल्ला अन्ज़ल लहु दवाअन आलिमहु मन आलिमहु व जहिलहु मन जहिलह इल्ला साम क़ालू या रसूल अल्लाह मा साम क़ाला अल मौत। कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी मौजूद है, यही इस हदीस का खुलासा। जो जानने वाला है वो जानता है इसका क्या इलाज है, जो नहीं जानता वो तो जाहिल है। लेकिन एक वो जहर है जिसका कोई इलाज नहीं, वो क्या है? वो मौत है, मौत का कोई इलाज नहीं। तो इस तरह सामने किराम अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं भेजी मगर उसका इलाज भी रखा है, यह है इस हदीस का खुलासा। मौत के सिवा, और मौत का तो कोई इलाज नहीं, और मौत तो हतमी है, हयात और मौत यही है इस ज़िंदगी का खुलासा। कोई आता है, कोई जाता है, तो मतलब ये है कि भाई हमें मायूस नहीं होना, हमें तलाश करना है, हमें इलाज करना है, और साथ साथ दुआएं भी करनी है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। तो ये बात डॉक्टर जो हजरात जो भी हैं उनके लिए भी हौसला है कि भाई हम अपनी दवाएं जो है ना प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, या फिर कोई साइंटिफिक अपने साइंस का कोई ख़ास उसूल बता रहा हो, तो दरअसल यानी आप जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या कोई उसूल बता रहे हैं, आपको जो है ना अल्लाह पर भरोसा रखना है, और ये समझना है कि ये जो भी आपके इंकशाफात हैं ये सब वसाइल हैं, ये हतमी नताइज नहीं। अल्लाह सुभान व तआला के इरादे ही से किसी को शिफा मिलता है। अल्लाह ताला अगर चाहते हैं किसी को शिफा दे तो शिफा मिलती है। तो इसी तरह सामिन कराम, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ना, क्या हम ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह खिलाएंगे हम नहीं खाएंगे? ऐसी बात तो नहीं। तो इस तरह जब हम बीमार होते हैं तो दवा लेते हैं, लेकिन सिर्फ दिल में नहीं, अमली तौर पर भी इस जो यकीन है इसका ये नुमाया होनी चाहिए कि भाई शिफा अल्लाह देंगे।
عملی طور پر یقین کا ثبوت یہی ہے کہ

0: विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए आ रहा है शो करियर कैंपस सीजन टू, जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे।
1: हेलो एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। इट्स अ सीजन टू। Well, today we are at TNG and it's an honor and privilege to connect with the headmistress of TNG Vakra Primary and Secondary School, Miss Asma Asim. We would love to welcome you. How are you doing?
2: Thank you so much, Ms. Tasia. Thank you so much. It's always a pleasure when our students interact with you. This is my first time, but my students, like before this, they have come in your on your show and they have done wonderful job. I must say that your efforts in bringing in students, giving them the platform where they can ask thinking questions and difficult questions, I would say that is worth praising. So thank you so much for coming here, and I hope that we come to a conclusion, or we just give

0: अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: लिसनर्स, हमारे फूड हमारे पाओं की जो सेहत है और रोज़ाना देखभाल के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे पाँव हमें चलने दौड़ने और डेली जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें मदद देती हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हम किस तरह से चल सकते हैं, यानी अपने पाँव की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चलना तो है ही, तो उसके लिए फिर कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, ब्रीदेबल सॉक्स आप देखिए, और इसी तरह से बहुत हाई हील जो हैं और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप उसे ना पहनिए, और जो अगर आपके पुराने शूज़ हैं ठीक नहीं आपसे चला जा रहा है या आपको वो डिसकम्फर्ट कर रही हैं तो आप उन्हें बदल दीजिए। और इसी तरह से जो अपने पाँव हैं उनकी जो डेली फूड हाइजीन है उसकी तरफ हमें ज़रूर तवज्जो देनी है, उसे वॉश करना है अपने जो पाँव हैं और उन्हें ड्राई करना है मुकम्मल तौर पर, इसी तरह नेल ट्रिमिंग करनी है, मॉइस्चराइज करना है टू प्रिवेंट द क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो इससे प्रिवेंट भी होंगी, और मतलब आप फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत आम है पाँव में हो जाती हैं तो उससे हम दूर रह सकते हैं, और अगर खासा कोई डायबिटिक है तो फिर उसके लिए बहुत स्पेशल केयर ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका सही नहीं है तो उससे जो हमारे पाँव की सेहत है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह से अगर कोई छोटा भी ज़ख्म है तो उसे चेक कीजिए, देखिए कि आपके पाँव के ऊपर कोई रेडनेस तो नहीं है या कहीं कोई सूजन कोई स्वेलिंग तो नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से आप रुजू कीजिए, और रेगुलरली अगर आप अपने पाँव चेक करवाते रहें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरह से जो एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि अपने पाँव को स्ट्रेंथन करने के लिए टो कर्ल्स हैं, एंकल रोटेशन हैं, और इसी तरह से जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं उनके ऊपर अगर आप नंगे पाँव चलते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज है, इससे सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है, और फिर बैलेंस जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं कॉर्न्स हो जाते हैं उनकी तरफ आपने ज़रूर तवज्जो देनी है, और जो टाइट शूज़ हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, और रोज़ या रोज़ाना की बुनियाद पर चेक ज़रूर कीजिए अपने पाँव को, और इसी तरह से अगर कोई भी मसला नज़र आता है कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। सेहतमंद पाँव रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी होती है और मोबिलिटी जो है वो होती है, रोज़ाना छोटे इकदाम से पाँव मजबूत और महफूज रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107.
3: FM 107.
2: Dil se desi.
4: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. दोस्तों आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फॉर द सॉलिड रीजन क्योंकि आज हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे वाले इंसान को। मेरा मतलब है कि आज का जो टॉपिक है वो है क्या एक अच्छा इंसान अपने एक्शन से पहचाना जाता है या फिर अपने इंटेंशन से पहचाना जाता है। देखिए सवाल अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। ये सवाल इंसानी जिंदगी का सबसे पुराना और गहरा सवाल भी है। क्या एक अच्छा इंसान वो होता है जिसके इरादे साफ हों या वो जिसके अमल दूसरों के लिए अच्छाई लेकर

0: ये कहते हुए सुना है कि नियत साफ होनी चाहिए, और कभी ये भी सुना है कि जी आपका काम ही बोलता है। अब हकीकत ये है कि दोनों अपनी जगह अहम है, मगर इंसानी सोसाइटी में इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही नाजुक और गहरा है। इंसान अपनी जिंदगी का हर कदम किसी न किसी नियत के साथ उठाता है। इंटेंशंस हमारे दिल और जहन में जन्म लेते हैं। जब कोई मदद का इरादा करता है, जब कोई सच बोलने का फैसला करता है, जब कोई नुकसान ना पहुंचाने का सोचता है, ये सब नियत के अमाल है। बगैर अच्छी नियत के कोई अच्छा काम सस्टेन्ड हो ही नहीं सकता। अगर नियत में ही खुदगर्जी, शोहरत या फायदा छुपा हो, तो अच्छा लगने वाला अमल भी धीरे धीरे अपनी असल शक्ल दिखा देता है। लेकिन यहाँ एक और सच भी है, और वो सच है कि सोसाइटी आपकी नियत तो नहीं देखती, उसे आपका सिर्फ और सिर्फ अमल नजर आता है। दुनिया हमारे दिल का हाल नहीं जानती, बल्कि हमारा रवैया हमारे फैसलों और एक्शंस के जरिए हमें जज करती है। अगर कोई शख्स ये कहे कि उसकी नियत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अमल से दूसरों को नुकसान पहुंचा, तो उसकी ऐसी नियत का क्या फायदा? इसलिए कहा जाता है कि गुड इंटेंशंस विदाउट राइट एक्शंस आर इनकम्प्लीट। एक मिसाल सोचिए, अगर कोई शख्स कहता है कि वो गरीबों के लिए दिल में दर्द रखता है, मगर कभी प्रैक्टिकल जिंदगी में किसी की मदद नहीं करता, तो क्या उसे अच्छा इंसान कहा जा सकता है? इसी तरह अगर कोई शख्स मदद करता है सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, और उसका अमल फायदा पहुंचाता है, मगर उसकी नियत सवाल के दायरे में आ जाती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि इंसान अच्छाई का मेयार जो तय कर रहा है, क्या वो मेयार वाकई होना चाहिए? देखिए, असल में अच्छा इंसान बनना एक बैलेंस का नाम है, नियत और अमल के दरमियान। नियत कदम की बुनियाद है और अमल उस कदम का असर। अगर नियत अच्छी हो और अमल गलत हो जाए, तो भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इसी तरह अगर अमल ठीक हो लेकिन नियत सिर्फ फायदे पर मबनी हो, तो वो अमल अपनी रूह खो देता है। जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं मेरा इरादा गलत नहीं था, माई इंटेंशंस वर क्लियर या माई इंटेंशंस वर गुड। ये जुमला अक्सर अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के लिए बोला जाता है, मगर मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी नियत के साथ साथ अपने एक्शंस का भी जायजा लें। अगर हमारे अमल से किसी को दुख पहुंचा, तो सिर्फ नियत का सहारा लेना काफी नहीं होता। अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती तस्लीम करे और उसे ठीक करने की कोशिश करे। मजहब, एथिक्स और फिलॉसफी, ये तमाम इस बात पर इत्तेफाक रखती हैं, नियत और अमल को अलग नहीं किया जा सकता। दिल का साफ होना जरूरी है, लेकिन हाथ का साफ होना भी उतना जरूरी है। इंसानी रिश्ते एक्शंस पर कायम होते हैं। एक अच्छा लफ्ज, एक मदद का कदम, एक ईमानदार फैसला, ये छोटी छोटी चीजें ही किसी को अच्छा या बुरा इंसान बनाती हैं। आज के दौर में जब दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, सोशल मीडिया और पब्लिक इमेज का प्रेशर है, उस वक्त अक्सर लोग अच्छा दिखने पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, अच्छा होने पर कम। यहाँ नियत भी कंफ्यूज हो जाती है और अमल भी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से ईमानदारी के साथ ये सवाल पूछें, क्या मेरी नियत भी ठीक है और मेरा अमल भी? आखिरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अच्छा इंसान सिर्फ नियत से नहीं, बल्कि अमल से भी नहीं, बल्कि दोनों के साथ मिलकर बनता है। नियत रास्ता दिखाती है और अमल उस रास्ते पर चलने का सबूत देता है। जो शख्स अच्छा सोचता है और अच्छा करता है, वही वाकई एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कहलाने के काबिल है। अच्छाई सिर्फ दिल में महसूस करने का नाम नहीं है, अच्छाई जिंदगी में जी कर दिखाने का नाम भी है। चलिए, आज के लिए मुझे लगता है बस यहीं पर इतना ही। एक और नए सेगमेंट में, एक और नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नाज़िया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: Yeah, here we go again. Authentic, original and better than our

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की

0: 107 पर वेक अप वेक अप
1: एक्सक्यूज मी
2: अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है
3: उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा
3: वैसे वो तो देखो
2: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है
3: एक मिनट रुको ना मिलेगी पूरी जानकारी मिलेगी FM 107 पे प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल ट्रेडिशन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10

0: बजे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 दिल से देसी

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक मशहूर इंडियन क्रिकेटर के बारे में। जी हां, मशहूर तो थे वो, लेकिन एक वाकया ने शायद उन्हें विलन भी बना दिया था। चेतन शर्मा, इंडिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर जो 1980 की दहाई में अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए मशहूर हुए। दोस्तों, उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में इसलिए हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली दफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री का हैट्रिक हासिल किया, एंड दैट वाज इन नागपुर 1987 में। चेतन शर्मा बिकेम द फर्स्ट बॉलर, जी हाँ, पहली मर्तबा किसी बॉलर ने वर्ल्ड कप की तारीख में हैट्रिक लिया था, एंड दैट वॉज चेतन शर्मा। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था जहां उन्होंने लगातार 3 विकेट लेकर दुनिया को हैरान कर दिया था, एंड ऑल 3 वर क्लीन बोल्ड। लेकिन उनके करियर का एक दूसरा पहलू भी है जो फैंस कभी नहीं भूल

चलते। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई के इस फाइनल में आखिरी बॉल पर जावेद मियांदा ने उनके फुल टॉस पर एक जोरदार सिक्स मारकर मैच पाकिस्तान के लिए जीत लिया था। और ये लम्हा क्रिकेट की तारीख के सबसे ड्रामेटिक फिनिशेस में से एक माना जाता है, आज भी लोग इसे याद करते हैं। चेतन शर्मा ने इंडिया के लिए कई अहम मैचेस खेले और अपनी स्विंग और कंट्रोल से बल्लेबाज को परेशान भी किया। उनकी बॉलिंग में एग्रेशन और जज्बा नजर आता था। बाद में वो सेलेक्टर भी बने और इंडियन क्रिकेट में अपना किरदार जारी रखा। एक बात और भी यहाँ पे बता दूं, एक सेंचुरी भी है उनके नाम और अगेंस्ट इंग्लैंड इन ओडीआई क्रिकेट, और वो भी एज अ फर्स्ट डाउन बैट्समैन। तो चेतन शर्मा ओवरऑल देखा जाए ऑलराउंडर भी, क्या आप कह सकते हैं ऑलराउंडर। और इंग्लैंड में स्पेशली 1986 के दौरे पर जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था 2-0 से, उस सीरीज जीत हुई थी इंडिया के लिए, तो उस सीरीज में चेतन शर्मा अलॉन्ग विद रॉजर बेनी, कपिल देव काफ़ी यू नो अहम साबित हुए थे बिकॉज ऑफ द स्विंग बोलिंग एंड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, जिसको उन्होंने भरपूर एक्सप्लॉयट किया था। तो हाँ, देखा जाता है दोस्तों कि उनकी ज़िंदगी एक यू नो ग्लोरी और हार्ट ब्रेक का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। एक तरफ वर्ल्ड कप हैट्रिक का फ़खर और दूसरी तरफ मियादाद का वो यादगार सिक्स, ये दोनों लम्हे उनकी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।

का इहादा किया। वजारत माहौलियात व मौसमी तब्दीली ने समुंदरी निगरानी और बहरी तहकीक को बेहतर बनाने के लिए एक जदीद खसूसी तहकीकी बोट का इफ्तिताह किया। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने रवां साल 2025 के आगाज़ से अब तक मगरबी किनारे में तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल होने पर मजबूर किया। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया।

वजारत दाखिला ने मैत्राश ऐप पर एक नई सहूलत मुतारफ कराई है, जिसके जरिए लाइफ स्टॉक कैंप या फार्म की एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन, अपडेट या रिन्यू की जा सकती है। ये सर्विस जनरल सर्विस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है और चंद आसान कदम में मुकम्मल हो जाती है। स्टेप बाई स्टेप तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले मैत्राश ऐप ओपन करें और अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएं। मेन मेन्यू से जनरल सर्विस पर क्लिक करें। जनरल सर्विस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद अपडेट या रिन्यू एस्टेब्लिशमेंट सर्विस चूज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद कैटेगरी में से लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म सिलेक्ट करें। जरूरी मालूमात एंटर करें, डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करें और कंफर्म करें। तमाम डेटा कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अप्रूवल का इंतजार करें। अप्रूवल के बाद रिक्वायर्ड फीस पे करें। अप्रूवल और पेमेंट मुकम्मल होने पर अपडेटेड या रिन्यूड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐप के मैत्राश ई वैलेट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, आसान और तेज है। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती और वहीं सर्टिफिकेट सीधा ई वॉलेट में मिल जाता है। ये सर्विस MOI की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज को और बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कानून पर अमल करना जरूरी है। वजारत दाखिला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग शौक से करने वालों को हिदायत दी है कि हिफाजती कानून पर सख्ती से अमल करें, ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी महफूज बनाई जा सके। डाइविंग शुरू करने से पहले तस्दीक शुदा ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है, जो किसी ऑफिशियल और मकबूल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समुंदर और मौसम की सूरत हाल भी चेक करना चाहिए, ताकि नामुनासिब हालात में डाइविंग से परहेज किया जा सके। वजारत ने वाज़े तौर पर कहा है कि अकेले डाइव ना की जाए और ना ही खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग की जाए जो तवज्जो को या होश पर असर डालती हो। समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच करना लाजमी है, ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया VOI लगाएं, ताकि कश्तियां और लोग मुतनब्बे रहें। डाइविंग के दौरान गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हुदूद से दूर रहना जरूरी है। और खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। हिफाजती कानून पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी से उठाएं। वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी की जानिब से शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने मिली पोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट की हिफाजती तकरीब में शिरकत की। ये इवेंट मरीना बे सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर सिंगापुर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पब्लिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स के शोबों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स की जानिब से वसी बैनुल अक्वामी शिरकत देखने को मिली। एग्जीबिशन के दौरान मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड सेशंस और पैनल डिस्कशंस का एहतमाम किया गया, जिनमें सिक्योरिटी सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी कॉपरेशन को मजबूत बनाने और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के हवाले से तबसरे और मशावरत शामिल हैं। दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने जमहूरिया सिंगापुर के मुस्लिम अफेयर्स के एक्टिंग मिनिस्टर इंचार्ज और होम अफेयर्स के सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहम्मद फैसल इब्राहिम से मिली पोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट की इफ्तिताह के मौके पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के शोबों में मौजूदा ताबुन का जायजा लिया और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक मशहूर इंडियन क्रिकेटर के बारे में। जी हाँ, मशहूर तो थे वो, लेकिन एक वाकया ने शायद उन्हें विलन भी बना दिया था। चेतन शर्मा, इंडिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर, जो 1980 की दहाई में अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए मशहूर हुए। दोस्तों, उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में इसलिए हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली दफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री का हैट्रिक हासिल किया, एंड दैट वाज इन नागपुर 1987 में। चेतन शर्मा बिकेम द फर्स्ट बॉलर, जी हाँ, पहली मर्तबा किसी बॉलर ने वर्ल्ड कप की तारीख में हैट्रिक लिया था, एंड दैट वाज चेतन शर्मा। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था जहां उन्होंने लगातार 3 विकेट लेकर दुनिया को हैरान कर दिया था, एंड ऑल 3 वर क्लीन बोल्ड्स। लेकिन उनके करियर का एक दूसरा पहलू भी है जो फैंस कभी नहीं भूलते। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप फाइनल 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई के इस फाइनल में आखिरी बॉल पर जावेद मियांदा ने उनके फुल टॉस पर एक जोरदार सिक्स मारकर मैच पाकिस्तान के लिए जीत लिया था, और ये लम्हा क्रिकेट की तारीख के सबसे ड्रामेटिक फिनिशेस में से एक माना जाता है। आज भी लोग इसे याद करते हैं। चेतन शर्मा ने इंडिया के लिए कई अहम मैचेस खेले और अपनी स्विंग और कंट्रोल से बल्लेबाज को परेशान भी किया। उनकी बॉलिंग में एग्रेशन और जज्बा नजर आता था। बाद में वो सेलेक्टर भी बने और इंडियन क्रिकेट में अपना किरदार जारी रखा। एक बात और भी यहाँ पे बता दूं, एक सेंचुरी भी है उनके नाम और अगेंस्ट इंग्लैंड इन ओडीआई क्रिकेट, और वो भी एज अ फर्स्ट डाउन बैट्समैन। तो चेतन शर्मा ओवरऑल देखा जाए ऑलराउंडर भी क्या आप कह सकते हैं, ऑलराउंडर थे। और इंग्लैंड में स्पेशली 1986 के दौरे पर जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था 2-0 से, उस सीरीज की जीत हुई थी इंडिया के लिए, तो उस सीरीज में चेतन शर्मा अलॉन्ग विद रॉजर बेनी, कपिल देव काफ़ी अहम साबित हुए थे बिकॉज ऑफ द स्विंग बोलिंग एंड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, जिसको उन्होंने भरपूर एक्सप्लॉयट किया था। तो हाँ, देखा जाता है दोस्तों कि उनकी ज़िंदगी एक ग्लोरी और हार्ट ब्रेक का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। एक तरफ वर्ल्ड कप हैट्रिक का फ़खर और दूसरी तरफ मियादाद का वो यादगार सिक्स, ये दोनों लम्हे उनकी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी ऐसा लगता है कि लाइफ एक तरह से बिल्कुल सॉर्टेड है पर दूसरी तरफ से पूरी ही उलझी है. काम ठीक चल रहा है पर नींद कंप्लीट नहीं हो रही. फूड कंट्रोल में है पर स्ट्रेस कंट्रोल के बाहर है. सोशल लाइफ एक्टिव है पर मी टाइम एकदम जीरो है. वेल, आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बेसिक के बारे में. सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं. बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं होता कि परफेक्ट टाइम पे आपको उठना है, परफेक्ट डाइट लेना है, परफेक्ट वर्कआउट होना चाहिए. ये सब सिर्फ प्लानर्स और रील्स में ही अच्छा लगता है. रियल लाइफ में बैलेंस का मतलब होता है एडजस्टमेंट. एंड दैट इज कभी काम ज्यादा, कभी रेस्ट ज्यादा, कभी सैलेड ज्यादा, कभी घर का कंफर्ट फूड ज्यादा, कभी हसल ज्यादा और कभी स्लो डाउन होना थोड़ा ज्यादा. प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफ एक ही साइड झुकी हुई हो. अगर सिर्फ काम ही काम है और रेस्ट नहीं तो बॉडी थक जाती है. अगर सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट है और मूवमेंट नहीं तो एनर्जी लो हो जाती है. माइंड और बॉडी दोनों रिदम पर काम करते हैं. जब रिदम बिगड़ती है तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है. और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का बेस होता है तीन सिंपल चीजें, दैट इज मूवमेंट, नरिशमेंट और पॉज. मूवमेंट का मतलब जिम मेंबरशिप भी नहीं है. मूवमेंट का मतलब है बॉडी को दिन में थोड़ा सा हिलाना, दैट इज स्टेयर्स लेना, थोड़ा वॉक करना, स्ट्रेच करना, बस इतना काफी होता है. नरिशमेंट का मतलब अगेन क्रैश डाइट नहीं है. इसका मतलब है ऐसा खाना जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे, ना ही सिर्फ कैलोरीज दे. और पॉज होना मतलब सबसे अंडररेटेड चीज है. पॉज का मतलब है बीच बीच में रुककर सांस लेना. एक बार मेरे साथ सांस लो. अच्छा महसूस कर रहे हो ना? ऐसे क्या करो, फोन को साइड में रख के थोड़ा सा रुक के सांस लो और खुद से पूछो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ. बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये है स्लीप और स्ट्रेस का बैलेंस. अगर आप सोने का टाइम काम के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो और काम का टाइम नींद के हिसाब से नहीं तो इम्बैलेंस शुरू हो चुका है. और स्ट्रेस तब डेंजरस होता है जब वो नॉर्मल लगने लगे, जब इरिटेशन पर्सनालिटी बन जाए, जब थकान डेली कंपेनियन हो, जब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगे. ये सब साइंस होते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ा रीबैलेंस मांग रही है. बैलेंस लाइफस्टाइल का मतलब जिंदगी को स्लो करना नहीं, उसे सस्टेनेबल बनाना है ताकि आप आज भी काम कर पाओ और कल भी थके हुए ना हो. ताकि आप सिर्फ सरवाइव ना करो बल्कि थोड़ा एंजॉय भी करो. ताकि आज का एक जेंटल थॉट, अपनी लाइफ को जज मत कीजिए, बस थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा रहे किस चीज की कमी है, रेस्ट की, मूवमेंट की, कनेक्शन की. जिस चीज की कमी हो वही आपका नेक्स्ट स्टेप है. क्योंकि जब लाइफ

0: लाइफस्टाइल बैलेंस होती है ना, तो हेल्थ को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली फॉलो करता है। और जब हेल्थ साथ होती है तो जिंदगी भी थोड़ी लाइट लगती है, थोड़ी मैनेजेबल और काफी ज्यादा सुकून वाली। इसलिए याद रखिए, बैलेंस्ड परफेक्शन नहीं, बैलेंस अवेयरनेस है, एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.

0: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थियोरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से दिल से
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
4: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊं?
3: आई नो दिस AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
5: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट बेस्ट?
6: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked।
7: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked
8: with RGV
7: एवरी संडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
9: दिल से देसी।
10: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
11: Anytime, anywhere.
12: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now।

0: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
1: फ्रॉड अवेयरनेस। आपको फोन आती है, सर ये बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं, कई सालों से हम इनकी मदद कर रहे हैं, इस मदद में आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं, ऐसे इमोशनल मैसेजेस आपको आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस, मेरा नाम है वीर। फेक एनजीओस, फेक डिजास्टर रिलीफ, फेक क्राउड फंडिंग, स्कैमर्स इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्लड, वॉर, इलनेस, ट्रेजेडी, सब बताते हैं, सब दिखाते हैं, इतना डीप दिखाते हैं कि आप उनके झांसे में फंस के इमोशनल हो जाते हैं और मदद के नाम पे अपने पैसे उन्हें दे देते हैं। तो अगर आपको डोनेशन ही करना है तो डोनेट सिर्फ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स पर करें। इमोशनल प्रेशर अगर कोई बना रहा है, बहुत ज्यादा बोले जा रहा है कि सर अभी मदद कर दीजिए, ये बच्चा भूखा बैठा है, एकदम प्रेशर बना रहा है, वहीं आपको रुक जाना है, संभल जाना है, फोन काट देना है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। QR UPI रैंडम लिंक्स अगर कोई भेज रहा है

0: से हमें बचना है। दोस्तों याद रखिए, मदद दिल से करें पर अकल के साथ।
1: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस, फ्रॉड
2: अवेयरनेस ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. दोस्तों आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी बीमारी की जो मैं कह सकती हूँ एक लाइलाज बीमारी है. और इस बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें जो है फिजिकली हर्ट कर

0: होती है, मेंटली हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं. हम कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जिस पर असर पड़ता है वो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर. आज हम बात करने वाले हैं फिजूल खर्ची की या फिर इम्पल्सिव बाइंग की. है ना, ये एक बीमारी, ये वाकई एक बीमारी है. कुछ लोग जो है वो इतने ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ खरीद लेने पर ही एक सुकून मिलता है. मतलब आई कैन से दैट कि वो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए भी सुना है कि यू नो बाइंग इज सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टू देम, बाइंग इज सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर टू देम. और स्पेशली यहाँ पर प्लीज प्लीज प्लीज फीमेल्स मुझसे नाराज ना हो, मैं खुद भी फीमेल हूँ और मैं भी इस तरह के वर्ड्स अक्सर यूज कर लेती हूँ. तो फीमेल्स जो है वो ज्यादा इस आदत का, इस बीमारी का शिकार है. देखिए आज के दौर में फिजूल खर्ची जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का जाया करना नहीं है बल्कि ये जहनी और जज्बाती मसला भी बन चुका है. हम अक्सर कहते सुनते हैं बस दिल चाहा और हमने खरीद लिया, ऑफर इतनी अच्छी थी कि दिल माना ही नहीं. ये आदत जब बार बार हो और आप अपने आप को रोक ही नहीं पाए तो इसे इम्पल्सिव बाइंग या फिर बगैर सोचे समझे खरीदारी करना कहते हैं. मसला ये है कि हम चीजें खरीदते हैं, चलिए ठीक है ये इतना बड़ा मसला नहीं है. असल मसला ये है कि क्या हम बिना जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान जो है वो फिजूल या इम्पल्सिव बाइंग क्यों करता है और इसके पीछे किस तरह की साइकोलॉजी या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं. देखिए पहले तो हमें समझना जरूरी है कि फिजूल खर्ची है क्या. फिजूल खर्ची का मतलब है ऐसे पैसे खर्च करना जो जरूरी ना हो या जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा ना हो. इम्पल्सिव बाइंग इसकी एक शक्ल है जहां इंसान बिना सोचे बिना कंपेयर करे सिर्फ उस वक्त के जज्बे में आकर चीज खरीद लेता है जो वो खुद को रोक नहीं पाता. बाद में या तो उसे पछतावा होता है या फिर क्रेडिट कार्ड बिल देखकर स्ट्रेस बढ़ जाता है. देखिए इंसानी दिमाग जो है ना वो बहुत जज्बाती होता है. जब हम उदास होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं तो शॉपिंग हमें एक तरीके से टेम्परेरी सुकून या थोड़ा सा अच्छा फील करवाती है और ये फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं रहती. लेकिन हाँ उस वक्त जो है वो दिमाग को लगता है कि इस पेन को कम करने का एक अच्छा तरीका है. इसे साइकोलॉजी में रिटेल थेरेपी भी कहा जाता है, यानी शॉपिंग को एक तरह की थेरेपी माना जाता है. प्रॉब्लम ये है कि जब जज्बा ठंडा होता है, मतलब ये, तो आपका रिग्रेट वाला जो फेज है वो स्टार्ट हो जाता है. देखिए जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामीन. ये वो केमिकल है जो खुशी, एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड का एहसास देता है. इम्पल्सिव बाइंग के वक्त डोपामीन इंस्टेंट रिलीज होता है, इसलिए इंसान को लगता है कि वो बहुत खुश है. लेकिन ये खुशी टेम्परेरी होती है. बार बार दिमाग उस डोपामीन हिट करने की आदत जो है वो डाल लेता है, इसलिए इंसान फिर और ज्यादा शॉपिंग करने लगता है. फिर आज का जो दौर है हमारा वो एड्स और मार्केटिंग कैंपेन्स का भी दौर है. एड्स और मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होते बल्कि इंसान के जहन उसकी फीलिंग्स के साथ भी खेलते हैं. अब जैसे मिसाल के तौर पे लिमिटेड टाइम ऑफर, सिर्फ आज, लास्ट पीस अवेलेबल, ये वर्ड्स आपने और हमने जो है ना बहुत सुने हैं और इसको सुनते ही हमारे दिन में क्या आता है, एक अलग तरह की बेचैनी जिसे कहा जाता है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट. इंसान सोचता है कि अगर अब नहीं खरीदा ना तो बाद में पछताना पड़ेगा. ये प्रेशर इम्पल्सिव डिसीशंस को बढ़ाता है. वही भैया एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको हर कोई घुमा फिरा के ले ही आता है, सारा ब्लेम उस पर डाला ही जाता है, वो है हमारा सोशल मीडिया. तो देखो सोशल मीडिया ऐसे ही उस पर ब्लेम भी नहीं डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रोल वो प्ले कर ही रहा है. सोशल मीडिया पर लोग अपनी बेस्ट लाइफ हमें दिखाते हैं, महंगी शॉपिंग दिखा रहे हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स दिखा रहे हैं, कई बार फैंसी आप गैजेट्स देख रहे हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट सा लग रहा है. लेकिन जब हम लगातार ये चीजें देखते हैं तो हम अपनी लाइफ को उनसे ऑटोमेटिकली ना जाकर भी कंपेयर करने लगते हैं. फिर हमें लगता है कि हम तो पीछे रह गए हैं और इसी कंपैरिजन की वजह से इंसान बिना सोचे समझे खर्च करने लगता है. लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे पास ये ब्रांडेड कपड़े नहीं हुए, देखिए, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि इंपल्सिव बाइंग सिर्फ कम डिसिप्लिन वाले लोग करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि विल पावर भी लिमिटेड होती है। ऐसे लोग ज्यादा इस तरह की बाइंग की तरफ आते हैं। पूरे दिन का स्ट्रेस है, डिसीशंस और टेंशंस के बाद इंसान का जो सेल्फ कंट्रोल है वो कम हो जाता है, और इसीलिए शाम को या रात को इंपल्सिव शॉपिंग ज्यादा की जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है एक फिगर या स्टैट के थ्रू पता चलता है। थका हुआ दिमाग लॉजिकल सोच से ज्यादा इमोशनल डिसीशंस की तरफ बढ़ता है ना। इंसान की स्पेंडिंग की जो हैबिट्स है ना, अक्सर बचपन से भी शेप हो जाती हैं। अगर घर में पैसे पर प्लानिंग नहीं होती थी या बजटिंग नहीं होती थी या पेरेंट्स भी इंपल्सिव खर्चे करते थे, तो बच्चे भी वही पैटर्न सीख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग एक रिवॉर्ड है जो बचपन में दी जाती है। अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो गिफ्ट मिलेगा, और ये आदत फिर आगे चल के परेशानी बन जाती है। कई लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं, वो महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें लगे कि वो भी इम्पोर्टेंट और कामयाब है। ब्रांडेड चीजें पहनकर या फिर लेटेस्ट गैजेट्स पर वो अपनी सेल्फ वर्थ बूस्ट करना चाहते हैं, मगर ये कॉन्फिडेंस बोरोड कॉन्फिडेंस है जो थोड़ी देर के बाद यकीनन खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस आदत से कैसे निकलना है, इसका पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी खरीदारी का ख्याल आए, अपने आप से ये सवाल करें, ये चीज जरूरी है या सिर्फ दिल खुश करने के लिए है। 24 घंटे का रूल अपनाएं। अगर 24 घंटे बाद भी लगे कि जरूरी है, तब डेफिनेटली खरीद लीजिए। वहीं पर शॉपिंग करने से पहले लिस्ट जरूर बनाइए। उससे आपको पता होगा कि किस चीज की आपको जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। अपने जज्बाती हालात को समझना, सीखना, जब भी उदास हो या स्ट्रेस हो, शॉपिंग के बजाय दुआ, वॉक या किसी अच्छे दोस्त से बात करना, इससे आप फिजूल खर्ची से बचेंगे और फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस से भी बचेंगे। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि फिजूल खर्ची कोई छोटी सी आदत तो है नहीं, बल्कि हमारी जज्बाती और जहनी हालात का ही रिफ्लेक्शन है। इंपल्सिव बाइंग सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, बल्कि ना समझी हुई फीलिंग्स और अनमेट जो नीड्स का नतीजा हो सकता है, ये वो है जब हम अपने अंदर के खालीपन, स्ट्रेस और कई बार अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज को समझ लेते हैं, तो खरीदारी खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। याद रखिए, असली सुकून इन चीजों को खरीदने में नहीं है, बल्कि अपने जज्बात और जिंदगी को सही तरीके से समझने में है। पर अभी के लिए आप लोगों से मैं इजाजत लूंगी इस वादे के साथ कि नए और अगले सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: लो बच्चों तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए सब कुछ एक ही शो में तो स्नैक्स ले आइए दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FM 107 पे दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल ये खास शो जिसका नाम है किड्स स्टोरी बच्चों की वो कहानी जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन ये कहानियां हमेशा हमने देखी है कि अच्छी बातों पर ही हुई है लेकिन आज की स्टोरी में कुछ अलग है ये अलग क्यों है सबसे पहले वो बात करते हैं दोस्तों आज की कहानी यानी कि किड्स स्टोरी में अलग ये है कि अक्सर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा जिद ये बहुत बुरी चीज है जिद मत करो लेकिन आज हम इसी जिद के बारे में बात करेंगे कि ये जिद अच्छी क्यों है और इस जिद से हम और आप क्या सीख सकते हैं अक्सर जब भी जिद की बात होती है किसी चीज को पाने की बात होती है तो हम कहते हैं कि बगैर जिद के या बगैर ऐसी बातों के जिसमें जिद झलके उस बात के बगैर चीजों को अपनाना चाहिए या चीजों को लेना चाहिए लेकिन हम बच्चों को अक्सर यही सिखाते हैं बट आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी बच्चों की जिससे बच्चे भी सीखेंगे हम लोग भी सीखेंगे और आपको इस स्टोरी में यानी कि कहानी में मजा भी बहुत आएगा तो चलिए हर हफ्ते की तरह शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को जहां पर हम और आप काफी कुछ जानने और सीखने वाले हैं
0: हेलो बच्चों तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए
1: तो दोस्तों ये कहानी है द वैली वेयर ड्रीम्स लिव्ड एक ऐसी वैली जहां पर सपने जिंदा रहे बहुत दूर सरगोशियां करती पहाड़ियों और हंसने वाली नदियों के पार एक खूबसूरत सी जगह थी जिसे सैफरन वैली कहा जाता था ये वादी 3 चीजों के लिए बेहद मशहूर थी सुनहरे फूल जो धूप जैसी खुशबू देते थे दोस्ताना जानवर जो बात करना पसंद करते थे और बच्चे जो बड़े सपने देखते थे

हर सुबह सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर फैलता और वादी को गर्म नारंगी रोशनी से भर देता। परिंदे अपने सुबह के गीत गाते, बकरियां पहाड़ियों पर खुशी से उछलती और बच्चे अपने एडवेंचर्स को शुरू करने के लिए बाहर दौड़ते, खेलते और खुश रहते। वादी के किनारे के पास एक छोटे से आरामदायक घर में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना के घुंघरेले बाल यानी कि कर्ली हेयर्स थे जो चलने पर छलते थे, रोशन और क्यूरियस आंखें, और उसमें एक बहुत खास बात थी, वो बहुत जिद्दी थी। अब इस जिद के बारे में ही आज हम बात करेंगे। अब जब लोग जिद्दी लफ्ज सुनते हैं दोस्तों, वो कभी कभी समझते हैं कि इसका मतलब कुछ बुरा है, लेकिन मीना की दादी हमेशा कहती थी जिद्दी होना बुरा नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज पर जिद्दी हो। मीना को ये बात बहुत ज्यादा पसंद थी क्योंकि जब मीना किसी चीज पर यकीन करती थी वो कभी हार नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं। मीना का एक बड़ा सपना था। एक शाम मीना अपनी दादी के पास बैठी और वादी के ऊपर चमकते सितारों को देखने लगी और पूछा, दादी क्या आप समझती हैं कि मेरे जैसा कोई कुछ बड़ा बना सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट? दादी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, तुम क्या बनाना चाहती हो? मैंने सैफरन वैली की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ रुख किया। मैं एक स्टार टार बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा टार जो इतना ऊंचा हो कि वादी का हर शख्स सितारों को साफ देख सके, एक जगह जहां बच्चे आकर सपने देख सके। दादी ने अपनी आईब्रो उठाई, ये बहुत बड़ा सपना है, ऐसा दादी ने कहा। मीना ने सर हिलाया, मुझे पता है दादी, और ये बहुत मुश्किल भी है, मुझे ये भी पता है दादी, और लोग कह सकते हैं कि ये नामुमकिन भी है। मीना ने अपने बाजू बांध कर ये बात कही, और फिर मैं फिर भी ये काम करना चाहती हूँ दादी। दादी और ज्यादा मुस्कुराई, फिर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होगी। वो क्या? पॉजिटिव जिद, यानी कि एक ऐसी सकारात्मक जिद, ऐसी पॉजिटिव जिद जिससे तुम्हारा काम मुकम्मल हो सके, ऐसा दादी ने कहा। इस बार मीना मुस्कुराई, मेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा जिद है। इन दोनों की कॉन्वर्जेशन यहां पर खत्म हुई। तार बनाने का पहला दिन शुरू हुआ। अगली सुबह मीना ने अपने बैग पैक किए एक छोटा सा हथौड़ा, एक नोटबुक, एक पेंसिल, एक बॉटल लेमनेट की, दो पीनट बटर सैंडविचेस। वो सीधा ऊंची पहाड़ी की तरफ चली। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बेस्ट दोस्त रफी रैबिट से हुई। तुम कहाँ जा रही हो? ये पूछा रफी रैबिट ने अपनी नाक खिलाते हुए। मैं स्टार टार बनाने जा रही हूँ, रफी ने आंखें चिपकाई और कहा। आज? उसने कहा। हाँ, अकेले? बिल्कुल। रफी ने अपना कान खुजाया, ये लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। मीना ने इत्मीनान से मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है। रफी ने थोड़ी देर सोचा, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मीना ने खुशी से सर हिलाया, बिल्कुल, क्यों नहीं। और इसी तरह स्टार टार का सफर शुरू हो गया। पहली मुश्किल मीना के सामने आई जब मीना और रफी पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई ईंट का पत्थर या ईंट नहीं था, कोई लकड़ी नहीं थी, कोई टूल्स नहीं थे, सिर्फ घास, पत्थर और ठंडी हवा थी। रफी ने सांस भरी। हम कुछ नहीं बना सकते? मीना ने सर हिला दिया। नहीं, हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास सामान नहीं है। मीना ने एक छोटा पत्थर उठाया। हम छोटा शुरू करते हैं। उसने पत्थर जमीन पर रखा, फिर एक और ढूंढा और एक और। रफी देखता रहा, फिर उसने भी एक पत्थर उठा ही लिया। जल्दी ही उन्होंने छोटा सा पत्थरों का दायरा बना लिया। ये ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत जरूर थी। अब एक हंसने वाले कौवे की बात। जब वो काम कर रहे थे तो एक कौवा नीचे आया। तुम लोग क्या कर रहे हो? स्टार टार बना रहे हैं, मीना ने जवाब दिया। कौवा जोर जोर से हंसने लगा। पत्थरों से? इससे बहुत वक्त लगेगा, मीना काम करती रही। तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे इसे? मीना फिर भी काम करती रही।

0: तुम बहुत छोटी हो अभी। मीना काम करती रही। आखिर रफी ने पूछा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मीना मुस्कुराई, मैं जिद्दी हूं। दोस्तों धीरे धीरे वो काम करने लगे थे और अब दिन बदल रहा था, हवा वाला दिन। अगला दिन मीना वापस उसी जगह पे आई जहां पर उन्होंने पत्थर का दायरा बनाया। रात को तेज हवा ने उनके पत्थर बिखेर दिए थे। रफी उदास हो गया, हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मीना ने सर हिलाया और कहा, हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा काम है, मुझे पता है, लेकिन हमें जिद से लगे रहना होगा। रफी ने पूछा, क्या तुम थक नहीं गई? मीना ने पहला पत्थर उठाया और कहा, हाँ थोड़ी थक तो गई हूँ, फिर क्यों जारी रखती हो? मीना मुस्कुराई, क्योंकि मैं टार को छोड़ने से ज्यादा चाहती हूँ। रफी हंस दिया, यह जिद है। मीना बोली, पॉजिटिव जिद। और दोस्त ऐसे ही ऐसे जुड़ते रहे। जल्दी ही और जानवर भी आने लगे। वहां पर एक लैम जिसका नाम लूना था वो भी आई और उसने कहा, क्या मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ? दोनों ने कहा, हाँ क्यों नहीं। धीरे से एक और जानवर यानी कि बीवर आया, मुझे कंस्ट्रक्शन पसंद है, ज्वाइन करूं? फिर उसके बाद टर्टल आया, मैं धीरे हूं लेकिन रुकता नहीं, परफेक्ट, तुम भी जुड़ जाओ। अब टीम बड़ी हो गई थी और टावर भी धीरे धीरे शेप लेने लगा था। फिर बारिश का तूफान, एक दिन काले बादल आ गए, बिजली तेज चमकी, बारिश हुई, टार हिलने लगा। ये तो गिर जाएगा, बहुत तेज हवा चल रही है। और फिर वो गिर गया, तेज धड़ाम की आवाज आई, सब मीना को देखने लगे। मीना ने गहरी सांस ली, कोई बात नहीं, हम कल फिर शुरू करेंगे, ऐसा मीना ने कहा। और अब अगला दिन, अगली सुबह कुछ दोस्त बोले, शायद हमें रोक देना चाहिए। मीना बोली, हर बड़ी चीज वक्त लेती है, लोगों ने कहा अगर हम फेल हो गए। मीना मुस्कुराई, फिर हम सीखेंगे। शाम को एक समझदार उल्लू आया, मैं तुम लोग को दूर से देख रहा था, ऐसा उसने कहा। मीना ने पूछा, क्या ये बेवकूफी है? नहीं ये हिम्मत है, ऐसा उल्लू ने कहा। फिर गिरता क्यों है ये? फिर मीना ने पूछा, इसे मजबूत बनाओ, कैसे? प्लान करो, मेजर करो और सीखो। मीना खुश हो गई, मैं नया डिजाइन बनाऊंगी, उल्लू बोला, ये समझदार जिद है। और फिर नया प्लान, मीना ने नोटबुक निकाली और बनाया वाइड बेस, स्ट्रॉन्ग लेयर्स, वुडन सपोर्ट। बोबो बोला, ये स्मार्ट है। और टर्टल बोला, वक्त लगेगा। मीना मुस्कुराई, मैं इतनी जिद्दी हूं कि ये काम करके रहूंगी। धीरे लेकिन मजबूत काम धीरे धीरे शुरू हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, तार धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन इस दफा वो खड़ा रहा। गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया, बच्चे देखने के लिए आए, कुछ लोग पत्थर उठाने में मदद करने लगे और दूसरे स्नैक्स लेकर भी आ गए। अब इस जगह कई लोग मदद करने के लिए आ गए थे। मीना खुश थी, टावर शेप ले रहा था और साथ ही साथ सब साथ में उठते और बैठते और फिर दोबारा काम पे लगते। ये प्रोजेक्ट पूरी वादी की पसंदीदा कहानी बन गई। और फिर बड़ा नुकसान, एक शाम पहाड़ी से घूमता हुआ एक बड़ा पत्थर टार के एक हिस्से से टकरा गया, उसका आधा हिस्सा टूट गया। सब हैरान हुए, लेकिन सबने इसी हैरानी के बीच एक ठंडी सांस ली। रफी ने धीरे से कहा, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मीना ने टूटे हुए टार को देखा और वो चुप रही, उसका दिल टूट गया था क्योंकि इस बार टार लंबा शेप ले रहा था। फिर उसने एक पत्थर उठाया, मैं अभी हार नहीं मानूंगी, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं। और फिर स्टेज आता है वादी की मदद। मीना को कंटिन्यू करते देखकर और लोग भी जुड़ गए, उन्होंने हिम्मत बांधी। किसान लकड़ी लेकर आए, बिल्डर्स ने टूल्स शेयर किए, बच्चे छोटे पत्थर उठाने लगे, दादी लेमनेड लेकर आ गई। टावर और ऊंचा होता गया और ऊंचा होता गया और ऊंचा होता गया। सिर्फ मीना की जिद से पूरे वादी के लोगों ने उस टार में अपनी मेहनत, खून पसीना सब झोंक दिया था। कौवा वापस आया, याद है ये कौन सा कौवा था? ये वही था जो मीना के ऊपर हंस रहा था, ये वही था जो कार को बनाने के लिए मना कर रहा था, ये वो कौवा था जिसने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, ये वो कौवा था जिसने कहा कि तुम नहीं कर पाओगी मीना। हंसने वाला कौवा जब वापस आया, तुम अभी भी बना रही हो? मीना ने सर हिलाया। तुम बहुत जिद्दी हो, मीना ने कहा। बिल्कुल। कौवे ने अपना सर झुकाया। क्या मैं मदद कर सकता हूं? मीना ने मुस्कुराया और कहा बिल्कुल। आखिरी कोशिश। कई हफ्तों के बाद, पूरी वादियों के मदद के बाद, टावर वादी से बहुत ऊंचा हो गया। सब लोग इकट्ठा हो गए। बस थोड़ा और, रफी बोला। मीना ने आखिरी पत्थर रखा। खामोशी छा गई। टावर सीधा और मजबूत खड़ा था, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और सब ने जोर से चीयर किया। लेकिन उस टावर को बनाने के बाद पहली रात क्या हुआ, इस पहली रात को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं FM 107 पे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मीना के एक ऐसे टार की जिस टार को बनाने के लिए कई दिन लगे, और मीना ने कई लोगों को इकट्ठा करा। कई लोगों ने मीना से कहा कि ये टावर बनाना बेहद मुश्किल है, प्लीज इस काम को यहीं रोक दो। लेकिन मीना अपने जिद पर अड़ी रही। इसीलिए आज की कहानी है जिद पर। लेकिन ये जिद हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जिद हमेशा हमें सिखाते रहना चाहिए, ये जिद वो जिद है जिससे हमारे अंदर की कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा चिंगारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी पे हम मजीद बात करेंगे, और टावर बनने के बाद पहली रात में क्या कुछ हुआ इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से, विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, मैं हूं फजील और आप सुन रहे हैं ये खास शो जिसका नाम है किड स्टोरी। ये कहानी जो वैली यानी कि वादी में एक लड़की ने सपना देखा था एक ऊंचा टावर बनाने का। इस टावर को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये मेहनत वो कर सकती है, यानी कि वादी में रहने वाली लड़की मीना वो ये मेहनत कर सकती है क्योंकि वो जिद्दी है। और उसकी दादी ने कहा था, जिद कोई बुरी चीज नहीं है, बस वो जिद अगर अच्छी हो और वो जिद किस चीज के लिए है ये मायने रखती है। और मीना का ये जो बड़ा सपना था, वो सपना अगले ही दिन शुरू हो जाता है, जहां पर उसको रास्ते में एक दोस्त उसका मिलता है, और फिर वो रैबिट साथ में काम कराता है। उस वादी में कई परेशानियां आती हैं, तेज तूफान, बारिश, और कभी वो पत्थर गिर जाना। लेकिन फिर टर्टल ने और उल्लू ने उस मीना को अक्ल दी, उस मीना को बताया कि कैसे एक टावर को मजबूत बनाया जा सकता है। लकड़ी का बेस, मजबूत पत्थर, और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने टावर बनाना शुरू करा। लेकिन एक परेशानी तब आई जब टावर अपना रूप यानी कि शक्ल लेने लगा था। ऊंचे पहाड़ से गिरता हुआ एक पत्थर टावर के एक हिस्से से टकरा गया और उनकी सारी मेहनत खराब होने लगी। जितने दोस्त उसके साथ जुड़े थे वो निराश हो गए। लेकिन फिर उसकी जिद यानी कि मीना की जिद वापस शुरू हुई, और इस बार ये मेहनत करते हुए वादी के लोगों ने देखा, और अब उसके दोस्तों के साथ साथ वादी के लोग भी साथ आ गए, और उन्होंने भी मीना की तरह जिद करा कि ये टावर हम बना के रहेंगे। और शुरुआत में जब वो यानी कि मीना टावर बना रही थी, तो एक हंसने वाला कौवा आया था जिसने मीना के इस प्रोजेक्ट पे, या कहें मीना के इस जिद पे कि उसे वादी पे टावर बनाना है, तो उस पर बहुत हंसा था। लेकिन जब ये लोग यानी कि वादी के लोग वापस आके मीना की मदद करने लगे तो वो

हुआ वापस आया और उसने आधे बनाए हुए टावर की बहुत तारीफ की। तो दोस्तों ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर वो टावर बन जाता है। बारिश और तूफान के बीच वो टावर खड़ा रहता है, मजबूत रहता है, नुकसान होता है, लेकिन वादी की मदद से वो एक बार फिर से बन जाता है। और अब टावर बनने के बाद पहली रात, उस रात बच्चे स्टार टावर पर चढ़ गए। आसमान पहले से ज्यादा चमक रहा था। वाओ, ये तो खूबसूरत दिख रहा है, सबने कहा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, रफी यानी कि रैबिट बोला। मीना ने सितारों की तरफ देखा। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने कर दिखाया मीना, मीना मुस्कुराई और कहा, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। दादी ने सर हिलाया और कहा, पॉजिटिव जिद। सबक, दोस्तों इस कहानी से क्या सबक मिलता है? उस गांव में एक प्रोफेसर रहते थे। उन प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर हूट। प्रोफेसर हूट ने सबसे बात की। मीना ने हमें एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाई है, ऐसा प्रोफेसर ने कहा। सबने पूछा, क्या? जिद पावरफुल होती है, प्रोफेसर ने बोला, लेकिन जिद तब अच्छी है जब अच्छी चीज के लिए उसे इस्तेमाल यानी कि जिद को इस्तेमाल करो। मीना ने धीरे से कहा, अगर तुम किसी अच्छी मददगार या खूबसूरत चीज पर यकीन करते हो तो कभी हार मत मानो। उस दिन के बाद टार का नाम पड़ गया जिद्दी सितारा। बच्चे हर रात वहां आते थे, वो विशेस करते थे, बड़े सपने देखते थे और जब भी कोई हार मान लेता तो वो टार को देखता और मीना को याद करता। टार सपनों का स्कूल बन गया। जब स्टार टावर कंप्लीट हो गया, एक जादू जैसा बदलाव हुआ उस वादी में। हर शाम बच्चे टार पर जमा होने लगे, कुछ ब्लैंकेट्स लेकर आते, कुछ नोट्सबुक और कुछ सिर्फ अपने सपने। मीना ने देखा कि बच्चे अपने आइडियाज शेयर करने लगे हैं। मैं इन्वर्टर बनाना चाहता हूँ, हामिद बोला। मैं जानवरों की मदद करना चाहता हूँ, लीला बोली। मैं उड़ना चाहता हूँ, मीना मुस्कुराई। तो हमें इस जगह को ड्रीम स्कूल बनाना चाहिए, रफी के कान खड़े हो गए। स्कूल रात में? हाँ, मीना बोली। एक जगह जहां हम सीखें कि कैसे कभी रुकना नहीं है। प्रोफेसर हूट ने खुशी से तालियां बजाई। ये बहुत अच्छी सोच है। जल्दी ही हर रात बच्चे टार पर चढ़ते और शेयर करते, बड़े सपने, छोटे सपने, फनी सपने या सीरियस सपने। और मीना हमेशा कहती, सपनों को जिद चाहिए होती है। एक शाम उमर नाम का एक चुप रहने वाला लड़का टार पर आया। वो दूर खड़ा था। मीना ने उसे देखा। हेलो, उसने नरमी से कहा। उमर ने धीरे से कहा, मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में। मीना मुस्कुराई, कल अपनी ड्राइंग्स लेकर आना। अगले दिन उमर एक छोटी नोटबुक लाया। ड्राइंग्स थोड़ी मैसी थी, कुछ लाइंस टेढ़ी थी, कुछ शेप्स अजीब थे। उमर नर्वस लग रहा था लेकिन मीना ने ताली बजाई। ये तो बहुत अच्छी है, उमर हैरान हो गया। ये परफेक्ट नहीं है, मीना ने सर हिलाया और कहा, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। और प्रोफेसर ने कहा, हर ग्रेट आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता रहता है। उमर मुस्कुराया। उस दिन के बाद वो रोज आने लगा वहां पे। उसकी ड्राइंग्स धीरे धीरे बेटर हो गई। कुछ हफ्तों बाद उसने स्टार टार की खूबसूरत सी एक पेंटिंग बनाई। सबने चीयर किया। उमर ने सीखा, लगातार प्रैक्टिस टैलेंट बनाती है। दोस्तों अब एक और स्टेज आता है। इस वादी में एक लड़की रहती थी जो हार मानना चाहती थी। एक रात आयशा नाम की लड़की आई। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने म्यूजिक सीखने की कोशिश की, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मीना ने पूछा। तुमने कितने दिन ट्राई किया? उसने कहा, 3 दिन। रफी हंस पड़ा। ये ज्यादा नहीं होता, मीना उसके पास बैठी और कहा, इस टार को बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगा था, हफ्तों तक हम सब ने मेहनत की। प्रोफेसर ने कहा, कुछ चीजों को महीने या साल लगते हैं। आयशा ने सोचा, मैं फिर ट्राई करूंगी। कुछ हफ्तों बाद आयशा ने अपनी पहली मेलोडी बजाई। परफेक्ट नहीं थी लेकिन सबने तालियां बजाई, वो खुश हुई। जिद ने फ्रस्ट्रेशन को म्यूजिक बना दिया। एक शाम फिर से घने बादल आ गए। इस दफा सिर्फ बारिश नहीं थी, ये शक था। कुछ बच्चे कहने लगे, अगर सपने सच ना हुए तो? अगर हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं

0: मीना ने सबको इकट्ठा किया और कहा, टावर को देखो। सबने ऊपर देखा, ये भी एक वक्त में नामुमकिन लगता था, ऐसा मीना ने बोला। बच्चों ने सर हिलाया, लेकिन हमने रुकना नहीं सीखा। रफी ने कहा, जिद शक को हरा देती है। बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे। दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि क्यों पॉजिटिव जिद और पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। एक दिन नीनो नाम का एक छोटा सा चूहा आया। मैं मदद करने के लिए बहुत छोटा हूँ, उसने कहा। मीना ने सर हिला दिया, कोई भी इतना छोटा नहीं होता, ये बात कहा मीना ने। नीनो ने छोटे छोटे पत्थर उठाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके। दिन ब दिन जल्दी ही बच्चे उसे कहने लगे, छोटा जिद्दी हीरो। नीनो फख्र से मुस्कुरा दिया। उस तूफान से जो उस टावर में प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम्स को, उन चीजों को लोगों ने फिर से फिक्स किया, और खास तौर पे उस छोटे चूहे ने जो वहां पर आया और उसने उन जगहों पे उन पत्थरों से फिलिंग की जहां पर कोई इंसान नहीं जा सकता था। और इस तरह एक छोटा सा जिद्दी करने वाला चूहा भी बेहद इंपॉर्टेंट था, और उसने टावर को दोबारा से बनाने में मदद भी किया। उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिद हमेशा बुरी नहीं होती। अगर आपकी जिद किसी को नीचा दिखाना या ईगो के लिए है तो वो सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अगर वही जिद अपने सपनों को पूरा करने और सही रास्ते पर डटे रहने के लिए की हो तो वो एक सुपर पावर बन जाती है। जिंदगी में वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं जो हालात के आगे झुकने से इंकार कर देते हैं। मीना की तरह अगर आप भी अपने मकसद के लिए पॉजिटिव जिद या पॉजिटिव स्टबर्नेस दिखाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी मेहनत पर जिद करते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह की एक और खूबसूरत सी कहानी को लेकर हम बात करेंगे FM 107 पर। तब तक सुनते रहिए और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दे।

7 पर वेक अप कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

एक सिंबून। तो यहाँ दरअसल इन आयात में हमारे लिए ये बताया, ये इबरत है, ये हिकमत है, ये बसीरत हम तक पहुँचाई जा रही है कि भाई दीन की बुनियाद जो है ना इल्म यकीन पर है, न कि जन्नो तखमीन पर। तो ये एक बहुत ही अहम कुरानी मोती है, दीन के तबा दीन की फरमानदारी के हवाले से भाई इल्म और यकीन ये दो काफ़ी अहम हैं कुरान को समझने के लिए, कुरान पर गौर व फिक्र के लिए। इस कायनात के सादे जो ऐसे निज़ाम हैं, इन तमाम निज़ाम को उस रूहानियत की आंख से देखने के लिए जो है ना आपको इल्म और यकीन की तरफ ही जाना है। जन तखमीन अटकल के बिना पर आप कुछ फैसला नहीं कर सकते। यकीन और अमल के बग़ैर महज झूठी आरज़ुओं और ख्वाहिशात को यहूद ने अपने सीनों में सजा रखा था, जबकि आखिरत में कामयाबी की बुनियाद सिर्फ ईमान और आमाले सालेहा पर है। और सामिन किराम, दुनिया की ज़िंदगी महज आरज़ी और नापायदार है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी अबदी और लाज़वाल है। चंद आरज़ी चमकते हुए सिक्कों के खातिर आखिरत को नज़रअंदाज कर देना अक्लमंदी

0: Qatar Business News with RJ Sarwar Mirza. Daily Live with Morning News Bulletin only on FM 107. Dil se, dil se, desi, desi.
1: Mobile haath mein, lekin family pass hokar bhi dur ho chuki hai. Kya aap bhi chahte hain ki ghar ke rishte phir se mazboot ho aur family ke saath guzara waqt phir se keemti lage? तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है संडे से थर्सडे शाम 4 से 5 बजे आरजे महविश खान के साथ डियर फैमिली शो जो रिश्तों को जिंदा रखता है
2: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar दिल से देसी

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, भाई जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही खासम खास भी है और बड़ा ही समझने वाला है, और हम आज उसके हवाले से रोशनी डालने जा रहे हैं द ह्यूमन साइड ऑफ प्रोफेशन पे। एम्पैथी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो हमारे काम के दरमियान और दौरान सामने आते हैं उनके हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन साइड ऑफ प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी को सिर्फ काम, टारगेट्स और जिम्मेदारियों तक महदूद कर देते हैं दोस्तों, लेकिन सच ये है कि हर प्रोफेशन के पीछे एक जिंदा दिल इंसान होता है। आज के प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काम के साथ साथ इंसानियत, रवैये और एहसास का कैसे जिंदा रखना जरूरी है और उसका तरीका क्या है। तो भाई जब हम सुबह अपना काम शुरू करते हैं हम एक रोल में आ जाते हैं, और ये रोल कभी यूनिफॉर्म होता है, कभी डेजिग्नेशन से होती है और कभी सिर्फ जिम्मेदारियों से। लेकिन इन सब चीजों के पीछे भी हम वही इंसान होते हैं जिनके जज्बात, थकान और उम्मीदें वगैरह होती हैं। आज के दौर में प्रेशर इतनी बढ़ चुकी है कि इंसानी पहलू को समझना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत करते हैं ताकि हम कुछ समझें और कुछ समझाएं भी, और जिसका मकसद ये हो कि हम काम के बीच में एम्पैथी, इखलाक और समझदारी को जिंदा कैसे रख सकते हैं। तो जनाब आप सबसे गुजारिश है कि सिर्फ सुने ही नहीं बातचीत को बल्कि महसूस करके उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखें और दूसरों तक उन बातों को जरूर पहुंचाएं। दूसरों को जिनको जरूरत है अच्छे मशवरे की, अच्छी बातचीत की, अच्छी राह की, वो भी जरूर दिखाएं। हर बात का ताल्लुक सिर्फ जॉब से ही नहीं है। देखिए आजकल की जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि काम का प्रेशर मजबूर कर देता है, लेकिन असल सवाल ये है कि हम प्रेशर में कौन सा रवैया इख्तियार करते हैं। क्या हम सख्त हो जाते हैं या समझने वाले बन जाते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि प्रोफेशनल होना सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि इंसानी जिम्मेदारी निभाना भी होता है, वो भी हर एक सिचुएशन में। तो जनाब एम्पैथी, एथिक्स और इंटीग्रिटी ये तीन अल्फाज सिर्फ प्रेजेंटेशंस या ट्रेनिंग सेशन के लिए नहीं होते, ये असल में जिंदगी के बुनियादी उसूल हैं। भाई देखिए एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की हालात को समझना, वहीं एथिक्स का मतलब क्या होता है वो ये कि सही और गलत का फर्क पहचानना, और इंटीग्रिटी का मतलब है हर हाल में सच का साथ देना। तो यूजुअली हम जब चीजें समझते हैं, हम जो भी चीजें देखते हैं, इनके तीन चीजों को काम में लाना चाहिए और वो बिना प्रोफेशनलिज्म खोए होना चाहिए और बिना काम की क्वालिटी पर असर डाले होना चाहिए। तो इस पहले भाग में प्रोग्राम के सेगमेंट में हम यही इशारा दे रहे हैं कि यही खुलासा कर रहे हैं कि प्रोफेशन हमारी पहचान का एक हिस्सा जरूर है लेकिन पूरी पहचान नहीं। जब हम इस फर्क को समझने लगते हैं तो हम बेहतर डिसीजन लेने लगते हैं। हम लोगों को सिर्फ काम के जरिए जज नहीं करते बल्कि उन्हें इंसान समझकर डील करते हैं, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं और इनको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हम किसी से मिलते हैं और पहला सवाल होता है आप क्या काम करते हैं, तो हम बिना रुके अपनी जॉब बता देते हैं, अपना टाइटल बता देते हैं या हम क्या कर रहे हैं ये फौरन बता देते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि अगर कोई पूछे आप कौन हैं तो जवाब क्या होना चाहिए? काम हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं होता। हम सब के अंदर एक भाई रिश्ता तो छुपा हुआ ही है, बेटा है, किसी के वालिद हैं, कोई हमारा दोस्त है, कोई एक इंसान तो कहीं ना कहीं एक रिश्ते को लेकर जी रहा ही है। तो जब हम अपनी पहचान सिर्फ प्रोफेशन तक महदूद कर देते हैं, तो हम अपने बहुत से इंसानी पहलू खुद ही नजरअंदाज कर रहे होते हैं एक्चुअली में। तो प्रोफेशनल जिंदगी अक्सर इतनी डिमांडिंग होती है कि हम धीरे धीरे अपनी असली फितरत भूल जाते हैं। जो इंसान घर में नरम दिल होता है, वो ऑफिस में जाकर सख्त और बेरुखी का शिकार हो जाता है। और इस रवैये का सबब सिर्फ प्रेशर होता है, बदनीयती नहीं। लेकिन जब ये रवैया आदत बन जाए तो रिश्ते और कम्युनिकेशन दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इंसान सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं होता, उसे समझ, एप्रिसिएशन और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर क्या भी काम कर रहा हो। दोस्तों, हर वर्क प्लेस में हम लोगों से डील करते हैं, सिर्फ फाइल्स या सिस्टम से ही नहीं, या ईमेल से ही नहीं, या आजकल के दौर में एआई या मैसेजेस से ही नहीं। भाई, अगर हम सामने वाले को सिर्फ कस्टमर, क्लाइंट या एम्प्लॉई समझकर देखेंगे तो रिश्ता लिमिटेड रहेगा। लेकिन जब हम उसे एक इंसान के तौर पर देखेंगे जिसके अपने मसाइल और जज्बात हैं, तो रवैया खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। बस ये अपनाने की जरूरत है। इंसानी रवैया काम को स्लो नहीं करता, बल्कि ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वो खुद भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं और ट्रस्ट डेवलप होता है नेचुरल तौर पर। भाई, अक्सर हम अपनी वैल्यूज को सिर्फ परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स से जोड़ते हैं। अगर टारगेट्स कंप्लीट हो गए तो खुश, और अगर पूरा ना हो सका तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है शैतान भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा होता है। तो ये सोच बहुत खतरनाक होती है। इंसान की कीमत सिर्फ उसकी आउटपुट से नहीं होती भाई, मेहनत है, नीयत है और रवैया भी बहुत मैटर करता है। मैं तो कहूंगा, जब आप अपनी जिंदगी को सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स तक महदूद कर लेते हैं, तो छोटी सी नाकामी भी हमें अंदर से तोड़ के रख देती है। अपनी वैल्यूज को समझना और अपनी इज्जत करना भी प्रोफेशनल मैच्योरिटी का हिस्सा होता है। भाई, काम से बाहर की जिम्मेदारी का ख्याल रखना बिल्कुल भी गैर प्रोफेशनल बात नहीं है। आपकी अपनी फैमिली, अपनी सेहत और अपना मेंटल पीस का एहतमाम करना असल में काम की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। जो इंसान अंदर से थका हुआ हो, वो बाहर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक फैशनेबल लफ्ज नहीं है, बल्कि एक जरूरत है आज के दौर की। जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं तो हम इमोशनली रिचार्ज होते हैं। फिर जब हम काम पर वापस आते हैं तो ज्यादा फोकस, सब्र और बेहतरीन रवैये के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। यही समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों, एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि हम हर गलत बात को एक्सेप्ट कर लें, बल्कि ये है कि हम गलती के पीछे वजह समझने की कोशिश करें। जब कोई गलती करता है तो फौरन इल्जाम लगाने के बजाय अगर हम सवाल पूछें तो मसला आसानी से हल हो जाता है। एम्पैथी वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट सेफ बनाती है। लोग डर के बजाय कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। जहां एम्पैथी होती है, वहां लोग अपने

अपनी मिस्टेक छुपाने के बजाय सीखने की कोशिश करते हैं। यही रवैया सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इंसानी रवैया वर्क प्लेस में ट्रस्ट पैदा करता है और ट्रस्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग टीम की बुनियाद होती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो अपना बेस्ट देने लगते हैं, और ये ट्रस्ट सिर्फ सैलरी या डेजिग्नेशन से नहीं आता बल्कि बिहेवियर से आता है। भाई, अगर मैनेजर या कलीग रेस्पेक्ट के साथ बात करे तो माहौल जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। ट्रस्ट के बगैर काम सिर्फ मजबूरी बन जाता है, लेकिन ट्रस्ट के साथ काम जिम्मेदारी और खुशी दोनों बन जाता है। इसलिए इंसानी रवैया हर प्रोफेशन में बहुत अहमियत रखता है। भाई, अथॉरिटी और पावर हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन असल फर्क रवैये से पैदा होता है। जो लोग सिर्फ अपनी पोजीशन को जोर पर लाकर बात करते हैं वो दूरियां पैदा कर देते हैं, जबकि जो लोग हम आहंगी ह्यूमैनिटी के साथ लीडरशिप दिखाते हैं वो लोगों के दिल जीत लेते हैं। बड़े लीडर वो होते हैं जो समझते हैं कि उनका काम सिर्फ हुक्म देना नहीं बल्कि रहनुमाई करना है, साथ मिलके चलना है। जब अथॉरिटी के साथ एम्पैथी मिल जाए तो वर्कप्लेस सिर्फ काम की जगह नहीं रहता बल्कि सीखने और ग्रो करने का प्लेटफॉर्म बन जाता है, जहां लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। दोस्तों, काम के अंदर इंसानी पहलू को जिंदा रखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि रूल्स तोड़ दिए जाएं, लेकिन समझदारी रहे। बल्कि ये है कि रूल्स अप्लाई करते वक्त रवैया इंसानी रखा जाए। जब हम डिसिप्लिन को रेस्पेक्ट के साथ बैलेंस करते हैं तो बात जाती रहती है और ताल्लुक भी बचता है। अक्सर प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ टोन चेंज करने से निकल आता है। दोस्तों, जब हम अपनी बात सख्ती के बजाय समझदारी से रखते हैं तो सामने वाला भी डिफेंसिव होने के बजाय कोऑपरेटिंग करते हुए काम को स्मूथली आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, खुलासा यह है कि हम सब अपनी जॉब टाइटल से पहले इंसान हैं। जब हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो हम बेहतर प्रोफेशनल इंसान बन जाते हैं। इंसानी रवैया हमें कमजोर नहीं करता बल्कि ज्यादा मजबूत और मुअस्सर बनाता है। जो इंसान अपनी प्रोफेशन के साथ अपनी इंसानी जिम्मेदारी भी निभाता है वही वाकई सक्सेसफुल होता है। अब दुनिया में जिस तरीके की भी बातचीत चल रही है, आप अगर खुद से राजी हैं और दूसरा आपसे राजी है तो फिर आप बेहतर इंसान हैं। तो दोस्तों, पर्पस का मतलब सिर्फ सैलरी या प्रमोशन हासिल करना नहीं होता। आज अब इस प्रोग्राम में हम पर्पस और ग्रोथ के हवाले से भी बात करेंगे। जो आज हमने उन्वान रखा, जो हमने आज टॉपिक रखा वो ये कि जो ह्यूमन साइड ऑफ प्रोफेशन है उसके हवाले से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हम अपनी जिंदगियों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एम्पैथी है, ये हमारे काम के माहौल को कैसे बेहतर बना सकती हैं कि हम बेहतर इंसान भी बने, बेहतर प्रोफेशनल भी बने, और उसके साथ जो भी हमारा पर्पस है, जो भी हमारी ग्रोथ है, उसके ऊपर भी हम काम करते चले जाएं। तो पर्पस का मतलब सिर्फ सैलरी या प्रमोशन हासिल करना नहीं है। पर्पस वो वजह होती है जो हमें रोज सुबह उठने पर ताकत देती है। भाई, जब हमें पता होता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं तो मुश्किल वक्त भी आसान लगने लगता है। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग किसी बेहतर मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं वो प्रेशर में भी मोटिवेटेड रहते हैं। दोस्तों, पर्पस हमें डायरेक्शन देता है और फैसले लेने में मदद करता है और रोज प्रोफेशनल जिंदगी में भी मददगार साबित होता है। और वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ करियर लैडर चढ़ना या नया टाइटल हासिल करना नहीं होता। ग्रोथ असल में अंदर से भरना होता है अपने आप को बेहतर चीजों से। जब इंसान अपने रवैये, सोच और डिसीजन मेकिंग पर काम करता है तब असल ग्रोथ शुरू होती है। हर प्रोफेशनल के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि सब्र, एम्पैथी और डिसिप्लिन भी डेवलप करे। ये क्वालिटीज धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म काम आती हैं। जो इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तवज्जो देता

0: है वो हर पोजीशन पर रहकर भी बेहतर परफॉर्म करता है और लोगों के लिए पॉजिटिव एग्जांपल बन जाता है। तो दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरवर मिर्जा आपके साथ, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
0: दोस्तों एथिक्स प्रोफेशनल ग्रोथ की बुनियाद होती है। अगर बुनियाद कमजोर हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। जिस तरीके से अगर कमजोर नीम है तो वो इमारत ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती। एथिक्स का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि सही और गलत का फर्क समझना भी है। कभी कभी शॉर्टकट्स टेम्पटिंग लगते हैं लेकिन उनका नुकसान बाद में सामने आता है। जो लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं उनकी ग्रोथ शायद स्लो हो लेकिन सस्टेनेबल होती है। एथिक्स हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और प्रोफेशनल जिंदगी में सुकून देते हैं। वहीं इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि हम हर सिचुएशन में एक जैसे रहें, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, हम अपने उसूलों पर कायम रहें। इंटीग्रिटी सिर्फ बात करने से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से नजर आती है। जब इंसान इंटीग्रिटी के साथ काम करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। ये ट्रस्ट वक्त के साथ रेस्पेक्ट में बदल जाता है। प्रोफेशनल जिंदगी में ट्रस्ट बहुत बड़ी एसेट होती है। जो लोग अपनी इंटीग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो मुश्किल वक्त में भी अपनी पहचान और इज्जत कायम रखने में काफी कुछ सीख लेते हैं। वहीं दोस्तों पर्पस के साथ काम करने वाले लोग बर्नआउट से ज्यादा देर तक बचे रहते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ प्रेशर पर नहीं होता बल्कि मकसद पर होता है। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो पर्पस हमें याद दिलाता है कि हमने शुरू किस वजह से की थी। ये जो आज की भागा दौड़ी है ये याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने जहन को, अपने आप को, अपनी बॉडी को। दोस्तों पर्पस सिर्फ प्रेशर को खत्म नहीं करता लेकिन हैंडल करना सिखा देता है। जब गोल्स क्लियर हों तो वो रुकावटें कम खौफनाक लगती हैं। इसलिए हर प्रोफेशनल के लिए ये जरूरी है कि वो अपने काम का मकसद खुद के लिए वाजे करे और उसको डेली बेसिस पे देखे, जिए, याद करे। तो दोस्तों ग्रोथ का एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि हम हमेशा लर्नर रहें। जो इंसान ये समझ लेता है कि वो सब कुछ जानता है वो वहीं रुक जाता है। भाई प्रोफेशनल दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। नई स्किल्स, नए टूल्स और नए चैलेंजेस रोज सामने आ रहे हैं। इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। चाहे पोजीशन कितनी ही सीनियर क्यों ना हो, सीखने का रवैया जरूरी होता है। जब हम सीखते रहते हैं तो हम फ्लेक्सिबल रहते हैं और हर तब्दीली को बेहतर अंदाज से एक्सेप्ट कर पाते हैं विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। जो हमारा पर्पस है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। जब हम अपने काम से किसी और की जिंदगी आसान बनाते हैं तो काम मीनिंगफुल बन जाता है। दोस्तों अक्सर प्रोफेशनल्स अपनी इम्पोर्टेंस तब महसूस करते हैं जब उनका काम किसी के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये फीलिंग्स सिर्फ पैसे से हासिल नहीं होती, ये सेटिस्फेक्शन दिल से मिलती है। जब हम अपने काम को सिर्फ सर्विस के तौर पर देखते हैं तो हम ज्यादा जिम्मेदारी और खुलूस के साथ काम करते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबब बनता है और एवरी सिंगल डे में काम आता है। वहीं दोस्तों ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें हर इंसान से गलती होती है लेकिन हर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता जो प्रोफेशनल अपनी गलती मान लेता है वही असल में आगे बढ़ता है डिफेंसिव रवैया सीखने के रास्ते बंद कर देता है जब हम फीडबैक सुनते हैं और उसे

समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर हो जाते हैं। गलती को छुपाना ग्रोथ को रोकता है, जबकि गलती से सीखना एक्सपीरियंस में इजाफा करता है। इसी तरह इंसान धीरे धीरे मैच्योर प्रोफेशनल बनता है। भाई जब पर्पस क्लियर होता है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाते हैं। भाई फिर हमें हर बार ये गफलत नहीं होती, ये सोचना नहीं पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या है। क्लियर पर्पस हमें एथिक्स पर कायम रखता है, वहीं हम अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेस से बच जाते हैं। प्रोफेशनल जिंदगी में कई मर्तबा ऐसे मौके आते हैं जहां सही और आसान रास्ता मुख्तलिफ होता है। पर्पस हमें सही रास्ता चुनने में मदद करता है, इसकी ताकत देता है, और इसलिए जो लोग अपना मकसद अपना पर्पस समझ लेते हैं वो प्रेशर के बावजूद अपनी वैल्यूज पर कायम रहते हैं हर हाल में। तो दोस्तों इंटीग्रिटी के साथ काम करना शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हर कोई शॉर्ट टर्म फायदा चाहता है, लेकिन वक्त के साथ ये सब से आसान और सुकून भरा रास्ता बन जाता है। जब हम सच के साथ खड़े होते हैं तो हमें अपनी बातों या फैसलों को याद रखने का बोझ जो है वो उठाना नहीं पड़ता। ईमानदारी हमें मेंटल पीस देती है, वहीं प्रोफेशनल जिंदगी में ये सुकून बहुत कीमती होता है। भाई जो लोग इंटीग्रिटी को अपनी आदत बना लेते हैं वो अपनी ग्रोथ को भी बेफिक्र और स्टेबल बना लेते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो जो हमारा मकसद है उसको इस तरीके से भी देख लेते हैं कि पर्पस ड्राइवन लोग सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपने रवैये से लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी और इखलाक दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसे प्रोफेशनल अपनी टीम और एनवायरमेंट पर पॉजिटिव असर छोड़ते हैं। वो सिर्फ काम कंप्लीट नहीं करते बल्कि कल्चर बिल्ड करते हैं। भाई जब कोई लीडर या कलीग पर्पस या मकसद के साथ काम कर रहा हो तो दूसरे भी मोटिवेटेड फील करते हैं, महसूस करते हैं। यही वो इंस्पिरेशन है जो जबरदस्ती सी नहीं लगती बल्कि खुद ब खुद पैदा होती रहती है। इसी तरह जो मकसद है या पर्पस प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसको सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं रखिए बल्कि कलेक्टिव लेवल पर भी बढ़ती जानी चाहिए। ये प्रैक्टिस बनाइए और वर्क प्लेस को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। भाई ग्रोथ पेशेंस या सब्र का टेस्ट होती है। आज के दौर में हम सब कुछ फौरन चाहते हैं लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ वक्त लेती है। जो चीज आसान और तेजी से मिल जाए वो अक्सर ज्यादा देर तक साथ नहीं रहती। प्रोफेशनल जिंदगी में सब्र बहुत जरूरी होता है। जब हम मेहनत करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और ईमानदारी पर कायम रहते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगते हैं, और यही वो वक्त है जब ग्रोथ जो है वो गहरी होती है और हमें अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। भाई सब्र के साथ बढ़ने वाली सक्सेस ज्यादा मीनिंगफुल होती है और हमें कमजोरी के दौर में भी कायम रखती है। तो दोस्तों पर्पस और एम्पैथी मिलकर वर्क प्लेस कल्चर को बदल देते हैं। जब लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि रवैये पर भी तवज्जो देते हैं तो एनवायरनमेंट हेल्दी हो जाता है। ऐसी जगह ऐसा ऑफिस ऐसी वर्क प्लेस स्ट्रेस कम और कॉपरेशन ज्यादा देती है। लोग अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं क्योंकि वो महफूज महसूस करते हैं। भाई जब एम्पैथी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं, और जब पर्पस होता है तो सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है और हर इंडिविजुअल को अपनी बेस्ट वर्जन बनने का मौका देता है। तो दोस्तों आज का असल सवाल ये नहीं कि आप क्या काम करते हैं बल्कि ये है कि आप अपना रवैया कैसा रखते हैं। लोग आपका काम शायद भूल जाएं लेकिन आपका रवैया कभी नहीं भूलेंगे, ये याद रखें। प्रोफेशनल दुनिया में इम्प्रेशन सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि बिहेवियर से भी बनते हैं। जो लोग इज्जत इंसानियत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं वो हर जगह इज्जत पाते हैं। यही इज्जत किसी फाइल में लिखी नहीं होती लेकिन लोगों के दिल में महफूज होती है। इसलिए अपनी प्रोफेशन के साथ अपनी इंसानी जिम्मेदारी

जिम्मेदारी को कभी अलग मत कीजिए और इसको हर हाल में निभाने की कोशिश करनी चाहिए। भाई जिंदगी के हर मोड़ पर आपका रवैया ही आपकी पहचान बनता है। कभी कभी टैलेंट और स्किल पीछे रह जाते हैं और सिर्फ एक अच्छा रवैया इंसान को आगे ले जाता है। आपका लहजा, आपका सब्र और दूसरों के लिए आपका एहतराम, ये सब वो चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर प्रेशर, डेडलाइंस और चैलेंजेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जरूरी समझें कि ऐसे ही वक्त में असल इम्तिहान आपके काम का नहीं बल्कि आपके रवैये का होता है। क्या आप मुश्किल में भी मुस्कुराहट बरकरार रखते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं या सिर्फ अपनी जिम्मेदारी तक महदूद रहते हैं? ये छोटी छोटी बातें ही आपका बड़ा तसव्वुर बनाती हैं। भाई याद रखें, अच्छा रवैया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो आपका माहौल भी पॉजिटिव हो जाता है। लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं और ये ट्रस्ट ही आपकी असली कैपिटल होती है। इसलिए हर दिन अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, मैं आज किस तरह का इंसान बनकर काम पर जा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि काम तो हर कोई करता है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो अपनी इंसानियत और अपने रवैये से दिलों को जीतता जाए। तो भाई ये बात हमेशा जहन में रखें, कामयाबी सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज चलते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सही रवैये के साथ चलना चाहते हैं। दोस्तों एक और बात के ऊपर रोशनी डालें कि आज के दौर में लोग अपनी सीवी को स्ट्रांग बनाने में इतना वक्त लगा देते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना भूल जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इंटरव्यू रूम से ज्यादा इंसान का रवैया उसके रोजाना इंटरेक्शंस में टेस्ट होता है। आप गार्ड से कैसे बात करते हैं, ऑफिस बॉय को किस लहजे में बुलाते हैं और जूनियर्स जो आपके हैं उनकी गलती पर आपका रिएक्शन कैसे होता है, ये सब आपकी असली ट्रेनिंग होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, हैं एक स्मॉल मोमेंट की बात करें जो बिग इम्पैक्ट छोड़ के जाए। भाई छोटी छोटी चीजें जैसे थैंक यू है, प्लीज है या किसी की बात ध्यान से सुनना है, ये सिंपल आदतें हैं जो आपको इंस्टेंटली अलग बना देती हैं। लोग परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढते हैं याद रखिए, लेकिन रिस्पेक्टफुल इंसान जरूर याद रखते हैं। तो हर सिचुएशन में दो ऑप्शन होते हैं, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट करना इमोशनल होता है जबकि रिस्पॉन्ड करना समझदारी है। प्रोफेशनल दुनिया उन लोगों को वैल्यू देती है जो गुस्से में भी अपनी जुबान कंट्रोल कर लेते हैं। तो रवैया सिर्फ एक दिन का नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। आप हर रोज एक जैसा पॉजिटिव रवैया रखते हैं या सिर्फ जब मूड अच्छा हो तब? लोग टेम्पररी अच्छाई से नहीं, कंसिस्टेंट बिहेवियर से ट्रस्ट करते हैं और याद रखते हैं। तो जनाब, अगर आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, लेकिन असल कमाल ये है कि आप उन लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आएं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वही आपकी असल इंसानियत होती है। भाई हर इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। क्या आप वो इंसान हैं जिनके आने से जो माहौल है वो हल्का और पॉजिटिव हो जाता है ऑफिस के अंदर? ऐसा होता है? नहीं होता तो क्या ऐसा है कि आपके आते ही लोग खामोश हो जाते हैं, अपना अपना काम करने लगते हैं या आपस में जो बात कर रहे होते हैं उसको छोड़ के वहां से हट जाते हैं? सो दिस इज रेड लाइट। या फिर टेंशन और नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है माहौल में, लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं। भाई इवन अगर आप कुछ भी ना करें, यही होता है माहौल पे अपना असर छोड़ना। दोस्तों आज अपनी डेजिग्नेशन को साइड पर रखें और सिर्फ ये सोचें, अगर आपका रवैया एक आवाज होता तो लोग उसे सुनकर मुस्कुराते या चुप हो जाते? आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका रवैया आपको इंस्पायर करता हो? क्या खास बात है कोई ऐसी जो आपको याद आती हो? भाई जिंदगी में आप कितना आगे गए ये लोग कुछ अरसे बाद भूल जाते हैं, लेकिन उनको अपने साथ कैसा महसूस करवाया ये वो कभी नहीं भूलते। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो जनाब इसी ख्याल के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। भाई याद रखिए, प्रोफेशन जिंदगी का एक हिस्सा है लेकिन पूरी जिंदगी नहीं।
जब हम अपनी प्रोफेशन

स्किल्स के साथ अपनी इंसानी वैल्यूज को जिंदा रखते हैं तो हम ना सिर्फ बेहतर वर्कर के तौर पे दुनिया के सामने पेश होते हैं बल्कि बेहतर इंसान भी बनते हैं। एम्पैथी, एथिक्स और इंटीग्रिटी सिर्फ बात की चीजें नहीं है, बात करने की चीजें नहीं है बल्कि रोजमर्रा के रवैये का हिस्सा होनी चाहिए। भाई अगर हम अपने काम को मकसद के साथ करें तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। इसी उम्मीद के साथ आप अपनी प्रोफेशन के साथ अपनी इंसानी पहलू को कभी फरामोश ना करें, है ना। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम एक बेहतर इंसान हैं, हम एक बेहतर सोच दे सकते हैं। भाई देखिए इंसान के जाने के बाद भी उसके लिए ये सारी चीजें काम आती रहती हैं, जो खिदमत खल्क उसने की, जो दुनिया के लिए आसानियां उसने छोड़ी, जो भी चीजें आसान कर गया वो आगे आने वाली कहना चाहिए पीढ़ी के लिए वो सारी चीजें काम आती हैं, दुनिया से जाने के बाद भी काम आती हैं। यही वो सवाब है जो कंटिन्यू रहेगा, आपको मिलता रहेगा, ये कहीं खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अच्छे एक्ट कीजिए, दूसरों को माफ कीजिए। जाहिर है अगर आप ये समझते हैं कि मैं कभी गलत नहीं हूं तो आप गलती में हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं उसके अंदर। तो इसलिए सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करा जाए, दूसरे को समझा के बात करी जाए। हाँ कभी कभार समझाने के लिए आवाज भी ऊपर करनी पड़ती है, चीखना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समझते हैं और वो दूर हो रहा होता है तो ही चीख निकलती है भाई, तभी आवाज तेज होती है कि आओ इधर आओ, क्या कर रहे हो, वहां नुकसान है, खाइए, गिर जाओगे, चीखता है ना तू। वहीं दूसरा भी पहलू है इसका, इंसान चीखता है अपने से भगाने के लिए जब कोई चीज आपके ऊपर अटैक करती है, माजरत के साथ कोई जानवर, कोई भी, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किधर है। तो जब आपके ऊपर अटैक हो रहा था तो आप चीखते हैं ना, हे हू, भागो यहां से, हटो, पीछे हटो, क्या कर, ये होता है ना। तो दोनों पहलू हैं लाइफ के। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला ये समझे कि ये मुझे इसलिए पुकार रहा है कि ये मेरी फिक्र करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है। वही इम्पोर्टेंट है, वही बात जानने पहचानने और समझने वाली है, और वही एक ऐसी चीज है जो आपके सामने भी आपके पीछे भी आपका जो रवैया है वो काउंट होता है और वो इंसान के सामने आता है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखें, इस बात को अपने जहन में भी रखें, इस बात को हमेशा अपने से आगे रखें कि मैं कोई भी प्रोफेशनलिज्म में हूं, किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूं, किसी के अंडर काम कर रहा हूं, कितने भी लोग मेरे अंडर काम कर रहे हों, उन सब से मुझे पहले ये दिखाना कि मैं इंसान हूं। हाँ जाहिर बात है सख्ती अपनी जगह है, काम नहीं होता, अगर सख्तियां ना हो तो काम गलत भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। बट दूसरे को ये समझ में आना चाहिए जो आपकी सख्ती है, ये जो आपकी तेज आवाज है, ये जो आपका चीखना है या चिल्लाना है, वो किस वजह से है, वो कंपनी के लिए है, आपके अपने लिए है, आपकी अपनी पर्सनल रंजिश है, आपका फ्रस्ट्रेशन है, क्या चीज है, वो आवाज क्यों निकल रही है, ये सिर्फ क्लियर होना चाहिए। तो भाई इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात क्लियर होगी और समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इंक्लूडिंग मी। तो एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी जो ह्यूमन वर्थ है वो हमारी हमारे जज्बात हैं, हमारी एक्शंस हैं, हमारी रिलेशनशिप से डिफाइन होते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यूज समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से आती है। तो इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
4: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही सिंपल पर बहुत पावरफुल थॉट पर, व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वेल, सच ये है कि ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं होते, वो धीरे धीरे आती है बिल्कुल खामोशी से। हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो, स्टार्टिंग में बॉडी सिर्फ हल्की सी वार्निंग देती है, थोड़ी थकान, थोड़ी इरिटेशन, कभी नींद का डिस्टर्ब होना, और हम क्या करते हैं, बड़े ही प्यार से इग्नोर, क्योंकि जब तक

0: पेन नहीं होता, हम मानने को रेडी नहीं होते हैं कि हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। पर प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रॉब्लम से पहले का एक्शन लेना। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेगुलर मूवमेंट, बैलेंस्ड फूड, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट काफी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स को स्टार्ट होने से पहले ही रोक सकते हैं। मतलब अगर हम रोज थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा अच्छा खा रहे हैं और थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं अपने आप को, तो फ्यूचर में हैवी ट्रीटमेंट की जरूरत काफी कम हो जाती है। प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ टेस्ट और रिपोर्ट्स नहीं होता, प्रिवेंशन होता है जब हम बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान देते हैं, जब हम थकान को वीकनेस नहीं समझते, जब हम नींद को लग्जरी नहीं समझते बल्कि नेसेसिटी मानते हैं और प्रॉपर अपने 7-8 आवर्स कंप्लीट करते हैं। सोचिए एक छोटी सी हैबिट जैसे कि 10 मिनट रोज खाना खाने के बाद वॉक करना, या टाइम पर सो जाना, या ज्यादा पानी पी लेना, ये सब कितनी छोटी छोटी बातें हैं, पर फ्यूचर के लिए यही सब चीजें एक शील्ड बन जाती है। और क्योर अक्सर तब शुरू होता है जब बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है, मेडिसिन, रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रेस सब एक साथ आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन सिर्फ बेटर नहीं, इजियर भी होता है देन क्योर। एक और बात जो हम भूल जाते हैं, दैट इज मेंटल हेल्थ भी प्रिवेंशन मांगती है। अगर हम रोज अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहे, ब्रेक्स नहीं लिए, अपने लिमिट्स को इग्नोर करते रहे, तो बर्नआउट एक दिन जरूर आता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है अपने आज का थोड़ा सा ख्याल, ताकि कल चल के मुश्किल ना बने। तो आज का एक छोटा सा मशवरा जो आप अपने साथ रखिए, जब बॉडी बोले स्लो डाउन तो सुन लीजिए, रेस्ट रेस्ट कर लीजिए बिना गिल्ट फ्री होके, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये लेजीनेस नहीं है, ये समझदारी है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आपकी जिंदगी काफी स्मूथ चलते रहेगी, एनर्जी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, चेहरे पे एक अलग ही चमक रहेगी। एंड दैट इज व्हाई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti. Maximum music, maximum fun
2: on FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर्स शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का एक चमकता हुआ सितारा है दोस्तों, जो अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग और डेडली स्विंग की वजह से दुनिया भर के बैट्समैन के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होने की वजह से उनका एंगल और वेरिएशन उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया के खिलाफ मैच थी, जहां उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे टॉप बैट्समैन को अर्ली ओवर्स में आउट करके मैच का रुख बदल दिया था। उनकी यॉर्कर्स, बाउंसर्स और न्यू बॉल स्विंग उन्हें एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनाती है। सिर्फ बॉलिंग ही नहीं दोस्तों, शाहीन ने बैटिंग में भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं जब टीम को जरूरत पड़ी। आज के दौर में वो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के बॉलिंग अटैक का स्पीयरहेड हैं और उन पर टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंजरीज के बावजूद उन्होंने कमबैक करके अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन का सबूत दिया है। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा नाम है जो जुनून, टैलेंट और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उनका फ्यूचर रोशन है और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी उम्मीद है। उम्मीद है कि आपको आज का स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकील अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस.
3: ऑफिस में बैठे हुए थोड़ा सा कॉफी ब्रेक लिया. आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ही रहे हैं, तभी आपको एक कॉल आती है.
4: सर, गारंटीड रिटर्न्स, 30 दिन में पैसा डबल, जीरो रिस्क.
3: और आप पूरी स्कीम समझ के इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं. पहले थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट, और फिर एक लंबा साइलेंस. अस्सलाम वालेकुम, यह है फ्रॉड अवेयरनेस और मेरा नाम है वेद. इस किस्म के फ्रॉड को कहते हैं फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम. शुरू में छोटा प्रॉफिट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बाद में बड़ा पैसा और एग्जिट. क्रिप्टो स्टॉक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप्स, सबका मिसयूज. तो थोड़े ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जैसे ही आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही ये कंपनियां, ऐसे लोग गायब हो जाते हैं. तो अपने आप को ऐसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचाएं. तो कैसे पहचानेंगे ऐसे स्कैम्स को? जब बहुत ही ज्यादा गारंटीड रिटर्न की बात हो, कोई अगर सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आपको देता है, उससे दूर रहिए. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को ही ट्रस्ट कीजिए. तो अगर कोई बोलता है जल्दी इन्वेस्ट करो और मौका जीतो, ये कार जीतने का मौका जीतो और पैसे डबल करने का, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है. कहते हैं ना, मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन गारंटीड रिस्क सिर्फ स्कैम में होता है.
2: सतर्क रहिए, सावधान रहिए. फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
5: दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस क्यों जरूरी हैं और क्यों नहीं। देखिए रिश्ते सिर्फ नाम से तो नहीं चलते, उन्हें चलाने के लिए समझ, एफर्ट्स और एक्सपेक्टेशंस का भी होना जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस को अक्सर नेगेटिव

सिर्फ इतना होता है कि या तो वो हेल्दी होती है या फिर अनक्लियर रहकर रिश्तों को हैवी बनाते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस का मतलब डिमांड नहीं है, एक्सपेक्टेशंस का मतलब असल में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। एक रिश्ते में किस तरह से आप बंधे हैं, किस तरह से आप फील करना चाहते हैं और दूसरे से किस लेवल की प्रेजेंस, ऑनेस्टी या एफर्ट्स की उम्मीद करते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल

एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक है? रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यही बाउंड्रीज सेट करती हैं। जब आप क्लियर होते हैं कि आपको रिस्पेक्ट, टाइम या फिर इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आप दूसरों को भी एक रोड मैप दे रहे होते हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस के रिश्ता अक्सर एक तरफ से ज्यादा लोड उठाने लगता है, और ये लोड इमोशनल लोड, प्लानिंग का, समझने का और एडजस्टमेंट का होता है। सब एक ही इंसान पर आ जाता है, और इसी बात को मेंटल और इमोशनल

0: कहते हैं, जो अक्सर नोटिस ही नहीं होता लेकिन रिश्ता धीरे धीरे थका देता है। देखिए, हेल्दी एक्सपेक्टेशंस का एक और फायदा ये है कि वो डिसअपॉइंटमेंट को कम करती है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होते कि कोई बुरा है, बल्कि इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो अनक्लियर है। मुझे लगा तुम समझ जाओगी, ये मुझे लगा या ऑब्वियस था, जैसे जुमले वहां से निकलने शुरू होते हैं। एक्सपेक्टेशन कभी क्लियरली बात ही नहीं करने देती। जब एक्सपेक्टेशंस पहले से ज्यादा खराब हो जाए, कम्युनिकेशन के रास्ते कम हो जाए, तो गिला शिकवा कम और समझ बूझ भी इंसान की कम होने लगती है। एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को इक्वल भी बनाते हैं। जब दोनों लोग जानते हैं कि एफर्ट सिर्फ एक तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो बैलेंस क्रिएट होता है। वरना अक्सर एक पार्टनर मैनेज करता रहता है और दूसरा सिर्फ एक्सिट। देखिए, टाइम के साथ ये गैप रिसेंटमेंट में भी बदल जाते हैं। एक्सपेक्टेशन इसी रिसेंटमेंट को रोकता भी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनविजिबल नहीं रहने देता। लेकिन ये भी जरूरी है कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो। दूसरों को परफेक्ट रोल में फिट करना एक्सपेक्टेशन नहीं, प्रेशर है। हेल्दी एक्सपेक्टेशन वो होती है जो कन्वर्सेशन से निकलती है और कंपैरिजन से नहीं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्सपेक्टेशन स्टैटिक नहीं होती। जिंदगी के साथ, फेजेस के साथ एक्सपेक्टेशन भी इवॉल्व हो जाती हैं। जो चीज पहले जरूरी थी शायद बाद में ना हो, और जो पहले इग्नोर की गई थी वो बाद में असेंशियल बन जाए। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस पर बात चलती रहनी चाहिए, बिना शिकवा, बिना किसी ब्लेम के। दोस्तों, रिश्ते जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस से टूटते नहीं हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब एक्सपेक्टेशंस छुप जाती हैं। जब हम क्लियरली नहीं बताते कि हमें क्या चाहिए, तब हम अनजाने में दूसरे को फेल होने का भी मौका देते हैं। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस रिश्तों पर बोझ नहीं होती, बल्कि सहारा होती है। वो बताती है कि तुम यहाँ इम्पोर्टेंट हो और मैं भी। जब एक्सपेक्टेशंस रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन के साथ जुड़ती हैं, तो रिश्ता सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि ग्रो करने की जगह बनाता है। बस याद रखिए कि अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस हर हाल में देनी है, और उसके लिए शुरुआत आपसे होगी। सामने वाले से अकेले उम्मीद रखना शायद काफी ना हो। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
2: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊं?
1: आई नो दिस AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
3: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
4: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked।
5: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked
6: With RGV
5: Every Sunday शाम 7:15 बजे, Only on FM 107 दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Absolute cinema.
5: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.

दूसरी तरफ जब खुदा तर्स लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, तो वो जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज उतरी है। इस तरह के नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर उन्हीं के हक में बेहतर है। बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, दायमी कयाम की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और सब कुछ वहां ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। ये जजा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, उन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीजगी की हालत में जब मलाइका कब्ज करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आ पहुंचे या तेरे रब का फैसला सादिर हो जाए। इसी तरह की ढिटाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म न था बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियां आखिरकार उनकी दामनगीर हो गईं और वही चीज उन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो न हम और न हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत करते और न उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और उसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। उसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता और इस तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता।